आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस।
3: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
4: वंदे देव उमापतिम शुरुगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पन्नग भूषणम मृगधरम वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वह्निनयनम वंदे मुकुंद प्रियम वंदे भक्तजनाश्रयम च वरदम वंदे शिवम शंकरम। सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन श्रावण प्रभात की ओर से मैं आचार्य कौशल प्रसाद बिजवान मेजिन माहेश्वरनाथ मंदिर विशेष श्रावण मास के उपलक्ष में आप सभी जानते हैं भगवान शिव का ये श्रावण मास अत्यंत प्रिय है। सभी भक्तजन भगवान शिव की आराधना उपासना करते हैं। जैसा हम जानते हैं कि श्रावण मास

0: मांस की एक शास्त्रों के अनुसार पुराणों के अंतर्गत एक कथा भी आती है कि श्रावण मास को क्यों मनाया जाता है। एक बार भगवान ब्रह्मा भगवान नारायण क्षीर सागर में शयन करने लग गए और भगवान नारायण ने सोचा कि जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करेंगे तब हम पालन करेंगे। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी भगवान नारायण जी के पास जाते हैं और बोलते हैं भगवान अब क्या करें। तो भगवान नारायण ने के मन में विचार आया कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना करेंगे, उससे पूर्व हम लोगों से एक बहुत बड़ी भूल हो चुकी है, वो ये है कि हम भगवान शिव की आराधना करना भूल गए हैं। और तो भगवान नारायण के पास जब ब्रह्मा जी आए तो ब्रह्मा जी ने बोला कि एक गलती हो गई, 300 पूरे वर्ष में भगवान शिव का एक ही दिन है और वो दिन शिवरात्रि का दिन है, इसलिए भगवान शिव जी का मात्र एक दिन है, इसलिए 365 दिन में से एक श्रावण मास भगवान नारायण और ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी का अभिषेक किया, जलाभिषेक किया, रुद्राभिषेक किया और उससे भगवान प्रकट होकर के उन्होंने प्रसन्नता से ब्रह्मा जी को वरदान दिया कि बोले जो भी तुम्हारे पंचांग में, अब तुम्हारे पंचांग में श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण मास का प्रारंभ होगा और जो भी भक्त मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनको मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। ये तप का महीना है, संकल्प का महीना है, आराधना का महीना है। जो भी युवा भक्तजन, युवा युवती जो भी भगवान की जिस कामना से पूजन अर्चन करेंगे उनको उस फल की प्राप्ति अवश्य प्रदान होगी। भगवान शंकर सभी फलों के देने वाले हैं। इसी के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। ओम शांति ओम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

नमस्कार, श्री सनातन धर्म मंदिर परिषद की ओर से इस श्रावण प्रभात कार्यक्रम में आचार्य सुरेश सुपाल मिश्र का अभिवादन। द्विजयाम संभवी माया सर्वेशाम प्राणी नाम महीम भक्तम विनाशपीतात्मनः तथा संपो महयते जगत। वास्तव में इस संसार में सभी प्राणियों के लिए शंभु की माया को जानना अत्यंत कठिन है। जिसने अपने अपने को शिव को समर्पित कर दिया है, उस भक्त को छोड़कर शेष संपूर्ण जगत की उनकी माया से मोहित हो जाती है। शिवेक्षाम यदा दृश्यम लोके भवत्येनम हिंसा सदा तद्धनिनाम जगत सर्वे वाचस्वताम स्थितम यत। इस लोक में शिव जैसी इच्छा होती है वैसा ही होता है। समस्त

0: विश्व उन्हीं की इच्छा के अधीन है और उन्हीं के वाणी रूप तंत्र से बांधा हुआ है। भक्त भव भक्ति परायेनम च भव प्राण चते भव संसार स्मरणम ये न च न ते दुखस्य भाजना। जो शिव भक्ति परायण है, जो शिव में अनुरक्त चिंता वाले है और जो शिव का स्मरण करते हैं वे दुख के पात्र नहीं होते। इच्छात परात पंकराम चा सहात्वैतं भवे द्रुवेहि इति महत्वा पारं वोहो कुर्यादस्यं पुरुषः। जो दूसरे का उपकार करना चाहता है निश्चय ही पहले उसका उपकार हो जाता है, ऐसा समझकर कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे का अपकार न करें। ओम शांति शांति इति शुभम।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
1: हरि ओम तत्सत् वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांश्च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम् श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः श्री रामदूताय नमः श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज मंडे 4 अगस्त को प्रसारित इस विशेष श्रावण प्रभात वाणी कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन करता हूँ। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए यह अत्यंत पावन एवं मंगलमय दिन माना जाता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से

जो शिव सती चरित्र का हम लोग पाठ कर रहे हैं, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। कल जहाँ से विराम लिए थे हम लोग आगे बढ़े, आज बालकांड दोहा संख्या से हम आगे बढ़ रहे हैं।

भगवान शिव ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को भगवान शिव ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक ना जानकर परिचय नहीं किया।

0: जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले भगवान शिव चल पड़े। कृपा निधान भगवान शिव बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चलते जा रहे हैं, और इन चौपायों से यह समझ में आते हैं कि भगवान शिव राम का दर्शन करते हुए अति आनंद का अनुभव कर रहे हैं। दोनों ने दर्शन किया, भगवान शिव ने भी और सती माता ने भी। शिव जी ने दर्शन करके आनंद पाया, परंतु माँ सती के कुछ और ही अनुभव रहा। चलिए इस पाठ को हम लोग कल आगे बढ़ाएंगे। आज इसको यही पर विराम देता हूँ। आपके ध्यान के लिए बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: आर्य सभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत यह वेद मंत्र आप स्वीकार कीजिए। प्रस्तुतकर्ता प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। ओम कुर्वन्ने वे

नरे, कितना अच्छा मंत्र है श्रोताओं। हमें अपने जीवन के अंदर हमेशा कर्म करते रहना है। भगवान कहते हैं यदि तुम 100 वर्षों तक जीना चाहते हो तो आलसी प्रमादी मत बैठो, कुरुवन्न वेह कर्माणि, अर्थात अच्छे कर्मों को करते हुए ही जीने की इच्छा करनी चाहिए। हर व्यक्ति ये सोचे कि हम दुनिया में आए हैं तो हमें कर्म तो करना ही है। भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोस्त्व कर्मणि। यही बात वेद में भी कही गई है, वेदोक्त कर्म करने हैं, धर्म के अनुकूल कर्म करने हैं, ऐसे कर्म करने हैं जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, गलत काम न करें। दो प्रकार के कर्म बताए हैं, एक सकाम कर्म और दूसरे निष्काम कर्म। अर्थात सकाम का मतलब है कि हम चाहते हैं बस हमारी कामना पूरी हो, कामना पूरी हो, लेकिन सकाम से ऊपर उठकर हमको निष्काम कर्म कर

करने चाहिए, अर्थात मेरे लिए नहीं सबके लिए हो। सर्वे भवन्तु सुखिना का पाठ उसके अंदर हो, मेरा ही भला न हो प्रत्येक व्यक्ति का भला हो। इसीलिए भगवान ने कहा, कृष्ण ने भी, यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोको यम कर्म बंधन। हे अर्जुन, इस संसार के अंदर भगवान ने कहा वेद के अंदर कि सकाम कर्मों से ऊपर उठकर निष्काम कर्म कर, सबके भलाई के लिए कर्म कर। यदि ऐसा करोगे क्या होगा, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति। संसार के अंदर इसके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं, कर्म तो हमको करना ही है। देखो ना, छोटी सी चींटी होती है ना, वो भी कर्म करती है। जब तक काम नहीं करेगी तो खाएगी क्या, तो हमें भी तो कर्म करने ही है। लेकिन कैसे कर्म करने हैं, अच्छे लोकोपकार के, भलाई के, सबके लिए सोचना है तो सकामता से ऊपर उठकर निष्कामता के कर्म, जिसमें सबका भला हो, परिवार का भला हो, समाज का भला हो, किसी भी राष्ट्र का भला हो। कहते हैं, एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। जब आप सकामता से ऊपर उठकर निष्काम भावना, यज्ञीय भावना, इदम अग्नि स्वाहा की भावना, मिनिमम फॉर सेल्फ एंड मैक्सिमम फॉर अदर्स, ये जब सोचेंगे तब जो है वो निष्काम कर्म कहते कहलाते हैं। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, ऐ मनुष्य, संसार में जीते हुए ही कर्मों को करता रहे। लेकिन कर्माणि बहुवचन है, कैसे कर्म करने हैं जो वेद के अंदर बताएं, ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो वेदों के अंदर नहीं बताएं। जो विधि और निषेध, विधि का मतलब है ये करना है और निषेध का मतलब ये नहीं करना है। इसलिए सकाम कर्मों के साथ साथ निष्काम कर्म की तरफ हम आगे बढ़ें। भगवान कृष्ण भी यही कहते हैं, हमारा कर्म करने में अधिकार है श्रोताओं, फल तो अपने आप आएगा, फल तो पीछे पीछे चलता रहता है। इसलिए हमारा फोकस, हमारा अधिकार, कृष्ण कहते हैं कि कर्म में होना चाहिए। जितना ज़्यादा जोर कर्म, कर्तव्य कर्मों को करने में करेंगे, उतना ही फल उसके पीछे पीछे चला आता है। बहुत बहुत

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: गहलोत राजपूत महासभा मॉरिशस द्वारा प्रस्तुत वेद मास और श्रावण मास के पावन अवसर पर विशेष कार्यक्रम वेद संदेश के श्रवण करने वाले आप समस्त श्रोताओं को आचार्य बीतुला का सादर सप्रेम नमस्ते। आइए सुनते हैं वेद मंत्र पाठ अर्थ सहित। ओम आविसन्निहितं गुहा जरन्नाम महत्पदं तत्रेदं सर्वमार्पितमेजत् प्राणत् प्रतिष्ठितम्। वह परब्रह्मा सब सृष्टि के भीतर और बाहर व्यापकर सबको नियम में चलाता है। ओम एक चक्रम वर्तत एक नेमि सहस्राक्षरम प्रपुरो निपश्चा अर्धेन विश्वं भुवनं जजान यदस्यार्धं क्वतद्बभूव। वह

ब्रह्मा अपने अटूट नियम से सब जगत में व्यापकर सबसे पहले और पीछे निरंतर वर्तमान हैं। उसने अपने थोड़े से सामर्थ्य से यह बहुत बड़ा ब्रह्मांड रचा है और जिस कारण से वह रचता चला जाता है उसका परिमाण नहीं कर सकते। ओम पंचवाही वहत्यग्रमी अशां प्रष्टयो युक्ता अनुसंवहन्ति अयातमस्य ददृशे नयातम् परं नेदीयो वरं दवीय। परमात्मा पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश पांच तत्व को रचकर नियम में चलाता है। विद्वान लोग उसको अपने भीतर जानकर प्रबल और उसे दूर समझकर निर्बल रहते हैं। ओम तिर्यक् बिलशमस ऊर्ध्वबुद्नस् तस्मिन् येशो निहितं विश्वरूपं तदा सतरिषय सप्तसाकं ये अस्य गोपां महतो बभूवु। परमेश्वर ने इस विचित्र रचना की है, उसमें अद्भुत रचना वाले कान आदि तिरछे और केश ऊपर को हैं। उसमें दो कान दो नेत्र दो नथने और एक मुख, इन सातों के द्वारा प्राणी जान प्राप्त करके भीतर शरीर की रक्षा करता है। ओम या पुरस्ताद् युज्यते या च पश्चात् या विश्वतो युज्यते या च सर्वत यया यज्ञप्रांतायते तां त्वा पृच्छामि कतमां सरिचा। जो परमेश्वर सृष्टि के पहले पीछे और जो सब जगत करता है, ओम वह ब्रह्मा है, उसको हम ध्यान पूर्वक जाने। ओम शांति शांति शांति।

0: पाही।
1: हे परमेश्वर, आप अन्न में विद्यमान हैं, आप हमें अन्न द्वारा ऊर्जा प्रदान कीजिए। हे प्रभु, समस्त शक्ति आप में केंद्रित हैं, आप ही प्राण स्वरूप हैं। हम सब मनुष्यों को श्रेष्ठ कर्म करने के लिए एवं कर्म फल भोगने के लिए आप जीवन प्रदान करते हैं। हमें पाप रहित पवित्र धन प्राप्त हो, जिससे सबका कल्याण हो सके। चारों

और उत्तम प्रजा उत्पन्न हो। जहाँ हम बसते हैं वहाँ रोग महामारी और चोर आदि दुष्ट जन न रहें। गौ आदि कल्याणकारी पशुओं की हिंसा न हो। गौ की रक्षा करने वाले पाप कर्म में प्रवृत्त न हो। यजमान की संपत्ति एवं पशुओं की रक्षा हो।

0: शेद।
1: हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, जैसे आप परम पवित्र हैं, उसी प्रकार यज्ञ द्वारा सारा संसार पवित्र बने, पूरे ब्रह्मांड में पवित्रता का संचार हो, यज्ञ के द्वारा सबके मन और बुद्धि पवित्र बने, वैदिक यज्ञों के माध्यम से द्योलोक और पृथ्वी लोक पवित्रता से युक्त हो, यज्ञ से वायु शुद्ध हो, शुद्ध वायु से स्वास्थ्य की वृद्धि हो, उत्तम स्वास्थ्य से ही सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हम यज्ञ आदि परोपकार कर्मों को कभी न त्यागें, यज्ञ करने वाले याजकों को परमात्मा कभी नहीं त्यागता, परमात्मा की कृपा सदैव बनी रहती है।

हम इस यज्ञ रूप पवित्र कर्म को अपने जीवन में धारण करते हैं। यज्ञ की 100 धाराओं द्वारा हम अपने जीवन को शक्तिशाली बनाते हैं तथा यज्ञ की 1000 धाराओं द्वारा हम अपने जीवन को अधिक शक्तिशाली बनाते रहेंगे। सभी सूर्य देव की किरणों से ऊर्जावान बने। 100 धाराओं वाले पवित्र यज्ञ से मन में वेद वाणी की धारा बहती रहे। वेद वाणी द्वारा मन शक्तिशाली और पवित्र बने।

0: खड़े मिलाते चलिए सुबह के ठीक 6 बजे है। संध्या संक्षिप्त समाचार आपसे अदिति नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नितुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंगलवार को मलीना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठा कर उसे ले जाया गया। हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन चलने को कहा। हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए हिंसा से कम और उचित बल का प्रयोग किया है। सरकारी गठबंधन में शामिल रजिस्टों से कौतना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। याद रहे कि शुक्रवार को राष्ट्रीय सभा में बजट बहसों के समाप्त होने के बाद फाइनेंस बिल पारित कर दिया गया। 8,000 यूनिट्स वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि

0: कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियां, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। हमास गुट के निरस्त्रीकरण योजना पर सहमति देने के बावजूद इसराइल की तरफ से दो सिलसिलेवार रातों के दौरान हमले किए गए। इसराइली ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि गजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए इसराइल तक कोई शांति समझौता नहीं पहुंचा है। आखिर में स्थानीय मौसम का हाल। आम हालत पूर्व से आ रहे कुछ बादलों का असर हमारे इलाके पर पड़ रहा है। उधर मास्करेंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार एंटी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह पूर्व और सेंट्रल प्लेटू पर बारिश होगी। दिन के दौरान आमतौर पर मौसम में सुधार आएगा। दोपहर बाद भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं और ऊंचाई वाले जगहों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी इन इलाकों पर बारिश जारी रह सकती है। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस। साहिली इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय, शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा। तो ये थी अब तक की खबरें। हम आपसे मुलाकात करेंगे 6:30 मुख्य समाचार बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv. Rise and
2: shine. 819 kilohertz, ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।
4: आइए सुनिए मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।
5: ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुरुक्रमः ओम शं। सभी आदरणीय श्रोताओं को पंडिता पार्वती सुबह का सादर सप्रेम अभिवादन। आज के इस प्रातःकालीन शुभ बेला में जागृति कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का विषय है संकल्प शक्ति का प्रभावपूर्ण महत्व। अभी हम श्रावणी महापर्व के पवित्र मास से गुजर रहे हैं। श्रावणी पर्व एक ज्ञान प्रधान पर्व है, जो मनुष्य को वेद की शिक्षा और ऋषि परंपरा से जोड़ता है। हम यह संकल्प डिटर्मिनेशन लें कि प्रतिदिन कम से कम एक मंत्र को अर्थ के साथ पढ़ें और उसकी शिक्षा अपने जीवन में उतारें। ऐसा करने से वेदों की रक्षा होती है और हम हमारे ऋषि मुनियों के विचारों से जुड़ जाते हैं। यज्ञ के अंतर्गत शांतिकरणम मंत्र समूह में ऐसे 6 शिव संकल्प से जुड़े मंत्र हैं, जिन्हें याज्ञिक उच्चारण करते हैं। ये 6 मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं। शिव ईश्वर के अनेक प्रमुख नामों में से एक है। ईश्वर भक्त, धर्म और सत्य से तथा वैदिक दर्शन, वैदिक फिलोसोफी, सिद्धांत, प्रिंसिपल्स, मूल्य, वैल्यूज और संस्कृति, कल्चर से जुड़े रहने तथा अपने जीवन में इन सब विशेषताओं को उतारने का शिव संकल्प करते हैं। अर्थात वे ईश्वर को साक्षी मानकर यह दृढ़ निर्णय लेते हैं और निश्चय करते हैं कि वे वेदों से जुड़ी इन सभी अमृत रूपी आदर्शों को अपने शुभ कर्मों द्वारा अपनी जीवन यात्रा को वेदों के प्रकाशित लक्ष्य तक पहुंचाने में सार्थकता के साथ सक्षम होंगे। संकल्प शब्द संग और कल्प से मिलकर बना है। संग का अर्थ है एक साथ, कल्प का अर्थ है सामर्थ्य, योग्यता। संकल्प का अर्थ है संग्रहित रूप से बौद्धिक और आत्मिक शक्ति के शुभ कार्यों या सकारात्मक पॉजिटिव कार्यों में ढालने की तत्परता और स्वाभाविकता हो। इन छह मंत्रों के प्रथम दो मंत्रों का शब्दार्थ होगा, फिर सामूहिक रूप से उन सभी के भावार्थ के साथ उनकी व्याख्या भी होगी। पहला मंत्र है ओम यजाग्रतो दुर्मुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दुरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शब्दार्थ ओम ईश्वर का सर्वोत्तम नाम, यजाग्रतु जागृत अवस्था में, दूरम दूर दूर तक, उदयति जाता है, दैवम आत्मग्रहण करने वाला, ऐति आ जाता है, सुप्तस्य निद्रा की अवस्था में, वैति जाता है, दुरंगमम दूर दूर तक, ज्योतिषाम प्रकाश देने वाली इंद्रियों का, शिव संकल्पमस्तु धर्म के विषय पर आधारित ईश्वरीय संकल्प हो। दूसरा मंत्र है ओम येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विधते सुधीरः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शब्दार्थ कर्माण्य कर्म करने वाला, पसह कर्मनिष्ठ, मनीषिणो धर्मयुक्त विद्वान जन, यज्ञ यज्ञ रूपी मानव कर्म, कृण्वन्ति श्रेष्ठ बनाने वाला, विधथेषु यज्ञ संबंधित हवि आदि पदार्थों के ज्ञान होने पर, धीराः धैर्य के साथ, यदपूर्वम आत्मा स्वरूप, यक्ष यज्ञ करने में समर्थ निपुण। भावार्थ और व्याख्या, ये सभी छह के छह मंत्र संकल्पों के मंत्र है। मन स्वयं का स्वामी है, अतः मन में संकल्प करने की, ठोस प्रतिज्ञा करने की प्रबल शक्ति होती है। अच्छी आदतें हों या बुरी आदतें, दोनों ही मन माइंड को आकर्षित करती है। आदतों को संकल्प और लक्षित शक्ति द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। संकल्प व्यवहार बिहेवियर को सुधारता है। अपनी आदतों को नियंत्रण में रखते हुए हम अपने लक्ष्य टारगेट की पूर्ति कर सकते हैं, अर्थात हम अपने लक्ष्य की पूर्णता की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन में सुख शांति तथा आध्यात्मिकता का मुख्य आधार भी संकल्प ही है। आदतों से व्यवहार बनता है, व्यवहार से चरित्र बनता है, बिहेवियर मेक्स द पर्सनालिटी। संकल्प एक ऐसी मानव शक्ति है जो अच्छी विचारधाराओं से बंधी होती है। दृष्टि इनसाइट से दृष्टिकोण बनता है और दृष्टिकोण से विचार स्वयं बदल जाते हैं। विचारों के अनुसार बुद्धि प्रभावित होती है, विचारों के अनुसार बुद्धि प्रभावित होती है। बुद्धि अपने गुण और विशेषताओं के कारण संस्कार का वाहन व्हीकल मानी जाती है। बुद्धि को श्रेष्ठ बल भी कहा जाता है। बुद्धि द्वारा ही

0: संकल्प को एक नई दिशा दिखा सकते हैं। ईश्वर को साक्षी मानकर संकल्प के साथ यज्ञ करना अपना मार्गदर्शन सिद्ध करवाना होता है। यही यज्ञ फल की आकांक्षाएं यजुर्वेद के शिव संकल्पों के मंत्रों से जुड़ी हुई है। संकल्प के आधार पर ही मन कार्य में प्रवृत्त होता है। मन के प्रवाह से कार्य की फल प्राप्ति होती है। संकल्प शक्ति से जीवन का कायाकल्प भी संभव है। यज्ञ कर्म से जुड़े हुए मेधावी जन जिस मन के द्वारा शुभ कर्म करते हैं, उन्हीं के द्वारा वे अपनी अंतरात्मा से शिव संकल्प वाले बनने का निश्चय करते हैं। मन एक बलवान तथा ज्योतिर्मय तत्व एलिमेंट है। यह मन सोते जागते दूर दूर तक जाता है, क्योंकि इसमें अपनी अनोखी ज्योति है जो बाहर की ज्योति से भी अधिक तेज है। मन के चारों ओर ज्ञान ही ज्ञान है। जैसे सारथी अपने वेग फॉर्स स्पीड से चलने वाले घोड़ों को इधर उधर बार बार ले जाता है, ठीक उसी प्रकार मन इंद्रियों सेंसर्स को विषयों में बार बार ले जाता है। मन वायु से अधिक तेज गति वाला होता है, फिर भी यह मन हृदय में आत्मा व परमात्मा के साथ ही प्रतिष्ठित होता है। इसी एक रूपता रखने वाला हमारा मन शिव संकल्प वाला हो, हमारा मन उत्पादक हो, अच्छे गुणों और मूल्यों का उत्पादन करें, वह सदा वर्तमान में रहते हुए हमारी इंद्रियों को ईश्वरीय शक्ति से प्रकाशित करता रहे। मन को सदा संकल्पित करके रखना चाहिए। मन की अपार शक्ति और ऊर्जा का प्रयोग शुभ कर्मों में लगाएं। मन की भावनाएं सागर की लहरों के समान होती है, जो मन को उथल पुथल करती रहती है। इस क्रिया से मनोवृत्ति असंतुलित हो जाती है। मन बुद्धि की चेतना शक्ति से कम और हृदय की कोमल तथा भावुक भावनाओं से अधिक जुड़ा रहता है। विवेक जब कमजोर हो जाता है, तब मन उल्टी दिशा में मुड़ जाता है और उसी दिशा में दौड़ लगाने लगता है। दोषों में लिपट कर मन दूषित हो जाता है। बौद्धिक विचार उस समय मन के विचारों के अधीन हो जाता है, परंतु बुद्धि के साथ रहकर मन स्वस्थ रहता है। फलस्वरूप मनोबल बढ़ता है। मन में एक अनुकूल तथ्य फैक्ट ज्योतिर्मय होता है। एक दार्शनिक फिलोसोफिकल तथा प्राकृतिक नेचुरल तथ्य यह भी है कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा जीवन। जीवन के साथ जुड़े ये युग्म मूल्य कर्म फल के रूप में मन के साथ जुड़ जाते हैं। मन अपनी भली बुरी इन संपत्तियों के साथ आत्मा से जुड़ जाता है। आत्मा मन के अपनाए हुए लक्षण और स्वभाव की संपत्ति को अपने साथ लेकर जन्म जन्मांतरों का चक्कर लगाती रहती है। बौद्धिक विचारों में परिवर्तित होकर मन बुद्धि की पवित्रता से जुड़कर शुद्ध मूल रूप से पुनः ढलता है और सुव्यवस्थित भी होता है। द माइंड रिफॉर्म्स एंड रिजल्ट्स इनटू ओरिजिनलिटी। इसलिए हम अपने संकल्प को शिव संकल्प बनाएं, जिसमें विचारों की शुद्धि हो, पवित्रता हो। स्मरण रहे कि मन ही मनुष्य का परम मित्र है और मन ही मनुष्य का परम शत्रु भी है। संकल्प नदी की निरंतर बहने वाली उस तेज धारा के समान है, जो सीधे अपने लक्ष्य सागर तक बिना एक पल रुके पहुँच कर रहती है। मन भी इसी तरह संकल्पित हो। आप सभी को श्रावणी महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। इति ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे मॉरिशस आर्य रविवेद प्रचारिणी सभा द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जागृति।

सुबह के 6:20 हुए हैं। नमस्कार श्रोताओं, एमबीसी रेडियो पर आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ। जी हाँ, आज सोमवार 3 अगस्त 2024 और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। चलिए, जागृति प्रोग्राम के बाद आइए सुनते हैं श्रावण मास पर विशेष कार्यक्रम आचार्य केदू जी के साथ। और भूलिएगा नहीं, 6:30 आप सुन पाएंगे समाचार। हमारी मुलाकात होगी समाचारों के बाद।

0: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।
1: ओम इदं विष्णु विचक्रमे त्रिधा

प्रस्तुत इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का विशेष स्वागत करते हैं। श्रावण मास आर्यों के लिए एक बहुत ही पावन मास है, जिसके अंतर्गत यज्ञों का अनुष्ठान, वेद पाठ, वेद स्वाध्याय, यज्ञोपवीत धारण अथवा यज्ञोपवीत बदलना आदि मुख्य होता है। यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात व्रत भी धारण किया जाता है और वेदों में भी इस मास के अंतर्गत व्रत धारण करने के लिए उपदेश दिया गया है। चलें इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखें कि व्रत किसको कहा गया है। संस्कृत व्याकरण के अनुसार व्रत शब्द व्री संवरण धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है अच्छी तरह से चुनना। यास्क आचार्य जी निरुक्त शास्त्र में व्रत शब्द का निर्वचन इस प्रकार करते हैं, वृणोति इति सतः वृणोति आच्छादयति इति व्रतम्, अर्थात व्रत उसको कहते हैं जो ढांप लेता है। वह कर्म जो कर्ता को शुभ या अशुभ फल से ढांप लेता है वह व्रत कहलाता है। दूसरा अर्थ यास्क आचार्य इस प्रकार करते हैं, व्रतम एतस्या देव निर्वृति कर्म बारस या तीति सतः, हिंसा असत्य चोरी आदि से दूर रहने के लिए जो नियम यम आदि का पालन किया जाए वह व्रत है। ये नियम आदि मनुष्य को पापाचरण से हटाते हैं। श्रीदत्त जी अपने समय प्रदीप नामक पुस्तक में व्रत का अर्थ इस प्रकार करते हैं, स्वकर्म विषयो नियतः संकल्प व्रतम्, यह एक निर्दिष्ट संकल्प है जो किसी विषय से संबंधित है, जिससे हम कर्तव्य के साथ अपने को बांधते हैं। किसी अन्य विचारक का यह कहना है कि व्रत एक मानसिक क्रिया है जो प्रतिज्ञा से पूर्ण किया जाता है। इन सब प्रमाणों से यही सिद्ध होता है कि व्रत का अर्थ वह कर्म है जो हमें पाप से बचाता है। अपने कर्तव्य कर्मों को नियम अनुसार करने के लिए ही इसका चयन किया जाता है। उदाहरण के रूप में यदि कोई व्यक्ति बुरे कार्य में लगा हुआ हो, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना इत्यादि, उस बुरे कार्य से यदि वह छुटकारा पाना चाहता है तो उसके लिए जो मार्ग चुना जाता है, जो प्रतिज्ञा ली जाती है, वही व्रत कहलाता है। इस कारण प्रारंभ में ही हमने संकेत किया था कि जिसको अच्छी तरह से चुना जाए व स्वीकार किया जाए वही व्रत कहलाता है। यहाँ पर पापाचरण को छोड़ने के लिए जिस मार्ग को हम पूर्ण रूप से चुनते हैं उसी को व्रत कहा गया है, और वह मार्ग हमेशा सत्य का मार्ग होता है। इस कारण व्रती बनते समय हम लोग प्रायः यह मंत्र बोला करते हैं, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयम तन्मेराध्यताम इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मंत्र के अंतर्गत हम अग्नि स्वरूप परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे व्रतों के स्वामी परमात्मन, आप सत्य व्रत के पालने से व्रतपति हैं, उसी प्रकार हम भी व्रतों का स्वामी बने। आपके बताए हुए वेद मार्ग सत्य धर्म का पालन करके धर्म काम और मोक्ष रूप फलों को अच्छी तरह से प्राप्त करें। हम लोग इस सत्य मार्ग से कभी अलग न होवें। अनृत अर्थात जो असत्य हैं उससे हम हमेशा अलग रहें। इसी मंत्र की व्याख्या करते हुए शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि मनुष्य का आचरण दो प्रकार का होता है, एक सत्य और दूसरा झूठ। जो पुरुष वाणी मन और शरीर से सत्य का आचरण करता है वह देव कहलाता है, और जो झूठ एवं अधर्म का आचरण करता है
वह असुर व राक्षस नामों से पुकारा जाता है। कहने

का भाव यही है कि जो व्रती अर्थात वेद के सत्य मार्ग चुनकर धर्मानुसार उस पर चलता है वह देव कहलाता है, और जो इससे अलग व्यवहार करता है वह असुर आदि कहलाता है। वेदों का आदेश है कि वर्षा ऋतु में वेद पाठ एवं स्वाध्याय का व्रत धारण किया जाए। वेदों के स्वाध्याय से हम वेद में बताए हुए कर्तव्य एवं अकर्तव्य कर्मों को जान पाते हैं। श्रावण मास में वेद पाठी ब्राह्मण वेद पाठ का व्रत लेते हैं एवं वेद के स्वाध्याय का व्रत भी लेते हैं। वेद का भी यही आदेश है, संवत्सरम सशायाना ब्राह्मणा व्रतचारिणः वाचम पर्जन्य जिन्विताम प्रमंडुका अवाशी दुहु। मंत्र में यही भाव है कि वृष्टिकाल में वेद पाठी ब्राह्मण वेद पाठ का व्रत करते हैं और उस समय तृप्तिजनक वेद सूक्तों का पाठ करते हैं, और यह व्रत कभी नहीं तोड़ा जाता है। यदि एक बार व्रती बन जाए तो जीवन भर निभाना पड़ता है। आजकल प्रायः यह समझते हैं कि एक दिन भोजन न करना आदि ये सब व्रत हैं, परंतु उसको उपवास कहा गया है। शरीर के लिए तो भोजन और अन्न बहुत ही आवश्यक होता है, भूखा रहने से तो बीमारी ही होता है। उपनिषद में कहा गया है अन्नम न परिचक्षीत तत् व्रतम्, आए हुए अन्न को इनकार न करना ही व्रत है। कहने का भाव यही है कि अन्न का त्याग करना व्रत नहीं है, अपितु बुरे कर्म एवं स्वभाव का त्याग ना ही सही अर्थ में व्रत होता है। व्रत इति कर्म नाम सत्कर्म करना ही व्रत है। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।

0: हमारा।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घर मिलाइए, सुबह की ठीक 6:30 बज रहे हैं।

नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत आज की सुर्खियों के साथ। पेंशन सुधार के विरोध में मंगलवार से राष्ट्रीय सभा में के सामने धरने पर बैठी मालिना श्रीनिवास को कल पुलिस ने हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया गया। गजिस्तान से कल्तेना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप का खंडन किया। 8,000 यूनिट वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को मकान की चाबियां सौंपी नहीं जा रही। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। कल से कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल जॉन मोजेओ संस्था के साथ मिलकर बोबासा में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को संबोधित है। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत। नमस्कार, इस बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर बाद उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया। हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानूनन मापदंडों के अनुरूप

0: नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्टेशन चलने को कहा। हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना हिंसा के कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस इकलौता नाचिव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर सहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा है। याद रहे कि शुक्रवार को राष्ट्रीय सभा में बजट बहसों की समाप्त होने के बाद फाइनेंस बिल पारित कर दिया गया। 8,000 यूनिट्स वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही हैं। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है, नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा जा रहा है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। आत्रीय वाले आशिता रघु।
1: मॉरिशस में आवास निर्माण परियोजनाओं को लेकर प्रगति जारी है। 14 स्थलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि कुद्दो, रिश्ते और मोदालबे में 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुसार आगे बढ़ रही हैं। मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कुछ लाभार्थियों को घरों की चाबियां सौंपने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हालांकि किसी आवास का निर्माण पूरा हो जाने के बाद भी वह तुरंत रहने योग्य नहीं हो जाता। कुछ स्थलों पर अभी पानी, बिजली और टेलीफोन सेवाओं के कनेक्शन का काम पूरा किया जाना बाकी है। इसके अलावा सड़कों, नालियों, पट्टों और आवास उपयोग की अनुमति से जुड़ी प्रक्रियाएं भी लंबित हैं। देरी के कारणों में कुछ ठेकेदारों की विफलता, न्यायिक प्रक्रियाओं के कारण भुगतान में रुकावट और केबल, दरवाजों तथा अन्य उपकरणों की चोरी भी शामिल हैं। स्थिति को सुधारने के लिए बालिसों, रियोंबेल और तायक परियोजनाओं के कार्य नए ठेकेदारों को सौंपे जाएंगे। वहीं संबंधित सेवा प्रदाताओं के साथ बातचीत जारी है और निर्माण स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है। काम और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के साथ ही लाभार्थियों को घरों की चाबियां चरणबद्ध तरीके से सौंपी जाती रहेंगी।
0: कल से क्रैक यानी कलेक्टिव रिपेरेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल मोर्जियो जॉन मोर्जियो संस्थान के साथ मिलकर बोबासिन में एक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। स्नातक, कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। आशी तरह को
2: ये
1: अन्य लोगों के लिए हस्ताक्षर के लिए उपलब्ध होगा, जिससे सरकार, वित्तीय व धार्मिक संस्थाओं और पूर्व उपनिवेशी देशों के बीच समझौता वार्ता शुरू हो सके। यही इस सम्मेलन का लक्ष्य है।
0: और मुआवजे पर बहसों से परे गुलामी के कुछ ऐसे दर्दनाक अवशेषों पर ध्यान दिया जा रहा है जो आज भी समाज में दिखाई देते हैं, खासकर कुछ शर्मनाक नामों या उपनामों के जरिए जो कभी मालिकों द्वारा अपने गुलामों पर थोपे गए थे और जिसका बोझ पीढ़ियों से कुछ लोग ढोते आ रहे हैं। आशिता रघु।
3: Dans commission justice et vérité, sa première recommandation demande à l'État, à toutes les autorités de présenter apology. Deuxième
1: ट्रूथ एंड जस्टिस कमीशन के अंतर्गत पहली सिफारिश के अनुसार सरकार और सभी अधिकारियों से क्षमा याचना करने की मांग की गई है। दूसरी सिफारिश में मेमोरियल है, यानी आज हमारी यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय गुलाम संग्रहालय है, पर क्षमा कभी मांगी नहीं गई। ये सच है कि ब्रिटिश राज्य द्वारा ये सब किया गया था, पर आज भी हमारे पहचान पत्र में उन सभी पुरुषों और महिलाओं का नाम शामिल है जो नुकसानदायी हैं। अतः हम अपने पारिवारिक नाम का त्याग नहीं कर सकते हैं, इसलिए सरकार को इसका भुगतान करना होगा।
0: पोर्ट लुई के डायोसिस ने कल रोजिल के सेंट मैरीज कॉलेज में वोकेशंस फेस्टिवल

0: के 14वें संस्करण का आयोजन किया। इस सालाना कार्यक्रम का मकसद है नौजवानों और परिवारों को गिरजाघर में अपनी धार्मिक सेवा की भूमिका पर विचार करने के लिए आमंत्रित करना और साथ ही धार्मिक सेवा के लिए प्रशिक्षण ले रहे लोगों की ट्रेनिंग में मदद देना। महिला कैदखानों में सजा काट रही महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किन्युएते नामक गैर सरकारी संगठन की मिलीजुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट्री मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। लोविना सोफी, आशिता रघु।
1: महिला कैदियों के पुनर्वास की तैयारी में कौशल विकास प्रशिक्षण महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का उद्देश्य रिहाई के बाद उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और समाज में सम्मानजनक पुनर्वास सुनिश्चित करना है। किन्युएते संस्था की प्रतिनिधि निशिका पादयाची पायंदी, जो बंदियों को कारावास से लेकर उनके पुनर्वास तक सहयोग प्रदान करती हैं, का कहना है कि ये पहल पहले ही सकारात्मक परिणाम दे चुकी है। इस प्रशिक्षण से इन्हें नौकरी प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी, जिसके बाद पुनः अपराध करके ये वापस जेल में न आएंगे। यही हमारा लक्ष्य है। कई सफल कहानियां हैं। हाल ही में एक महिला जेल से छूटी थी, हमने उसकी मदद की है ताकि वह अपने यहाँ एक ठेला खोल सके जहाँ गांव में सब्जियां बेच रही हैं और इसकी वहाँ पर बहुत आवश्यकता भी थी। महिला बंदियों के लिए ये प्रशिक्षण केवल कौशल सीखने तक सीमित नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत करने और बेहतर भविष्य बनाने का अवसर भी है। इनमें से कुछ महिलाएं जेल से रिहा होने के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की योजना भी बना रही हैं। ये सभी प्रशिक्षण बहुत फायदेमंद है, जहां थोड़े पैसे में अपना एक व्यवसाय शुरू कर पाऊंगी। मुझे खुशी है कि यहां से निकलने के बाद मुझे पता है कि मैं क्या करने वाली हूं। जेल में प्रशिक्षण के माध्यम से मैंने सिलाई के प्रति रुचि भी विकसित की है। बंदियों को उनके इस सफर में जेल अधिकारियों का भी सहयोग मिल रहा है। लीड प्रिजन ऑफिसर जेनिफर कांजी, जिन्होंने स्वयं कृषि का प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अब अपना अनुभव प्रतिभागियों के साथ साझा कर रही हैं। वहीं वृंदा बक्तव लगभग 10 महिला बंदियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे रही हैं। फिलहाल हम महिलाओं के लिए अंडरगार्मेंट और पैजामा बना रहे हैं। इस परियोजना के तहत हमें 2 मशीन भी प्राप्त हुई है। प्रशिक्षण के बाद ये सफलतापूर्वक एक अंडरगार्मेंट भी बना पाएंगी। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिला बंदियां केवल नई कौशल ही नहीं सीख रही हैं, बल्कि उन्हें जीवन में नई उम्मीद और आत्मविश्वास भी मिल रहा है। ये पहल उन्हें रिहाई के बाद एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन की नई शुरुआत करने का अवसर प्रदान कर रही है।
0: सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोजिसी डॉ पेपल को पूरा करने में 3 साल लगे, जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह, सेशल्स और मॉरिशस में पाई गई, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई। इसके लिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों में थे, जिन्होंने शागोसवासियों के मुद्दे पर समर्थन दिया है। इसके लिए उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था। इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है। कैंडी मौका, यशना मिश्रा।
2: L'Odyssée d'un peuple mauricien, निर्देशक सिल्वन नायडू की फिल्म है। उन्हें इस फिल्म का विचार COVID-19 महामारी के दौरान आया। फिल्म की शूटिंग सेनेगल में एक जहाज पर की गई। फिल्म के कुछ दृश्यों को और प्रभावी बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी सहारा लिया गया।
3: Alors, il faut savoir que l'histoire se passe entre les Chagos, Seychelles, Maurice, toute la part des déportations.
2: Chagos, Seychelles, Mauritius के बीच की कहानी है, युद्ध की भी कहानी है। हमें लंदन, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जाना पड़ा बयान लेने के लिए। इस डॉक्यूमेंट्री

0: के माध्यम से सिल्वन नायडू शागोसियों की स्मृतियों को संरक्षित रखना और उनकी कहानी नई पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहते हैं। उनका मानना है कि शागोस पर आधारित हर रचना इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस विषय पर हर एक फिल्म इस संघर्ष में योगदान देगी। ये फिल्म एक अनकही दास्ता है। ये 5 घंटों की फिल्म हो सकती थी जिसे 2 घंटों का बनाया गया है। एक कहानी जो लोग जानते हैं। उनकी कई परियोजनाएं जारी हैं, जिनमें नेल्सन मांडेला के नाम विनी मांडेला के पत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री शामिल है।
1: तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। आज इसके 18वें दिन को आदि पेरुकु मनाया जा रहा है। विवाहित महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। ये विशेष रिपोर्ट अशिता रघु के साथ।
2: नदी की शांत धारा के किनारे आज श्रद्धा और परंपरा का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। मंदिर की घंटियों और मंत्रोच्चार के बीच महिलाएं प्रकृति को नमन करते हुए अपने परिवार के सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना कर रही हैं। विवाहित महिलाओं के लिए आदि का ये पर्व विशेष महत्व रखता है। इस दिन वे अपनी ताली यानी वैवाहिक मंगलसूत्र को बदलती हैं, जो वैवाहिक जीवन की पवित्रता, पति की लंबी आयु और परिवार के कल्याण का प्रतीक माना जाता है। अंबिके कहती है,
3: मेरे
0: लिए इस पर्व और इस ताली का बहुत महत्व है, जो मेरे और मेरे पति के बीच के रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। आज मैं आमिन के यहाँ इस पवित्र धागे को हल्दी से पवित्र कर आमिन का आशीर्वाद प्राप्त करने आई हूँ। मेरे विवाह को 38 साल हो चुके हैं और हर साल मैं ताली बदलने आती हूँ।
2: आज नदी किनारे कई दंपत्तियां आए हुए हैं, जो अपने विवाह के समय लिए गए वचनों को पुनः दोहराएंगे। रागिनी अचना पियल कहती है, हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। सुबह हम नदी किनारे जाकर ताली बदलेंगे। मेरा पति वैसे ही ताली बांधेगा जैसे विवाह के समय किया था। अपने विवाह के वचनों को पुनः हम दोहराएंगे। कोविल में जाकर पूजा करेंगे और शाम के समय हम परिवार के साथ वक्त बिताएंगे। आज का ये अनुष्ठान केवल व्यक्तिगत आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का भी माध्यम है। बुजुर्गों का कहना है कि ऐसी परंपराएं नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ती हैं और हमारी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखती हैं। आया सूर्या कहते हैं,
4: आडी से ले कत्रियम मुआ जी कलंत्रिये तमुल, दोंक उजुजी सेतुएल इल मोरिस नुपे सेलेब्रे आडी पड़िने ताम पिरक विड़ा।
5: आदी तमिल कैलेंडर का चौथा महीना है। आज विशेषकर मॉरिशस में आदि मास का 18वां दिन यानी आदि पेदिनेतम पिरक वीर है, जहां हम प्रकृति, नदियों की समृद्धि व महत्व, कृषि तथा परिवार के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं। अतः आदि पेदिनेतम पिरक वीर विश्वास, कृतज्ञता, मानवता और प्रकृति को समर्पित एक पर्व है।
2: नदी की अविरल धारा की तरह ये परंपराएं भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए आदि का ये वार्षिक अनुष्ठान आस्था, परिवार और संस्कृति का जीवंत प्रतीक है।
1: बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। ग्रीस में जंगलों में लगी आग बुझाने के अभियान में कार्यरत 2 हेलीकॉप्टरों के बीच हुई टक्कर में 2 क्रू सदस्यों की मौत हुई है। ये हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ी दूरी पर पेश आया। हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर्स टकराने से एक में आग लग गई, जबकि दूसरे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत हुई है, जिनमें कई बच्चे शामिल हैं। हमास गुट के निरस्त्रीकरण योजना पर सहमति देने के बावजूद इसराइल की तरफ से 2 सिलसिलेवार रातों के दौरान हमले किए गए। इसराइली ऊर्जा मंत्री ने एक बयान में कहा कि गजा पट्टी पर हमले रोकने के लिए इसराइल तक कोई समझौता, शांति समझौता नहीं पहुंचा है। चलिए जानते हैं मौसम का हाल। आम हालत, पूर्व से आ रहे कुछ बादल हमारे इलाके को प्रभावित कर रहे हैं। उधर मास्कर हिंस के दक्षिण में पाए जाने वाले एक जोरदार आंधी साइक्लोन के कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान, आज सुबह खासकर पूर्व और सेंट्रल प्लेटो वाले इलाकों पर हल्की बारिश हो सकती है। दोपहर बाद इन इलाकों पर रह रहकर बारिश होगी। ऊंचाइयों पर कोहरा छाया रहेगा। रात के दौरान भी पूर्व और ऊंचाइयों पर बारिश की संभावनाएं हैं। हवा पूर्व की तरफ से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समंदर खराब रहेगा। दक्षिण पश्चिमी समंदर में 3 मीटर तक की ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समंदर और पश्चिमी तथा दक्षिणी लगूनों में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। सेंट्रल प्लेटो पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस, साहिल इलाकों पर न्यूनतम 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सुबह 6:38 पर सूर्योदय हुआ, शाम को 5:53 पर सूर्यास्त होगा। समाचारों के आखिर में सुर्खियां। एक बार फिर पेंशन सुधार के विरोध में मंगलवार से राष्ट्रीय सभा के सामने धरने पर बैठी मलीना श्रीनिवास को कल पुलिस ने हिरासत में लिया और थोड़ी देर बाद उसे रिहा किया गया। रजिस्ट्रों से कौतनाचीव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप का खंडन किया। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद ने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। कल से कलेक्टिव रिपारेशन अवांसमेंट क्रियोल कार्डिनल जॉन मोर्जियो संस्थान के साथ मिलकर बोबासा में एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। ये सिंपोशियम गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में, इसराइली ताकतों द्वारा गजा पर किए गए हालिया हमलों में कम से कम 13 लोगों की मौत। देश विदेश की खबरों के साथ ही मुख्य समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। इसको आप तक पहुंचाने में कादे हमारे साथ रहे, जुड़े रहिए। थोड़ी देर में शोक समाचार। शोक समाचार सुनिए। क्लेफो नंबर 3 वाकवामी, क्लेफो नंबर 3 वाकवामी 75 साल के 75 years old श्री जय प्रकाश गोबिन, श्री जय प्रकाश गोबिन जो प्रकाश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सल्फियाइनों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 10:30 AM। सेंट जोसेफ रोड तेरोज में 58 साल के 58 years old श्री भगवान दास विदेशी, श्री भगवान दास विदेशी जो आनंद मौसा लेग्यूम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े तीन बजे इनकी पत्नी श्रीमती जयवंती विदेशी के मकान सेंट जोसेफ रोड तेरूर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बहुमौसम की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डे 3:30 PM। काशीनाथ रोड पोस्ट डिफ्लाक में 74 साल के 74 years old श्री कृष्णालाल बालरूप जो देवानंद नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान काशीनाथ रोड पर दुफ्लाक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौंदमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेयर हॉफ ऑस नून। पावे रोड पे चिराफे में 85 years old श्रीमती बिदवंती गोखुल पिताशी नाम भोला जो बिदवंती नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज दिन के एक बजे इनके बेटे श्री रामानंद गोकुल के मकान पावे रोड पिचिया फैसी उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। जयपाल रोड प्लेंदी पापाई में जयपाल रोड

grandpapa and me, Tirsat Sal, ke 63 years old, Shri Yashwant Kumar Siu, Shri Yashwant Kumar Siu, jo Dheeraj naam se zara jaane jaate the, inki mrityu ho gayi hai, inki arthi आज दिन के 12:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी पत्नी श्रीमती प्रीति सीओ के मकान जयपाल रोड प्लैंडी पापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थ्रियोली की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे आर हाफ ऑफ नून। ब्रांच रोड बोना कई में, ब्रांच रोड बोना कई में 46 साल की 46 ईयर्स ओल्ड श्रीमती प्रेमिला मीतू, श्रीमती प्रेमिला मीतू पैदाशी नाम सुब्रन, जो रितु नाम से ज़रा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 2:15 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 2:15 बजे इनके पति श्री विवेकानंद मीतू के मकान ब्रांच रोड बोना कैसे उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चैकी श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे आर क्वार्टर पास 2 PM। नंबर 35 आबिलावाल गलियों खुले में, नंबर 35 आबिलावाल गलियों कुले में 92 साल के 92 ईयर्स ओल्ड जनाब शेख कासम महमूद अली, जनाब शेख कासम महमूद अली जो बाय कासम नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इंतकाल कर गए हैं। इनका जनाजा सुबह 10:30 बजे इनका जनाजा सुबह 10:30 बजे इनके मकान नंबर 35 आबिलावाल गलियों कुले से उठाकर पहले नमाज जनाजा के लिए इत्तेफाक उल मुस्लिमीन मस्जिद दे जाया जाएगा। फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रस्तान, फ्यूनरल टू डेट 10:30 AM। क्लेमेंसिया रोड बेलेरिविया सेश में, क्लेमेंसिया रोड बेलेरिविया सेश में 83 साल की 83 ईयर्स ओल्ड श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस, श्रीमती कृष्णा कुमारी रामनोरिस पैदाशी नाम अर्कू, जो सोना मगाजीन नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 11:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 11:30 बजे इनके बेटे श्री कैलाश रामनोरिस के मकान क्लेमेंसिया रोड बेलेरिविया सेश से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11:30 AM। कॉम्बिलेन नंबर 2 ओंगियता में, कॉम्बिलेन नंबर 2 ओंगियता में 67 साल के 67 ईयर्स ओल्ड श्री मुखराज नंदू, श्री मुखराज नंदू जो राज नाम से ज़रा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी अर्थी आज दिन की 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती ओंतवानेत नंदू के मकान कॉम्बिलेन नंबर 2 ओंगियता से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए फिनिक्स की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 2 PM। नेहरू रोड ग्रैंड रिट्रीट में, नेहरू रोड ग्रैंड रिट्रीट में 52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड श्री विनोद मंगरू, श्री विनोद मंगरू इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान नेहरू रोड गौंद रोहतक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लावों चक्की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टू डेट 11:30 AM। रॉयल रोड क्लूनी में, रॉयल रोड क्लूनी में 94 साल की 94 ईयर्स ओल्ड श्रीमती आचमा रामास्वामी, श्रीमती आचमा रामास्वामी पैदाशी नाम नगादू जो अमाम नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनके बेटे तोम्बू रामास्वामी के मकान रॉयल रोड क्लूनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए यूनियन पार्क की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 8:01 PM। जुवांस डेपिने में, जुवांस डेपिने में 68 साल के 68 ईयर्स ओल्ड श्री आनंद नमोल, श्री आनंद नमोल जो सनातन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनकी अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके बेटे श्री राज नमोल के मकान जुवांस डेपिने से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वमाशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे 10:30 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। कॉमनवेल्थ गेम्स को अलविदा, 10 दिनों के राष्ट्रमंडल खेलों का कल समापन हुआ। फाइनल मेडल टेबल में 215 गोल्ड मेडल जीते गए। ऑस्ट्रेलिया शुरू से अंत तक आगे रहा 70 गोल्ड मेडल के साथ, टोटल 171 मेडल्स दी कांगारूज के नाम। इंग्लैंड दूसरे पोजीशन पे आया, 29 गोल्ड मेडल, 29 गोल्ड मेडल्स, टोटल 110। कनाडा तीसरे स्थान पे, 19 गोल्ड मेडल, 19 गोल्ड मेडल्स, टोटल 62। और चौथे स्थान पे सम्माननीय स्थान टीम इंडिया के लिए, 13 गोल्ड मेडल, टोटल 39। मॉरिशस 15वें स्थान पे आया, 1 गोल्ड मेडल, टोटल 4। 74 देशों में 15वां स्थान लेना मॉरिशस के लिए सम्मान की बात है। मॉरिशस के लिए ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स यादगार रहेंगे, खासकर जब 28 साल बाद गर्व के साथ राष्ट्रीय धुन, हमारा नेशनल एंथम सुनने को मिला। रेमी फेये हमारा गोल्डन बॉय बना, नोएमी अल्फोंस डबल सिल्वर और मेवेक ले का बॉक्सिंग मेडल, बधाई हो। कई रिकॉर्ड बने, ऐतिहासिक पल रहे, हिस्टोरिक इंडिविजुअल एंड नेशनल माइलस्टोन्स। वेल्स की साइक्लिस्ट एमा फिनुकेन अकेली 4 गोल्ड मेडल जीत पाई। साउथ अफ्रीका का स्विमर 21 कॉमनवेल्थ गेम्स। इंडिया का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस बॉक्सिंग में, 7 गोल्ड मेडल, 3 सिल्वर मेडल। और फिर बार बार कहेंगे, फिर से कहेंगे, मॉरिशस के 4 मेडल, जिनमें रेमी फेये का स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल रहा। क्लब फ्रेंडरीज में लिवरपूल की हार हुई, लिवरपूल लीड्स के खिलाफ हार गया। द रेड्स हाफ टाइम में 2-0 से आगे थे, चैम्बर्स और वर्ड्स का एक ही गोल, पर सेकेंड हाफ में लीड्स की वापसी, कैल्वर्ट लेविन का डबल, आरोनसन और लॉन्गस्टाफ ऑन टारगेट, 4-2 से लीड्स की जीत और लिवरपूल

0: के मैनेजर इराउला की पहली हार। फर्स्ट हाफ में इसाक और वर्ड्स के अच्छे परफॉर्मेंस रहे, पर सेकंड हाफ में सेकंड टीम का डिफेंस कालवर्ट लेविन जैसे अनुभवी नामी स्ट्राइकर के सामने टूट पड़ा। इधर टोटनहम हॉटस्पर ने चेल्सी को 1-0 से हराया रिचार्लिसन का गोल। अन्य मैचों में आयक्स की जीत हुई 3-1 से वुलेंडाम टीम के खिलाफ, फेयेनूर्ड ने 2-1 से अटलांटा को हराया, गलातासराय 3 रेन 3 बर्नली 0 टोरिनो 1 संडरलैंड 1 रेक्साम 0। स्कॉटिश प्रीमियरशिप में फर्स्ट फेज में से जॉनस्टन 4 किलमोनो 3 हिबेनियन 1 मदरवेल 2। रेंजर्स ने अपना पहला मैच ड्रॉ किया था, जबकि आज सेल्टिक की एंट्री होगी डंडी के खिलाफ। फ्रांस न्यूज, अर्जेंटीना का इंटरनेशनल खिलाड़ी इंटरनेशनल मिडफील्डर वालेंटिन बारको चेल्सी में आएगा। स्ट्रासबर्ग से उसे साइन किया गया। वर्ल्ड कप में सब्स्टिट्यूट था, पर इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत के बाद बारको और जूड बेलिंगम रेसलिंग करने लगे थे, इसीलिए बारको फेमस हुआ। टोटनहम हॉटस्पर विक्टर ओसिमहेन के लिए 55 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग भेज रहा है गलातासराय के यहाँ, और ब्रूनो गुमारेस आर्सेनल के यहाँ मेडिकल पूरा करने वाला है, फिर 80 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का ट्रांसफर हो सकता है। इधर मोहम्मद सलाह तुर्की की ट्राबजोंस्पोर टीम के करीब है, इससे पहले बेसिकतास में जाने वाला था, पर अब ट्राबजोंस्पोर उसे साइन करने के लिए फेवरेट है। बायर्न म्यूनिख मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्ट्राइकर बेंजामिन सेस्को को साइन करना चाहता है। इधर एस्टन विला और इंग्लैंड के डिफेंडर एज्री कोंसा आर्सेनल में जाना चाहता है। चेल्सी, टोटनहम हॉटस्पर और न्यूकासल यूनाइटेड तीनों अटलांटा के सेंटर बैक जोजो स्काल्विनी के पीछे हैं, और लिवरपूल का मिडफील्डर कर्टिस जोन्स इंटर मिलान में जाना चाहता है। लिवरपूल ने उस पर 30 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का दाम रखा है। लोकल स्पोर्ट में रीजनल फुटबॉल, रोशनॉय स्पोर्ट्स क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट में कल सिलेक्शन प्लेन दे रोश ने रियोले कैडेट्स को 5-0 से हराया, पांचों गोल पुष्कर दमरी की ओर से। इधर आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावागेंजा के दूसरे सप्ताह में मैच नंबर 2 में कॉन्टिनेंटल चीतास की जीत हुई 2 विकेट से एपीपी लियोपार्ड्स के खिलाफ, प्लेयर ऑफ द मैच कीगन केपनर रहा। मैच नंबर 3 में वन हेल्थ जगुआर जीत पाए टोमास कुक टाइगर्स के खिलाफ 5 विकेट से। मैच का सज्जन मैन ऑफ द मैच रहा रजन। सो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार आप सभी लोगों को अभी की ओर से शुभ दिन।
1: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: आइए सुनिए सीबी की ओर से एक विज्ञप्ति। फॉरेस्ट साइड के आसपास के इलाके बो रेजिडेंस सैलू अटली रेजिडेंस ला कोलोम रेजिडेंस जास्मिन ला ब्रासरी और आसपास के रहने वालों को ये सूचित किया जाता है कि आज सोमवार 3 अगस्त 2026 दिन के 12 बजे से दोपहर के 1 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से चालू कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: 819 kHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

सुबह के 7:06 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आप लोग जुड़े हुए हैं रेडियो मॉरिशस के साथ और आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना प्रोग्राम। आज सोमवार 3 अगस्त 2026 है जी हाँ, और ये दिन बहुत ही सुंदर है क्योंकि ये दिन आप लोगों के साथ शुरू करने का मौका मिल रहा है हमें, और हमें पता है कि आप लोगों को भी इस कार्यक्रम बेहद पसंद है। और जितने लोग हमको सुन रहे हैं, नमस्कार आप सबको, साथ देने के लिए धन्यवाद। कहते हैं ना, जिंदगी का असली सफर दूसरों से आगे निकलना नहीं बल्कि हर दिन अपने ही कल वाले रूप से बेहतर बनना है। छोटे छोटे कदम भी एक दिन बड़ी मंजिल

0: तक पहुंचा देते हैं दोस्तों। इसीलिए हर सुबह अपने दिल से बस इतना कहना, आज मैं हार नहीं मानूंगा, आज मैं सीखूंगा, मुस्कुराऊंगा और कल से बेहतर इंसान बनने की पूरी कोशिश करूंगा। और यहाँ पर हम सुनने जा रहे हैं चिंतन डॉक्टर शांति महावीर जी से।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहाँ विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: हमारे विचार हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं, हमें दिशा देते हैं। जैसा हम सोचते हैं हम वैसा ही बनते हैं और व्यवहार करते हैं। इसीलिए प्रत्येक दिन का आरंभ हम अच्छे विचारों से करें और उसे संपन्न भी पवित्र विचारों से करें।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: सात बजकर 16 मिनट हुए हैं दोस्तों। हमें पता है जब सोमवार का दिन आता है सुबह सुबह आप लोग बस इंतज़ार करते हैं आज हम कौन सा गाना सुनने वाले हैं, उषा जी ने हमारे लिए क्या तैयार किया है और आपके प्लेलिस्ट हमने तैयार की है। आपके मैसेजेस और फ़ोन कॉल के लिए हम आपको कहेंगे बहुत धन्यवाद। हर पुराना गाना जो है ना दोस्तों एक धुन नहीं होता बल्कि अनेक यादों एहसासों और बीते लम्हों का जीता जागता सफ़र होता है। इन गीतों की मिठास वक्त के साथ कम नहीं होती बल्कि हर बार सुनने पर दिल को एक नई सुकून भरी मुस्कान दे जाती है। तो चलिए लता जी के बाद उनकी आवाज़ फिर से हम सुनेंगे। इस बार

कदा दिलो जान से हुआ हूँ मैं तो उस पे फिदा, कोई जाने ना जाने कोई माने ना माने, मैं तो कहता हूँ उनको खुदा।

7:27 हुए हैं दोस्तों, अभी रफी साहब का गाना हम सुनने जा रहे हैं, प्यार ही प्यार है। चलिए आज का दिन हम प्यार बांटेंगे।

वैसे हर एक गाना एक से बढ़कर एक सुंदर है, और यहाँ पर आज सोमवार 3 अगस्त बहुत सारे लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं, और उनको हम कैसे भूल सकते हैं। तो पूरी एमबीसी टीम की ओर से आप सबको हम विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें, यही हम कामना करते हैं।

7:43 हुए हैं दोस्तों, एक छोटी सी कहानी आप लोगों के लिए। एक गांव में दो मिट्टी के दिए थे। एक दिया हमेशा शिकायत करता था, मैं बहुत छोटा हूँ, मेरी रोशनी से क्या बदलेगा। दूसरा दिया चुपचाप हर शाम जल जाता था। एक रात गांव में अचानक बिजली चली गई, घर अंधेरे में डूब गए। लोगों ने उस छोटे दिए को जलाया। धीरे धीरे उसकी रोशनी से दूसरे दिए भी चलते गए और पूरा गांव रोशन हो गया। तब पहले दिए को समझ आया कि रोशनी का महत्व उसके आकार से नहीं बल्कि उसके जलने से होता है। और वैसे जीवन भी बिल्कुल उसी दिए की तरह है। हम अक्सर हम अक्सर सोचते हैं कि हम अकेले क्या बदल सकते हैं, लेकिन सच ये है कि एक अच्छा विचार, एक मीठी बात, एक सही कदम और एक सच्ची मुस्कान किसी की पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। इसलिए कभी खुद को छोटा मत समझो। हर इंसान अपने अंदर एक रोशनी लेकर पैदा होता है जो ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का भी रास्ता रोशन कर देता है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: अपन घर ही मिला राजा फजर के 8 बजे तक। नमस्ते, पेश बा भोजपुरी के समाचार। मंगर के माली नाशी निवास अपन कुत्ता के संगे राष्ट्रीय सभा के सामने पेंशन सुधार आर फाइनेंस बिल के विरोध में एगो टेंट लगा के धरना परी बैठल रहल। कल दोपहर सार्वजनिक रास्ता परी बाधा पैदा करके आरोप परी पुलिस ओकरा हिरासत में ले लक आर वैन में बिठा के ओकरा ले जावल गल। हालांकि थोड़ा बखत बाद ही ओकरा रिहा कर देवल गल। बकिर ई घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर ही वायरल हुआ था। पुलिस के अनुसार युवती के टेंट कानून के मापदंड के अनुरूप नहीं रहल। पुलिस अफसर लोग ओकरा आवश्यक कार्यवाही खातिर स्टेशन चले के बोलन जा। हालांकि जब उ लोग उ सहयोग करे से इनकार करलक तो उ लोग के ओकरा पुलिस के गाड़ी में बिठावे के पड़ल। पुलिस के अनुसार उ लोग एकर खातिर बिना कोनो हिंसा के आर कमती से कमती उचित बल के प्रयोग कर लें जा। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस से कौतना चीफ पुलिस के ई हस्तक्षेप पर असहमति जतैले बाटे आर एक शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के उल्लंघन बोलले बा। याद रहे कि सुख के राष्ट्रीय सभा में बजट बहस की समाप्त होला के बाद फाइनेंस बिल पारित कर देवल गेल है। 8000 गो यूनिट होला सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थल में से 14 गो के काम पूरा हो गल बाटे, जबकि 3 गो अन्य परियोजना निर्धारित बखत के अनुसार चलता। हालांकि एकाध गो कारण से लाभार्थी लोग के नवा मकान की चाबी सौंपे खातिर देरी हुआ था। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टर लोग देने से एकाध गो खामी, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इस सब स्थल पर ही तोड़फोड़ के घटना जैसन समस्या के कारण ऐसा हुआ था। बकीर ओ आश्वासन दिले हुआ कि समाधान खातिर काम हुआ था। नवा कॉन्ट्रैक्टर लोग के काम सौंपल गल है और संबद्ध स्थल पर ही सुरक्षा बढ़ावल जाता। कल से क्राक यानी कलेक्टिव रेपारेशन अवांसमेंट क्रेओल कॉर्डिनल जॉन मोजेओ संस्थान के संगे मिल के बोवासे में गो संगोष्ठी के आयोजन करता। इस सिंपोशन गुलामी की याद और भावी पीढ़ी लोग पर ही एक असर के समर्पित है। स्नातक

0: कानूनी विशेषज्ञ और धार्मिक प्रतिनिधि लोग तथा सिविल सोसाइटी के सदस्य लोग गुलाम बनावल गल आदमी लोग के और ओ लोग के आवत पीढ़ी खातिर क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीका पर विचार करे के वास्ते कत्र होवत होंजा मुआवजा पर ही बहस से पड़े गुलामी के एकाध गो ऐसा दर्दनाक अवशेष पर ही ध्यान देवल जाता जे आज वो समाज में दिखाई देवेला खासकर एकाध गो शर्मनाक नाम और उपनाम के जरिए जे कबो मालिक लोग देने से अपन गुलाम पर ही थोपल कर रहल आज जेकर बोझ आज वो के पीढ़ी संभालता। महिला कैदी लोग में महिला कैद खाना में सजा काट महिला कैदखाना में सजा काटे होला महिला लोग के जीवन में दूसर मौका देवे के मकसद से एगो प्रशिक्षण प्रोग्राम चलावल गल है। 31 जुलाई से शुरू होल ई वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस आर किनवेते नामक सरकारी गैर सरकारी संगठन के मिलल जुलल पहल रहल। एकर तहत लगभग 40 को महिला कैदी लोग के हेयर ड्रेसिंग सिलाई पेस्ट्री मेकिंग आर खेती बाड़ी आदि क्षेत्र में प्रशिक्षण देवल गल है। दूसर देश के खबर में ग्रीस में जंगल के आग बुझावे के अभियान में कार्यरत दूगो हेलीकॉप्टर के बीच टक्कर होल बा एकर से दूगो क्रू सदस्य लोग की मौत की खबर बाटे। यह हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ा दूरी पेश आयल बा एगो हेलीकॉप्टर में आग लगल और दूसर के इमरजेंसी लैंडिंग करे के पड़ल। दूसर देने इसराइली ताकत लोग देने से गजा पर ही कर हालिया हमला में कम से कम 13 जना की मौत की खबर बाटे और ओकर में कई गो लैका लोग शामिल हवन जा। तय रहल भोजपुरी की समाचार तोहर ध्यान खातिर धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

मरने की खबर सुने जा। क्लेफो नंबर 3 वाकवा में 75 बरिस के श्वासन कह जो के श्री जय प्रकाश गोबिंद, श्री जय प्रकाश गोबिंद जय प्रकाश नाम से जैसे जान जात रलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 10 बज के आधा उनकर घर क्लेफो नंबर 3 वाकवा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर सुल्फियनों के श्मशान भूमि ले जा जाए। सेंट जोसेफ रोड तेरूज में 58 बरिस के सैकौचवी तौके श्री भगवान दास विदेशी, श्री भगवान दास विदेशी जे आनंद मौशाले घूम नाम से जस्सी जाल जात रलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 3 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती जयवंती विदेशी के घरे सेंट जोसेफ रोड तेरूज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बुआ मौशा के श्मशान भूमि ले जा जाए। काशीनाथ रोड पॉज दो फ्लाक में 74 बरिस के श्वसन का तो जौके श्री कृष्णालाल बाल रूप, श्री कृष्णालाल बाल रूप जे देवानंद नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर घर एक काशीनाथ रोड पॉज दो फ्लाक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर में जिनको दिमास के श्मशान भूमि ले जा जाए। पावे रोड पे चिराफे में 85 बरिस के 85 औके श्रीमती विद्वंती गोकुल, श्रीमती विद्वंती गोकुल पैदाशी नाम भोला जे विद्वंती नाम से जैसे जान जात रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 1 बजे, उनकर माटी आज दिन के 1 बजे उनकर बेटा श्री रामानंद गोकुल के घरे पावे रोड गुडलैंड पावे रोड पे चिराफे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पे चिराफे के श्मशान भूमि ले जा जाए। जयपाल रोड प्लेंदी पापाई में 63 बरिस के 63 औके श्री यशवंत कुमार सिंह, श्री यशवंत कुमार सिंह जे धीरज नाम से जैसी जान जात रहलन गुजर गए हवन उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा, उनकर माटी आज दिन के 12 बज के आधा उनकर पत्नी श्रीमती प्रीति सिंह के घरे त्रियोले से उठा जयपाल रोड प्लेंदी पापाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्रियोले के श्मशान भूमि ले जा जाए। रश रोड बोनाकय में 46 बरिस के 81 औके श्रीमती प्रेमिला मिटू, श्रीमती प्रेमिला मिटू पैदाशी नाम सुब्रन जे ऋतु नाम से जस्ते जान जात रहलन गुजर गल हवन उनकर माटी आज दिन के 2:15 बजे, उनकर माटी आज दिन के 2:15 बजे उनकर पति श्री विवेकानंद मिटू के घरे ब्रांच रोड बोनाकय से उठा के अंतिम संस्कार खातिर

0: इलावा चेकिश मशान भूमि ले जाल जाए। नंबर 35 आबेलावाल गलियों कुले में 92 बरिस के कतवें दूजों के जनाब शेख कासम महमूद अली, जनाब शेख कासम महमूद अली जे बाय कासम नाम से जैसे जान जात रहलन, उनका इंतकाल हो गल बा। उनका जनाजा आज दिन के 10 बज गया था। उनका जनाजा आज दिन के 10 बज गया था। उनका घर नंबर 35 आबेलावाल गलियों कुले से उठा के पहले नमाज जनाजा खातिर इतफाक उल मुस्लिमीन मस्जिद ले जाया जाए, फिर दफना खातिर फिनिक्स की कब्रस्तान। क्लेमेंसिया रोड बेल एरिविया सेश में 83 बरिस के 83 जों के श्रीमती कृष्णा कुमारी राम नोरिस, श्रीमती कृष्णा कुमारी राम नोरिस पैदाशी नाम हरकू जो सोना मागाजीन नाम से जस्ती जान जात रहन, गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा। उनकर माटी आज दिन के 11 बज के आधा। उनकर बेटा श्री कैलाश राम नरेश के घरे क्लेमेंसिया रोड बेले एवीएसएस से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पुरुषों के श्मशान भूमि ले जाल जाए। कॉम्बिलैन नंबर 2 औंगेता में 67 बरिस की 67 के श्री मुखराज नंदू, श्री मुखराज नंदू जयराज नाम से जैसे जान जात रहन, गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 2 बजे उनकर पत्नी श्रीमती ओतवान नंदू के घरे कौबिले नंबर 2 औंगेता से उठा के अंतिम संस्कार खातिर फिनिक्स के श्मशान भूमि ले जाल जाए। रुवांस दे पीने में 68 बरिस की 64 तौके श्री आनंद नमोल, श्री आनंद नमोल जे सनातन नाम से जैसे जान जात रहन, गुजर गल हवन। उनकर माटी आज दिन के 10 बज गया था। उनकर माटी आज दिन के 10 बज गया था। उनकर बेटा श्री राज नमोल के घरे रुवांस देपिनी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर वामोशों के श्मशान भूमि ले जा जाए। रॉयल रोड क्लूनी में 94 बरिस के कथों का तेजों के श्रीमती आचामा रामास्वामी, श्रीमती आचामा रामास्वामी पैदाशी नाम नागादू जे अमाम नाम से जैसी जान जात रहन, गुजर गल हवन। उनकर माती आज दिन के 1 बजे, उनकर माती आज दिन के 1 बजे। उनकर बेटा श्री तामलू रामास्वामी के घरे रॉयल रोड क्लिनिक से उठा के अंतिम संस्कार खातिर यूनियन पार्क के श्मशान भूमि ले जाल जाए। नेहरू रोड ग्रांड रिट्रीट में 52 बरिस के 72 के श्री विनोद मंगरू, श्री विनोद मंगरू जो जेंजेंक नाम से जैसी जान जात रहन, गुजर गल हवन। उनकर माती आज दिन के 11 बज के आधा। उनकर माती आज दिन के 11 बज के आधा। उनकर घरे नेहरू रोड गौन रोतरेत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर लावा चौके श्मशान भूमि ले जा जाए। शोक में डुबली सब परिवार लोग के संगे हमने की संवेदना है।
1: सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस।

0: सुबह के 8:29 हुए हैं दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। जी हाँ, खूबसूरत गाने आप लोगों ने एंजॉय किया है और यहाँ पर आप सबका स्वागत है। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस और सुबह का नजराना प्रोग्राम आप लोगों के नाम। इस कार्यक्रम के दूसरे भाग हम आ गए हैं और यहाँ पर उषा कौर है आप लोगों का साथ, हम निभाएंगे 9 बजे तक। और अभी के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं आपका साप्ताहिक राशिफल।
1: आपकी राशि रेडियो मिशन पर। एरीज, मेष राशि,
0: ये सप्ताह आपके लिए नए उत्साह और नई शुरुआत का संकेत लेकर आ रहा है। रुके हुए काम धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे। मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। हर दिन की शुरुआत प्रार्थना से करना लाभदायक रहेगा। लकी नंबर है 1, लकी कलर है लाल रंग।
1: टॉरस, वृषभ राशि,
0: ये सप्ताह संतुलन और समझदारी से निर्णय लेने का है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार का सहयोग हर कदम पर मिलेगा। धन से जुड़े नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। मन को शांत रखकर किया गया हर काम सफलता की ओर ले जाएगा। अपने स्वास्थ्य और भोजन पर ध्यान दें। लकी नंबर है 8, लकी कलर है सफेद रंग।
1: जेमिनी, मिथुन राशि,
0: मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। नए लोगों से मिलना भविष्य के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परिवार में खुशी का वातावरण बना रहेगा। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। आर्थिक पक्ष मजबूत होने के योग है। किसी शुभ विचार से घर का माहौल आनंदमय हो सकता है। लकी नंबर है 5, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैंसर, कर्क राशि,
0: कर्क राशि यह सप्ताह भावनाओं पर नियंत्रण रखने का संदेश देता है। हर बात को दिल पर लेने से बचें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। पुराने रुके हुए काम पूरे होने की संभावना है। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: लेओ, सिंह राशि,
0: सिंह राशि यह सप्ताह आपके साहस और नेतृत्व का की परीक्षा लेगा। अपने निर्णय पर विश्वास रखें। सम्मान और प्रशंसा प्राप्त होने के योग है। आर्थिक लाभ के नए रास्ते खुल सकते हैं। किसी अपने के साथ गलतफहमी दूर होगी। अहंकार से दूर रहना ही सफलता का मूल मंत्र रहेगा। लकी नंबर है 3, लकी कलर है सुनहरा रंग।
1: वर्गो, कन्या राशि,
0: यह सप्ताह योजना बनाकर चलने का है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। परिवार के साथ मधुर संबंध बने रहेंगे। आर्थिक पक्ष संतुलित रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार के योग है। किसी जरूरतमंद की सहायता करना बहुत शुभ रहेगा। लकी नंबर है 5, लकी कलर है हल्का पीला रंग।
1: लिब्रा, तुला राशि,
0: इस सप्ताह जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिश्ते और काम दोनों को समय दे। किसी पुराने विवाद का समाधान मिल सकता है। धन से जुड़े मामले धीरे धीरे अनुकूल होंगे। मन को प्रसन्न रखने के लिए संगीत और

0: और ध्यान का सहारा ले। लकी नंबर है 6, लकी कलर है सफेद रंग।
1: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि,
0: ये सप्ताह आत्मविश्वास और साहस से भरा रहेगा। हर कठिन परिस्थिति का सामना बुद्धिमता से रहेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का साथ हर कदम पर मिलेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें और क्रोध पर नियंत्रण रखें। लकी नंबर है 3, लकी कलर है गहरा लाल।
1: सजिटेरियस धनु राशि,
0: ये सप्ताह नए अवसर लेकर आ रहा है। किसी नए कार्य की शुरुआत के योग बन रहे हैं। यात्रा का योग भी बन सकता है। आर्थिक लाभ के साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बनेगी। लकी नंबर है 3, लकी कलर है पीला रंग।
1: कैप्रिकॉर्न मकर राशि,
0: मकर राशि वालों के लिए ये सप्ताह धैर्य और लगन का परीक्षक रहेगा। कठिन मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। आर्थिक स्थिति में स्थिरता बनी रहेगी। किसी बुजुर्ग का मार्गदर्शन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। लकी नंबर है 8, लकी कलर है नीला रंग।
1: एक्वेरियस कुंभ राशि,
0: कुंभ राशि ये सप्ताह नए विचारों और रचनात्मक सोच का है। अपनी योग्यता पर भरोसा रखें। किसी पुराने सपने को पूरा करने का अवसर मिल सकता है। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। स्वास्थ्य में सुधार और मन में उत्साह बना रहेगा। लकी नंबर है 4, लकी कलर है आसमानी रंग।
1: Pisces, मीन राशि,
0: मीन राशि यह सप्ताह शांति धैर्य और सकारात्मक सोच का संदेश देता है। भाग्य आपका साथ देगा लेकिन मेहनत से पीछे ना हटे। परिवार के साथ मधुर पल बिताने का अवसर मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग है। भगवान पर विश्वास बनाए रखें और कठिनाई का समाधान अवश्य मिलेगा। लकी नंबर है 2, लकी कलर है सफेद रंग।
1: ये थी आपकी राशि रेडियो मोशन।

जी हाँ दोस्तों, आपने सुना आपका साप्ताहिक राशिफल। बस ये सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, हम ये कामना करते हैं। हमेशा हंसते मुस्कुराते रहे। चले 90s 80s के दौर, बहुत सारे ऐसे गाने होते थे, किशोरदा, रफ़ी साहब, लता जी, कुछ ऐसे गाने जो लोकप्रिय होते थे। ऐसे ऐसे गाने हम चलाएंगे आपके लिए, बस आप उनको सुनकर दिन की शुरुआत अच्छी तरह से करें।

रहा दोस्तों इस सफर में, अब हम सफर बनकर साथ दिया, बहुत धन्यवाद। किशोरदा और आशा जी की आवाज़ों में सुनते हैं अगला गाना कालिया, फिल्म से लिया गया, और इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। जी हाँ, इस गाने के बाद हम सुन पाएंगे किरण जानकी की प्रस्तुति में हमारी धरोहर कार्यक्रम।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: नमस्ते। हमारी धरोहर में आप सब कोई के बहुत बहुत स्वागत बा। आजकल जैसे देखत हवा हमने दुनिया भर के जन बड़ा बड़ा अजूबा बा जेके सेत मेवे जुमोन सेवन वंडर्स बोलल जाला, सात अजूबा, ओकर पर ध्यान देवत है जा। गल हला पिरामिड पर ध्यान दे लीजा, एक पर और विस्तार देवब जा आगे के प्रोग्राम में। लेकिन आज देखब जा एगो ऐसन दुनिया के अजूबा जेके देखे के मन में सब कोई के इच्छा है, और वो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। आज ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के चर्चा करब जा जो दुनिया के सातवा अजूबा में गिनल जाला। 220 बीसी में खिन शी ह्वान के ज़माना में एक किला के जो फोर्टिफिकेशंस पहले से रहल उमें कुछ सेक्शंस, कुछ भाग ओकर संगे जोड़ देवल गल, और एगो यूनाइटेड डिफेंस सिस्टम कायम कर गल ताकि चीन के उत्तर से कोई नहीं सकी चढ़े। मिंग डिनास्टी तक यानी 1368 से 1644 तक यहाँ पर निर्माण कार्य कर गल, और ग्रेट वॉल दुनिया के सबसे बड़ा सैनिक ढांचा बन गल, मिलिट्री स्ट्रक्चर। एकर ऐतिहासिक

0: और स्ट्रैटेजिक महत्व एकर जोन आर्किटेक्चरल महत्व बा ओकर से पता चलेला। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना एगो विश्व विरासत स्थल है। तो चला एकर जोन विशेषता बा एकर जोन आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू बा वो देखी जा। द ग्रेट वॉल 3वीं सदी 3rd century BC से 17वीं सदी AD तक लगातार चीन के उत्तरी सरहद पर एगो बड़ा प्रतिरक्षा मिलिट्री प्रतिरक्षा परियोजना के रूप में बनावल गल। एक के बाद एक चीनी साम्राज्य द्वारा ई बड़ा दीवार 20,000 किलोमीटर से जस्ती लंबा बनावल गल। द ग्रेट वॉल हेबे प्रोविंस के शान हाइगुआन के पूर्व में शुरू होवेला और पश्चिम के गांसु प्रोविंस के जियायुगुआन में समाप्त होवेला। जे आप चीन गल हुई बा ई ग्रेट वॉल के दौरा करे त आप जनबा कि ई ग्रेट वॉल पर चढ़े खातिर एक ही गो सीमा नहीं है। जैसे अभी सुनला एगो प्रोविंस से शुरू होकर दूसर प्रोविंस में ख़त्म होवेला एकर पर चढ़े के अलग अलग सीमा बा अलग अलग जो जगह बा हुआ से सकबा एकर पर जाए। चाइना वॉल में घोड़ा के जो ट्रक बा फिर हुआ के जो टावर बा जहाँ से सकबा नज़ारा देखे और शेल्टर्स ई सब पाई बा। ई पूरा दीवार में किला और फोर्ट्रेस बा। ई खाली दीवार नहीं है। ग्रेट वॉल प्राचीन चीन में कृषि सभ्यता और नोमाड सभ्यता के बीच संबंध और आदान प्रदान के झलक दिखावेला और एकर से ई बात के भी ठोस प्रमाण मिलेला कि प्राचीन चीन में कैसे दूरदर्शी फॉरसाइटेड राजनैतिक जो स्ट्रैटेजी बा वो विचारधारा स्थापित हो रहा और कैसे शक्तिशाली सैन्य और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा के ताकत केंद्रीय साम्राज्य में रहल और ई दीवार एगो सर्वश्रेष्ठ सैनिक ढांचा टेक्नोलॉजी और कला के प्रतीक है। अपन देश और जनता की सुरक्षा खातिर ई एगो राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल सिंबल है जैसन और दूसरा नहीं बा। ग्रेट वॉल पर हमने की चर्चा काल के कार्यक्रम में जारी रही तो काल जरूर सुनिया हमारी धरोहर। धन्यवाद। नमस्ते।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।

8:57 हुए हैं दोस्तों, आपने साथ दिया बहुत धन्यवाद। चलिए इस गीत के साथ हम भरेंगे 9 बजे के संक्षिप्त समाचारों की और इसके बाद भूलिएगा नहीं आज की चर्चा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे नीतूषा के साथ। और मैं उषा आप लोगों से विदा लेती हूँ, मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक आप अपना ख्याल रखें, शुभ दिन आप सबको।

0: रेडियो मॉरिशस।
1: घड़ी मिलाते चलिए, सुबह के ठीक 9 बजे हैं। सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे अदिति नमस्कार। आपको
2: नमस्कार। नीतुषा, श्रोताओं को भी नमस्कार। मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बैठा कर उसे ले जाया गया। हालांकि कुछ समय बाद ही उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन ये घटना वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून के मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्रवाई के लिए स्टेशन चलने को कहा, हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना किसी हिंसा के और कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया। सरकारी गठबंधन में शामिल रेजिस्टेंस कौतेनाचीव ने पुलिस के इस हस्तक्षेप को पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। 8,000 यूनिट्स वाली सामाजिक आवासीय परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुकूल चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियां, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया कि समाधान के वास्ते काम हो रहा है। महिला कैदखानों में सजा काट रही महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किनवेते नामक गैर सरकारी संगठन की मिली जुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट्री मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ग्रीस में जंगलों में लगी आग बुझाने के अभियान में कार्यरत 2 हेलीकॉप्टरों के बीच टक्कर हुई। कम से कम 2 क्रू सदस्यों की मौत की खबर है। ये हादसा राजधानी एथेंस से थोड़ी दूरी पर पेश आया। हेलीकॉप्टरों के प्रोपेलर्स टकराने के बाद एक में आग लग गई, जबकि दूसरे को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। ये थी अब तक की खबरें। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। नमस्कार।
3: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सबको के नमस्ते प्रणाम। आज की चर्चा कार्यक्रम में आप सब लोगन के स्वागत बाटी। यार बतोरा दू हफ्ता आगे हमने बतिया तरली सा पेस्टिसिड, जी हाँ, जन रासायनिक पदार्थ कौन ची है, कैसे कर इस्तेमाल होला और जो पेस्टिसिड बाटे कौन ची के मुआवेला

0: कौनची के नुकसान पहुंचावेला इस सब पर हमने बथयात्रा ली जा। इमें शामिल बा जैसे एसेक्सिसिड, एबिसिड, अलग अलग प्रकार के जो कीटनाशक, घास फूस इस सब के नियंत्रण करेला न त मुआ देवेला। आज हो हमने यही पर चर्चा करब जा, माने कि पेस्टिसिड पर कैसे कर इस्तेमाल होला, एकर से जस्ती कैसे कर इस्तेमाल सही तरीका से होला, इ पर चर्चा करे खातिर हमने के मेहमान हवन एक बार फिर फागे के जो सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर हवन आप हवा श्रीमान संजय सभू जी, तोहर स्वागत बाटे, प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: चला हमने ढेर बतियाली जा भाई संजय पेस्टिसिड के बारे में कि कैसे कौन ची के मुआवेला और एकर से जुड़ल कौन ची बाटे। आज हो हमने बतियाब जा कैसे जब एकर इस्तेमाल होला, कैसे सेफली इस्तेमाल चाहेला करे के।
1: बिल्कुल, अगल हला जैसे बोले रहनी जा कि जब एगो पेस्टिसिड के प्रयोग करब जा तो पहला प्रिकॉशन लेके सावधान रह के और जहाँ जैसे बोला सा प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहने के
0: जी,
1: चाहे वो लेगा होए, बूट होए, ओवरऑल होए, एगो वीएस पा गूगल होए, मास्क होए, तो सब चाहेला जैसे ओकर एचिकेट में बोले रहनी पिक्टोग्राम रहला, डिसन रहला, ओकर अनुसार सब प्रिकॉशन लेके
0: जी। तो चला जे कुछ हो पूछे के बातें हमने के नंबर है 402-80-85। अच्छा हमने के फिरो से कहे जना सकेला तोहरा नहीं सुनने हवन, नहीं दिखले हवन, तो वो लोग के कैसे बोलबा कि ये जन पेस्टिसिड वन बातें, जन पेस्ट उस बातें, जन कीड़ा बातें, वो लोग के कैसे मुआवेला।
1: हाँ देखा जन पेस्टिसिड बातें तो कल में तो जैसे बोले इंसेक्टिसिड बा, फंगिसाइड बा, हर्बिसाइड बा, सब अपन अपन कैटेगोरी अनुसार प्रभाव करेला। एक आध गो उदाहरण दे, कैसे एगो इंसेक्टिसिड बा वो एगो पिलुआ के मोए, अब शायद तू ही या जे हमने के सुना था कभी कभार घर पे एगो स्प्रे लेके कुछ ऊपर स्प्रे कर ले जाएगो ऐसेक पर, तो दिख बा हाउ ऐसेक बा कैसे तरप तरप के बुझे होला, टूने होला,
0: छटपटाला।
1: हाँ तो हाई इंसेक्टिसिड बा जन बा कृषि में भी प्रयोग होला, तो वो हो पिलोवा के ओकर नर्वस सिस्टम के अटाके करेला, तो ओकर नर्वस सिस्टम के जब अटाके करेला तब वही डिसओरिएंटेड होला। तो ऐसा नहीं को पेस्टिसाइड सकेला कॉन्टैक्ट से काम करते हुए, तो जब ओकर ओकर लापू ओकर ओकर बॉडी पर स्प्रे लगाता तो ओके ओके भीतरे पेनिट्रेट हो जाला, तब जाके ओकर नर्वस सिस्टम के अटाके करेला। सकेला एक दूसर फासन से काम करे कैसे बोला जा इंजेक्शन, इंजेक्शन यानी कि जो पिलुआ बाटे तो वो पत्ता नहीं खाता, कैसे वो काटा पिलो
0: बागो
1: लव बाटे तो वो पत्ता खाता, तो वो पत्ता पर कैसे वो अब एगो स्प्रे हुई, जैसे कि एगो मिक्रोबोए के स्प्रे हुए जैसे कि बासिलस थ्रिनजेंजिस बा बेटे या फिर एगो केमिकल पेस्टिसाइड हुई, तो अब जाके पिलुआ पत्ता खेलक, तो जब पटवा खैलक तो कुछ हो जब पटवा पर हो पेस्टिसाइड रहल तो अब जाके अंदर ओकर शरीर में चल गल, तो जब ओके खाई तब ओके तब पितरे से ओके अफेक्ट करी तब मुआ दे। अब जैसे आप देखा था जैसा फंगिसाइड, अब फंगिसाइड अनेक प्रकार से काम करेला। एक आध गो फंगिसाइड है वो पत्ता पर आके चिपकेला ऊपरी, तो एगो बही है कहते कर देवेला, ओके बोला एगो एगो फंगिसाइड कॉन्टैक्ट करना बोला सब, तो वो जाके पत्ता पर ऐसे चिपक गलवा। अब जब ज़रा तक ओके प्रिवेंटिव कहते प्रयोग कर देला, तो अब जाके अब एगो बीमारी जोन बाटे, एगो शॉम्पियों जोन बाटे, कैसे अब हवा में ऐसे आवता या फिर पासी में बाटे ये बीमारी, तो जब हो पत्ता पर गल तो हो पत्ता पर तो जैसा एगो बहे करते बहु फोंसी दुआके, तो इस प्रकार से अब एगो फोंसी एगो शॉम्पियों हमने के लौके ला में पर वो लोग जब बढ़े लंच लोग जब पिपले हो लंच गन लोग कैंसिडेंस उगमौते हुआ, तो वो लोग के पिटी पिटी फिलामा कहते रहे जो पत्ता में ढुकल करेला, तो जब जब ये बहे हुआ चला तो वो नहीं सकी करे, तो के तब पतवा के ओके पोतेजे करी। अब एक आध गो फोंसिसिड बा जो सकी पत्ता के भीतर भीतर ढुके, तो भीतर जाके तो वहाँ भीतरे में गनला अपन काम करेलन सा। एक आध गो फोंसिसिड बा जो कि पौधा में तू सकेला पत्ता में स्प्रे कर ले हुई बा, तो वो पत्ता में से निकल के ओकर डाली में आके जड़ी तक जाए, या उल्टा जड़ी लगे से उठ के जाए भाई डाली में या फिर पत्ता में, तो अनेक प्रकार से ऐसे काम करे लंच। और ऐसे चीज में भी ऐसा ऐसा एक आध गो फौज भी है जो पत्ता के पार कर देवेला।
0: अच्छा,
1: तो पत्ता पर तो दलन तो जिस पहले पत्ता पर आज चिपक गए तभी को पिलवा के खैलक, तो एक आध गो पिलवा रहेला वो पत्ता के नीचे रहेला, जैसे कि एफिज बातें वाइट फ्लाई बातें पत्ता के नीचे रहेला। तो चाहेला एगो एगो ऐसा पोजू के प्रयोग करें या फिर ओके डायरेक्टली ओके पास फ्री कर ला या फिर पत्ता के थावे से करके नीचे कर तब के मुआ दे। अब इतना बहुल ऐसे चीज और फोजिशीद के, अब एबिसिड नगल, अब एबिसिड में भी दो प्रकार के एबिसिड बातें, एक जो कोंटाक से चलेला एक जो सिस्टेमिक है। तो जो कोंटाक से चलेला वो पतवा के जला देवेला।
0: अच्छा,
1: हम ब्रानू सब ने बोला मैं एक गो एबिसिड जब दलब तब पत्ता के जला देवेला। अब एक आध गो एबिसिड जो मैं दलब तो ऊपर जो पौधा में जो पत्ता बाते तो वो सब ओके आप ओके हिंच लेवेला
0: बीच
1: में आप सोबे कहला, तो वो सिस्टेमिक है। तो वो जाके गौछल में चली और जड़ी तक ले जाए तब गति गति गति प्रभाव करेला सकेला दो हफ्ता तीन हफ्ता ले, तब सब देखो पियरल जाता पियर हो जाता और तब मर ले जाता तब मर चला। तो ये रहा लगभग एगो कॉम्प्लेक्स अथी है, मैं हम साधारण रूप से थोड़ा आए कोशिश करें थोड़ा बोले के कि कहने अनेक अनेक प्रकार से प्रभाव करेगा।
0: तो जैसे बोले रला भाई संजय कि जो पेस्टिसाइड सब बातें ओकर इस्तेमाल जब लास्ट में जब कुछ हो नहीं होता जब काम कर दिला दिखत हुआ जो बीमारी बातें जो नैसक बातें जो कीड़ा सब बातें वो लोग नहीं मर जाते हैं तब भी ओकर इस्तेमाल होला, तब इस्तेमाल तो होला। तो अब जब फसल हो कि बखत होगल बातें फल हो सब्जी हो वो कैसे होला?
1: हाँ, तो जितना चीज़ अभी हमने बोला था ऐसा चाहे इंसेक्टिसाइड हो फंगिसाइड हो एबिसिड हो वो चाहे केमिकल हो या चाहे बियो हो सब तो जैसे आगे के जो प्रोग्राम में देख ली जा सब तो जहर है
0: जी,
1: सब जहर है। तो जहर से चलना बच के रह के तो जो पेस्टिसाइड के प्रयोग करब तो हम बोलती हमने के जो गीत एग्रीकल्चर बातें गीत एग्रीकल्चर आज जब मैं देखे तो मैं एगो चीज़ लिखल बा प्री हार्वेस्ट इंटरवल। तो ये का बोलल जला तो आजे आज एगो पेस्टिसाइड के हम प्रयोग करनी स्प्रे करनी तो कितना दिन हमके चाहेला आतान करे के तब ओकर बाद जाके फसल करे के। अब कैसे एगो ऐसे चीज के प्रयोग करनी ओकर में लिखल बा प्री हार्वेस्ट इंटरवल 7 days। तो एक अर्थात होला कि आज आज हाँ आज अदनी है तो 7 days तो हो दूसरा सोमवार जो ना हुआ था दूसरा लेंदी जो ना हुआ था तो यानी कि तब मंगलवार की हम हार्वेस्ट करब 7 days के बाद। आज जो मैं लिखल रही प्री हार्वेस्ट इंटरवल 3 days तो 3 days के बाद यानी 4th day पर तब सकब है ओकर फसल करी। तो ऐसे ही है तो ऐसे चीज के रहा फोजिसिड के भी जब प्रयोग करब तो मैं लिखल रहला कितना दिन चाहला इंतजार करे के। अब एबिसिड में तो नहीं रहला क्योंकि एबिसिड तो बनाल बा सब चीज़ के मुआ के एगो एबिसिड जब जब डाल दिला तो वो तो पौधा के मुआ खाती ना तो ओकर में हार्वेस्ट नहीं बाते वो कहीं चला प्रयोग करे के। अब कभी कभार होला कि एक्सीडेंट से अनवांटेड स्प्रेइंग जैसे कोई कहता तो तोहर पड़ोस में स्प्रे करता ले एबिसिड तो ड्रिफ्ट से तोहर खेत में सकेला चलाए अब देख तोहर जो पौधा सब हम मोड़ाल तो कहते एबिसिड लग गल बा। तो हम ऐसी स्थिति में हम बोलती हम नई नई नई फसल करेगी।
0: तो जैसे कि बोले थे वर्कर इस्तेमाल तो हुआ था अब जब जो पेस्टिसाइड हुआ बातें कब होल बातें कि इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड फंगिसाइड सब कुछ एक ही हल्ला डालल गल बातें कब होल आई?
1: इंसेक्टिसाइड फंगिसाइड हाँ जानी ला सर कोनो कोनो किसान लोग बाद जो कोकटेल करे लंच इको कमाते नहीं है मैं करी लंच नहीं लेकिन साथ साथ एबिसिड नहीं क्योंकि वो करता इसीलिए देवे नहीं बात कुछ एबिसिड आता मुआ खाते नहीं होने जाता कीड़ा के मुआ खाते नहीं होने जाता पौधा के मुआ खाते नहीं होने वाला। लेकिन ऐसे होल बा कि क्योंकि जो नाम डालल गल बा जो पदार्थ बातें फौजी बातें जो नाम डालल बातें एक आध गो नाम इतना ले मिलेला जुलेला कि नहीं बुझेला इंसेक्टिसाइड है कि एबिसिड है। और देजा हमर हमर हमर ध्यान में आवे था कि देजा होल बा कि एगो किसान के रहल डाले के ऐसे चीज डाल दे बा एबिसिड क्योंकि नाम
0: गंभीर बातें
1: हाँ नाम पागे बातें।
0: अच्छा
1: पागे नहीं लेकिन सिमिलर बात है
0: सिमिलर बात है हाँ ये खातिर चाहिए ला निमंत्रित पढ़े के

0: ऑफिशियल होला हाय खाती चाहिला निमन से पढ़े के देखे के कौन ची लिखल
1: हाँ
0: बाटे।
1: तो जन जितना पेशी बिचाला ओकर में एगो लेबल साथ में आवेला तो जैसे हम बोले कि डाइकोल 2019 तो इंसान हमने लिख लिया सब कमेंट जोन बा सब ठीक बात है लेबल पर हमने से कब बोले लेकिन चाहेला ओकरो तक निमन रह के ना क्योंकि कानून चला के आधार पर चले के तो लेबल ही पर चाहेला सब एफ माशोन रह के चाहेला लिखल रह के प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स पर 2 days 3 days 4 days में चाहना लिखल है कि कौन क्रॉप पर कौन सब्जी पर सकल है प्रयोग करे हाउ इस सब्जी पर चाहना प्रयोग करे सब चाहना निमन से लिखल है कि स्पष्ट रहे के
0: अच्छा धरला जो पेस्टिसाइड बातें जो फंगिसाइड बातें न जो ऐसे किसी कुछ डले हुआ अब बोलल गल बातें 7 दिन ले स्प्रे करा जो हार्वेस्ट टाइम की जो बातें अब हाउ अंतर्गत में हाउ अंतराल में सकब हम अपन कारों में जाए थला हम दल्ली है अभी पेस्टिसाइड सकब हम जाए अभी कोनो दूसर काम करे
1: ये निर्भर रही कौन फौजी के प्रयोग हो रहा जैसे प्री हार्वेस्ट इंटरवल बाते तो हर एगो फौजी के ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल भागे नहीं रहला एक ही तरह नहीं रहला एगो कि 2 दिन 3 दिन 7 दिन 14 दिन 21 दिन ऐसे सब रहला तो जो तू प्रश्न पूछला अब ओकर हर लेबल में और एगो एगो एगो इन्फॉर्मेशन मिलेला ओकर नाम है री एंट्री इंटरवल एकर पर ढेर कोई ध्यान नहीं करेला तो री एंट्री इंटरवल आज तुरब जा शब्द के तो इंटरवल यानी कौन अहवाल पर एंट्री प्रवेश करे के री फिर से प्रवेश करे के तो ये इन्फॉर्मेशन मिलेला कि एगो खेत में आज एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग हो गल बा तो फिर से कब सकब प्रवेश करे तो प्रवेश तो घूमे खातिर नहीं करब ना जैसे बोला एगो काम करे के बा शायद थोड़ा घास निकाले के बा शायद कुछ जाके देखे के बा कुछ करे के बा तो अब थोड़ा आज पेस्टिसाइड के लेबल में एगो इंसेक्टिसाइड के प्रयोग कर ला कुछ भी एगो पेस्टिसाइड के प्रयोग कर ला कन लोकर में लिखल बा ये डेज पर नहीं रही ये आवर्स पर रहेला तो गन्ना तो हमें लिखा ओकर में लिखा रहेला 48 hours तो 48 तो एक दिन में होला 24 घंटा 24 hours तो आज 48 hours लिखल हुए तो यानी कि 2 दिन हो गल ना तो 2 दिन तक आज है पेस्टिसाइड प्रयोग कर ले तो 2 दिन तक चला हो खेत में प्रवेश नहीं करेगी यानी कि 3वां दिन पर जब आज लिखल रही 24 hours तो स्प्रेइंग कर ला के बाद 1 दिन तोरा चाहला वो खेत में नहीं ढुके के यानी कि दूसरा दिन में ढुकब
0: ये मानी कि ये स्वयं खातिर जो प्रोटेक्शन बात है प्रिकॉशन हमने
1: हाँ,
0: अपन खातिर लेवत है
1: क्योंकि सबसे पहला प्रभावित के होई जे
0: खेती बाड़ी
1: करता जे कम करवा बात है ना इन्हें बाकी तू अब तू खेती हर हो स्प्रेइंग हो गल बात है तू कम करवा के बोला जा काम कर
0: अच्छा है जब एक चीज आवेला जब जे कोई अपन खेत में वो काम कर रहता वो पेस्टिसाइड बा डल्ले बा अब बगल में एगो दूसर कारो बा हमार वाजे बाते हमार पड़ोसी बा ओहू काम कर रहता तो जो पेस्टिसाइड हम अपन कारो में डल्ली की जैसे बोलला हवा आवेला वो सब आवेला तो हो तो उड़ेला ओकर कारो में अब ओकरो जाए के परी बोले कि देखो भैया नहीं जाइया 2-3 दिन नहीं जाइया अब वो बोला था नहीं हम तो जाब हमार कारो है तू कौन चीज करब तू देख कैसे होला
1: में आई एगो बहुत अच्छा प्रश्न पूछला ही है ये में चला जैसे बोला था बहुत वाजिनाज रहे कि ना तो और हमने रिकॉमोड के ला सा जब ऐसे ने कोई स्थिति में हो तो हर खेत के आजासन जैसे बोला सा आस पास जनवा आगे पीछे और खेत बाते तो पड़ोसी जब अपन स्प्रेइंग करता तो चाहला जना दे के कि देखा हम स्प्रेइंग कर ले है के तकला ड्रिफ्ट हो और अपन फसल फसल पर भी खाली री एंट्री नहीं फसल पर भी क्योंकि आजे देखा आजे पड़ोसी एगो स्प्रेइंग कर लेबा ड्रिफ से हमार कारों में अब हमार खेत में हाल में अब गन्ना एक उदाहरण के रूप में हम लीची के खेती कर ले हैं तो आज वो स्प्रेइंग कर लेबा ड्रिफ से लीची पर आ रहा कल आज कृषि मंत्रालय के ओकर जो अधिकारी लोगों से अयन जा सैंपल ले एनालिसिस करने से तो हर लीची में मिली अब बोलियन जा देखा तुम्हारे लीची में पोजी बातें है बात तू आए तो रिकॉमोडे है नहीं काहे प्रयोग कर ले हुआ अब तू बोल बात जिस पर हमने जल्दी डाली तो के आके आए आए कुआ कोई अंसा
0: तो इमें कानून कुछ बोले ला
1: नहीं तो कानूनन रूप में जो जेकर खेत में मिलल बा तो वो ऑटो
0: वाला वो
1: रिस्पॉन्सिबल बातें लेकिन जैसे बोला था पड़ोसी जो बा खेती हर बातें चाला जनाए के कि देखा हम स्प्रेइंग करता है तो आए कारों में खेत में

0: कल ने ढुकिया वगैरह वगैरह चलान चना के और एक चीज जब कैसे मिला सा बन प्राचिक आगे को एक आधार पर स्प्रेइंग नहीं कर लेला जब हवा हवा वो सब रहेला क्योंकि जब हवा में हुई तो ड्रिफ्ट रहेला ना तब स्प्रेइंग नहीं कर लेला
1: तो जब बोला हवा जब ढेर होला तेज होला तभी तो हमने सर्दी के मौसम में होला धर

0: साउथईस्ट ट्रेड विंड्स बोला था, लेकिन हवा एक के को जो मैंने जला ना एक की ओर ने जला, एक कुछ एक कुछ जला हवा घूम गल बा या कोनो ट्यूबियों वगैरह ऐसे ऐसे कहते हुए छोटा मोटा. अब तो स्प्रेइंग करते हो अब हवा गन्ना एक बदलाव चला तोहरी पर आके जिन जिन स्प्रे करता तोहरे पर आके लगी तो नहीं छवाते ना तो तोहरे कमे सबसे पहला तोहरे स्वास्थ्य बिगड़ी.
1: तो ये कितना किलोमीटर लिख जाला जब डाला तो वह
0: डिपेंड है जैसे जन लेबिसिड रहेला खासकर एक आदमी लेबिसिड है बहुत वोलाटाइल रहना सा तो सकेला किलोमीटर तक सकेला चल जाए. वो कारण जब कबू बुझाला गन्ना गन्ना के खेत में जब वहाँ स्प्रेइंग हुआ तब बुझाला जे कोई के घर लगे चल गल बात तो मौकेला तो कौन चौपा फैन है वह फोजुए तो वह लगे चला कहते मौका था तो हुआ ले चला बा आज अब कोनो एगो पौधा वगैरह हुई तो बुझा था पत्ता मौड़ा था तो असर कहाँ ले चल जाला.
1: अच्छा हमने आज बताया था ऐसा पेस्टिसाइड ओकर इस्तेमाल कैसे सही तरीका से होला. एगो छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक के बाद हमने वापस आई ला जा.

0: आज की चर्चा।
1: बहुत बहुत धन्यवाद हमने संगे जुड़ल हुआ आज की चर्चा कार्यक्रम में। और आज हो हमने पेस्टिसाइड ओकर सही तरीका से जो इस्तेमाल होला कैसे होला एकर पर हमने बतिया था जा। और हमने संगे हवन सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर श्रीमान संजय शंभु फागे से। तो शंभु जी, अभी हमने बात कर रहे थे जा कि कैसे चाहेला इस्तेमाल हो के जब डालत हुआ जो प्रिवा

0: हार्वेस्टिंग टाइम बाटे, हार्वेस्ट टाइम होला तो कब चाहेला कारो में जाए कि नहीं जाए कि। अब जैसे बोले हवा एकर इस्तेमाल तो होवा, तो जब होवा था हमने कैसे जो न बेस्ट बातें हमने क्या कि जैसे बोला पेस्टिसाइड उ तो मुआई क्या थे रहा, अब हमने कैसे ओकर चुनाव करी ला जा जो सबसे जस्ती टॉक्सिक बातें कैसे।
1: हाँ, तो एकर पर भी एगो भ्रम बा, एगो कन्फ्यूजन बा।
0: जी
1: ढेर कोई सोचला कि अपन जोन समस्या बाते चाहे पिलुआ के बा या बीमारी के बा, तो चला सबसे टॉक्सिक प्रोडक्ट के लेके, हाँ तक समस्या से लिपटे के बा ना, लेकिन ऐसे नहीं चलेला। नहीं, जोन सबसे लीस्ट टॉक्सिक बा वो भी अच्छा से काम करेला। तो एक में सबसे पहले चला जाने के, जैसे आगे के प्रोग्राम में बोल सर, चला जाने के समस्या कौन सी बा। अगर ना समस्या जान गए सर एगो पिलुआ बात है, तब चला जाने के कि देखा चला अच्छा तो पिलुआ बा ना, तो कौन पिलुआ हो, एगो लीफ ईटिंग कटा पिला हो, एगो एगो लव है कटा पिला हो, या फिर एगो सकिंग इंसेक्ट है जैसे कि फ्रिप्स बात है, या फिर मकड़ा है कौन सी है। तो अब जान गए नहीं सर कौन पिलुआ है, ऐसे ही बीमारी के भी जब चला जाने के कौन बीमारी है। और जब जान गए नहीं सर तब जाके हमने देखब जा कि ई पिलुआ से लिपटे खातिन कैसे करना फ्रिप्स बाते, तो ई पिलुआ से लिपटे खातिन कौन कौन ऑल्टरनेटिव बा, कौन कौन पौजी मौसे पर बाते, चाहे लीफ कटा पिला कुछ हो। तो अब करना जब छानबीन करते जा तो देखब जा कि चार पांच गो फौजी बातें जो सकल प्रयोग करेगी। तो कैसे बोल जाता जब पेस्टिसाइड के प्रयोग रहा तब पहला प्रभाव के कर पर करी जे आप कहते हैं बातें खेती हर जो आप काशों करता ओकर पर करी तो स्वास्थ्य बिगड़ी ना, तब पहुँचमाते नवयुगोन्मा वगैरह वगैरह। तो ये सब चीज़ के देख के तोरा हमेशा चाहना जो फौजी सबसे लीस्ट टॉक्सिक है। लीस्ट टॉक्सिक के मतलब नहीं है कि वो काम नहीं
0: कम असर करी,
1: हाँ वो कम असर नहीं। लीस्ट टॉक्सिक के मतलब सिर्फ ये है कि ऐसा नहीं को फौजी प्रयोग करला से पर्यावरण पर तोहर पर ह्यूमन तोहर पर कनक कमती असर रही। तो इस प्रकार से आज एगो फौजी सीमिक बात है तो ओके जाके चुनब जन जन आज सका बोले तो गल फौजी सीमिक में देखब तीन गो आपे पे तीन तीन तीन गो कैटेगोरी में गिरेला। एगो क्लास एन डब्ल्यू एच ओ क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री। तो क्लास वन जो रहेला उस सबसे जहरीला है सबसे टॉक्सिक है। ओकर जब लेबल देखब तो ओकर ओकर बोजिया जो रहेला वो लाल रंग के रहेला। क्लास टू जो रहेला वो गनला वो भी जहरीला है लेकिन वो रेड वन और सबसे टॉक्सिक से ओकर तुलना से टेंशन कमती है। तो ऑरेंज ओकर बोजिया में वो बॉन ऑरेंज रहेला। और क्लास थ्री जो बात है डब्ल्यू एच ओ क्लास थ्री जो फौजी बात है तो एगो बॉन ब्लू रहेला, एगो कुलर ब्लू रहेला टू टू टू। तो खाली ऐसे विजुअली ऐसे देखब तो तोरा जना जाए देखा ये बहुत टॉक्सिक है, मात्रा में कम टॉक्सिक या ओकर से कम टॉक्सिक। तो एक से ब्लू बैन होला सकब जा चूज करे। अब जैसे बोली जहाँ देखे कौन शुआ बात है ना, अब सकेला जो जो पेस्टिसाइड डिस्पोनी बा ओकर में बीओ पेस्टिसाइड भी सके रहे कैसे काटा पीला के सब सब बीते के प्रयोग करे।
0: बीओ पेस्टिसाइड बा ओहु टॉक्सिक बाते,
1: हाँ ओहु हाँ तो ओकर नाम में जुड़ल माना पेस्टिसाइड तो यानी कि जहर तो है ही, लेकिन तुलना करब एगो केमिकल इंसेक्टिसाइड से तो ओकर कमती टॉक्सिक बात है। लेकिन एक मतलब नहीं है कि उद्देगा नहीं करेला। ऐसे एगो एगो बीओ पेस्टिसाइड बा ओकर में ओकर माचा स्विनोसाद पर आधार है, बीओ है लेकिन इतना ले जहरीला है, ब्रोड वेला सब ब्रोड स्पेक्ट्रम है यानी इनडिस्क्रिमिनेटली ढेर चीज के मुआवेला। जैसा कि तू सकेला एगो पिलुआ के टारगेट करो तो, लेकिन उस सकेला अनेक प्रकार के पिलुआ खासकर जो बेनिफिक है कैसे कोक्सिनल बातें तितली बातें वगैरह वगैरह ओके भी मुआदे
0: तो हजा पर एगो प्रश्न आवता हमारे दिमाग में धरला हमके चाहेला एगो पेस्टिसिड हम गैली कि नहीं एगो पेस्टिसिड हम नहीं जानत है कौन लीस्ट टॉक्सिक बा कौन सबसे जस्ती टॉक्सिक बा लाल नीला कौन कुले हुई हम नहीं जानत है अब जो बेचे होला उबा ओकर दिव्य बतिया बोले के देख है कि न थो एक लिचलीते कैसे चाहेला करे के धरला उ आदमी नहीं जानता ओकर दिव्य बतिया के बोले के
1: आज

0: आज वही नहीं जाना था तो सवाल ये रही प्रेमी कैसे मिलल बेचे के नहीं आज प्रेमी मिलल हुई बेचे के तो ऑथोरिटी लोग तो देखले हुए ना कॉम्पिटेंस वगैरह वगैरह अब गनला एगो स्थिति होल एक एक जना गर्ल खरीदारी करे तो एगो किसान गर्ल खरीदारी करे तो अब सच्चे के नहीं जाना था तो अब ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ पड़ी बा रिटेल आउटलेट के तो ओकर रिस्पॉन्सिबिलिटी बा उसकी जे हो पेस्टिसाइड के सप्लाई कर लेवा पसी हो इम्पोर्टाते वा कि पीएमई मिल रहा आने के ना पीएमई कौन आधार पर मिल रहा ढेर जो कि मोहताश में दे लेवा कौन ची खातिन कौन ची मारे खातिन कौन पिलुआ के मुआ खातिन ओकर पीएमई मंगाता कैसे ओकर प्रयोग हुआ है कौन लोजमा में रही सब इम्पोर्टाते संगे बा और जब इम्पोर्टाते रिटेल आउटलेट में सप्लाई कर सब पहुँची तो ओके चाहेला जितना टेक्निकल डेटा रहेला ओकर कैसे वजन से मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट वगैरह सब चाहेला दे के हुआ पड़ी हाँ तो आज नहीं जानत हुई या भुला गल हुई तो ओके चाहेला इम्पोर्टाते के सुने करके पूछे कि या फिर हमने ऐसा फागे के सकी बोले हमने के फोन करी बोली तो हमारे लगे एगो किसान अलबा ओकर है समस्या बात है लिपटे खातिन तो कौन सी मोदी कर कब्जा बोले
1: मतलब कि जैसे बोले तो वह चाहे हर कोई के अपन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपन जुन
0: हाँ, लेकिन हम बोलती किसान के जितना खेती हरम के सुनता उन लोग के डायरेक्ट नहीं जाए के रिटेल आउटलेट में खरीदारी करे सबसे पहला फागे को ब्रांच में जाइए वहाँ पर ही अपन तुहर समस्या के तुलना हुई तब ऑफिसवा तुहरा बोली
1: अच्छा हमने बात कर रहे थे जब शंभू जब पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला हमने देखी ला जा खाली कारों में बड़का मात्रा में नहीं होला अब कई जना अपन जो बैकयार्ड गार्डनिंग करे लन जो रूफ गार्डनिंग आजकल हमने देखा थे जब काफ़ी चर्चा में बाटे तो हवो पर ही तो पेस्टिसाइड के इस्तेमाल होला सकेला होला कम होला कमती होला ढेर होला मिसमा इस्तेमाल होला तो उ लोग कैसे करे लन जा और उन लोग खातिर कौन चीज चाहेला इस्तेमाल करे कि काहे कि घर जब शिक्षकों के समस्या में हमने रहे था ऐसा तो हमने चाहेला देखे कि पड़ोसी बा है जा सके सकेला एगो अस्टेबल बाटे तो कैसे होला
0: अच्छा देखा जे भी रेजिडेंशियल में बा जोन रेजिडेंशियल में बा घर पे यानी कि घर पे बाकी में जैसे बोला आंगन में या फिर रूफ गार्डनिंग वगैरह में वो लोग की एगो समस्या बा आज ही तू सोचा तो कि तोहर समस्या खातिर छा वो पेस्टिसाइड के प्रयोग करे के तो हम तोरा बोलब खेती बाड़ी छोड़ दो काहे बोलत है आज तू अपन आंगन में तनी सुन खेती बाड़ी कर तोरा पेस्टिसाइड डाले के बाद तब तोहर आंगन में खेती बाड़ी करे के कौन लाभ बात है जा बाजार में खरीद दो आज अपन आंगन में तू खेती बाड़ी कर तोहर अपन स्वास्थ्य खातिर अपन परिवार के स्वास्थ्य खातिर तोहर परिवार के ओकर सिक्योरिटी आलिमेंटरी खातिर किसी पैसे खेती न्यूट्रिशनल खातिर तोहर लामोहताज में रह तू ऐसा एगो एक्टिविटी करता ऐसा एगो खेती बाड़ी करब जोन में रासायनिक पदार्थ के प्रयोग नहीं करब तब ना जाके जानब आखिर में कि देख जोन हम आई खेती कर लें घर पे ओकर में रासायनिक पदार्थ नहीं बा ओकर स्वाद ऐसी बात है जोन बाजार में खरीदते हैं ओकर स्वाद और दूसर कहते बात है तब ना जाके जानब तो ऐसा में हम बोलती कि जो इन लोग घर पे करते हैं जा तोहरा चाहे प्रयोग नहीं करे के एक को रासायनिक पदार्थ के
1: तो लोग कौन चीज इस्तेमाल करें
0: ढेर अनेक प्रकार के चीज़ बा जो प्रॉब्लम बा कैसे मुजदफी के प्रॉब्लम बात है लाथाप बात है लाथाप के प्रयोग चला करे के कृषि मंत्रालय के जो विभाग बात है एंटोमोलॉजी डिविजन एंटोमोलॉजी लोग लाथाप मुफ्त में देवे लंस ब्लॉक मात ब्लॉक जो बा डिवेलेंसा सोल्यूशन डिवेलेंसा वगैरह
1: वगैरह
0: हाँ फल के हाँ तो सब्जी में सब्जी के भी और सोल्यूशन से कला प्रयोग करें तो और भी मार्केट में अनेक प्रकार के जूसर कहते लाथाप बातें कैसे येलो स्टिकी थाप ब्लू स्टिकी थाप फेरोमोन बातें वगैरह वगैरह और यू से यदि काम नहीं चली तो आई नहीं भूलिया कि बायोपेस्टिसाइड भी बातें अब बायोपेस्टिसाइड जैसे बोलने का बायोपेस्टिसाइड तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम से नहीं छा मैं एक गो बायोपेस्टिसाइड बातें जो सब बचा प्रयोग करें तो ये फागे के ओर रह जा हमने सकब सा थोड़ा जस्ती खुलासा दे कर में और एक चीज़ बात है कि घर पे जब खेती बाड़ी कर बजा तो तोहरा एक को कैसे बोला सा प्रेशर ने बात तोहर पर कि जाके वो मनोकिलचिय कर बा कि कैसे तोहरे कन्या छोटा सुन टुकड़ा जमीन बात है तो पर खाली जाए
1: एक
0: चीज रुपये तो हाई ने छाला करे कि हाउ टुकड़ा जमीन पर अनेक प्रकार के चीज़ जितना

0: का तो रासक ब उतना डाल दे उतना जीवीएसटी डाल दिया देख ब इको इको ही समस्या तो नहीं हुई।
1: बहुत बहुत धन्यवाद ये सब जानकारी जो देवत हो हमने आशा करे था जा जितना जना अभी निमन से सुनत हुआ जा जो खेती बाड़ी वो सब करत हुआ जा वो लोग के ये सब बतवन दिमाग में निमन से घुसता और निमन तरीके से जो पे सी बातें कर इस्तेमाल करत हुआ जा
0: और देखला कैसे हमरे ढेर कोई आके भेंट के ला बला जी उदाहरण के रूप में देवत है आवलन से हमके भेंट करे बिलंचा हमारे लगे एगो नींबू के पेड़ बा नींबू के गौछी बा तो अकर में थोड़ा वाइट फ्लाई बा या फिर पत्ता में कड़िया कड़िया होता कुंज चला करे के कोई से पूछा हम हमेशा लोग के बोला बोला हम लोग कुछ नहीं चला करे कि तुम्हारा लगे एगो वॉशिंग मशीन नहीं स्प्रे रहे नहीं डिश नहीं जैसे बोला सा कौश तो बात है तुम्हारा लगे बोला सा हाँ हम लोग भैया हाँ हर हर महीना खाली एक कोई तो में मार दिया तो जो वाईफाई बा गिर जाए जो जो जो कड़िया रहे वो सूटी मोल वो भी निकल रहा है तब बोला सा देखा तब हाई कर तब फिर से आए तब बोला जब पेशिशा के प्रयोग कर पाता फिर से नहीं आए तो और पड़ोसी लगे हो तब समस्या बात है तो और पड़ोसी लगे से आए तो कौन चीज उलझेला खाए ला में खाली पानी डाला समस्या के समाधान हो गल तो और नींबू में पेशिश कुछ नहीं रही
1: जी
0: कौन जैसी अच्छा बात है
1: जी। तब भाई शंभू हमने के बताओ अभी बोला हुआ जैसे लुगिद एग्रीकल बातें हो जा पर बोला जला कौन सब्जी कौन फल में कौन पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड उस सब के इस्तेमाल होला तो एक अलावा कहूँ और बातें जब पेस्टिसाइड के खोज करत हुआ जाना हुआ जाने के कि एक बारे में ट्रेनिंग कुछ हो बातें कैसे
0: हाँ एक गिदायको मिल जी सब्जी के हक है फूई नहीं है जैसे फल फल खाते अलग अलग के दूसर प्रकार के पब्लिकाश हुआ तो एक अलावा गिदा हाईकोल दो मिल जीजफ के अलावा एक आगो और चीज़ का लाइक करी एक तो हमने के जो दफ्तर बा सोलह दफ्तर बा क्रॉप एक्सटेंशन के टापू में तक बजा को नोएंगो दफ्तर में जाके वहाँ पर ज़्यादा जानकारी प्राप्त करी फिर बा हमने के ट्रेनिंग हमने को ट्रेनिंग दिला सा ट्रेनिंग के नाम है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स और में जितना प्रिकॉशन लेके बा कैसे हो पेस्टिसाइड के लेबल के चलना एंटरप्रेटी करे के कहाँ कहाँ वगैरह वगैरह जानकारी मिली कैसे चलना बच्चे के वगैरह वगैरह कैसे चलना पेस्टिसाइड के तैयारी करे के सब चीज़ हो ट्रेनिंग में थोड़ा सब जानकारी मिली और फिर बा जो आई लेबल बातें पेस्टिसाइड के लेबल वो तो कानूनन दौर पर रहेला तो ओकर में भी चाहेला ये सब इन्फॉर्मेशन रहे के ताकि जे भी प्रयोग करे के बा प्रयोग करे के रही पेस्टिसाइड के तो कर में सके अनुसार देखे एगो चीज़ बोल देला और क्योंकि पेस्टिसाइड के बात करते हैं सर तो जो कानून बात है यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट 2018 के वो स्पष्ट रूप में बोलेला कि जितना कोई के भी पेस्टिसाइड के प्रयोग करे के बा वो लोग के ओब्लिगेटोरी चाहला हो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट रहे के यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के वरना कानूनन तौर पर एगो ऑफेंस करे तो
1: एको जना हवा नुंकरा सुनी ला जा हेलो
2: हेलो नमस्ते बहन जी
1: नमस्ते भाई जी
2: और भाई जी को भी नमस्ते और उनको नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद
1: बोला
2: तो मैं हूँ धनेश्वर चौहान जवेल सी तो हमार अनुभव से कुछ बॉटअप और बोले चाहते हैं
0: बोला
2: सुन रहे हो
0: हाँ बोला
2: तो मॉरिशस में जब से लेबिसिड आल तब से देश लगल प्रगति करे और मजदूर भाई लोग के काम करे के तनी फासिल होल और हैने में कानी जा शौक उपकानी सवाल ये सब के छोड़ दो तो किसान भाई के चाहेला जाने के कि ओकर लापागे कितना गालों की हो तब ओके चाहेला जाने के कि एक गालों में इतना दवाइवा कहीं डालेगी जैसे कि एक डोम में कागन से गालों तब एनलिट में मिल से तो कागन से गालों वा जिविजे का रिपोर्ट मिल से वा तो ओके एन गालों के मिली तो ओकर गा ओकर लापागे 5.5 गालों के हो तो डिसिप्लिए करी तो ओके एक लापागे के दवाइवा एग्जैक्ट डाली कि नहीं हो कि जब दवाई फिनी होगा तो गप से एक मुठा लेके में से एक मुठा डाल के बस लेगी मुआ में डाल दे रख अब तू यहाँ होशियार हो कितनों कुछ जब तुहर प्ला में आल तबरी पिलवा मरल अबरी तुहू सब मर गई रह तो हई सब और घर के आगी

0: जाने के पंगर पड़ोसी के जो पड़ोसी के वाजें लोग के ओकर घर में बच्चा जन्म ले ले बा कौन के ओके चाहिए दवाई से अभी करेगी जने हो लड़का के वाजें के कोई क्या फिक्र नहीं करी कैसे कि जौदे पॉम्प्लेमूस बा तो हुआ एगो ताबिस्मो बा हैने माउथ सुगई स्ट्रीट तो हम वहाँ पर ही सादा काम कर रही और तो हुआ पर ही जब दवाई दवाई जब डालब से ले अभी तो चाहे हमने के जाने के कौन दवाई एंड मिल डिस्टेंस बा माउथ से पॉम्प्लेमूस तो हमने के चाहे ला जाने के ओकर दवाई रहल जैसे यालिन अमिनसोल एक्ट्रिल ये सब नहीं से अभी हुई तो हुआ तेसिया डल बस आगे राउंड अप नहीं रहल बाद में आल तेसिया ये सब क्लोराक्स से डाल के जमे हुआ पर ही वो अफेक्ट नहीं करी जौदे की तो ये सब नियम है तो आदमी लोग के प्लांटे के पहला खूब सोच समझ करके अपन मेलाउंस करके और एकर में जो बातचीत करब से बहुत लंबा बा गोनोम लोग सब बा अपने धन्यवाद हमारा जो बोले कर हम बोल दे ली बहुत बहुत धन्यवाद
1: तोरा भी बहुत बहुत धन्यवाद चाचा
2: जैसे चाचा बोलत हवन बुझा था वो जाने लानी सब चीज के बारे में
1: के खेती हर लोग तो जाने लान सब लोग के एक्सपीरियंस भी बात है और अच्छा अनुभव भी बात है खाली अनुभव नहीं अच्छा अनुभव भी बात है दो गो चीज चाचा बोलन एक वो बोलन जब स्प्रेइंग कर बात अच्छा जाने के कि सावधान चलना रहे कि असुविधा नहीं हुई है जो नागरिक बात है वो चिबेबे बच्चा के बाद बोलन स्कूल भी बात है
2: बीमार आदमी
1: है सब चलना जाने के जब एगो एगो देखा हमने हमने कार्यक्रम में दे चीन से किला सर बोले मैं जब बोले सर ड्रिफ्ट तो बोले ला जब महकेला तो कैसे महकेला वो परफेक्ट है वो प्रोड्यूस हुए आवे था वो का मॉलिक्यूल
2: तो हम जब सुनबत जब महकवा हुए ला हुए से तो बीमार हो हां
1: तो क्योंकि हम जो महकत है वो मॉलिक्यूल हुए है वो का वो एगो परफेक्ट से पारे नहीं है तू यानी कि आज ले बिसिन दला बा तू महकत हुआ तो यानी कि वो ले बिसिन दुआ के तू ले हुआ तो देखला तो अब ऐसे ही तब कोई की कोई स्प्रेइंग करे के ला रहे कि पास में स्कूल बा पास में एगो घर बाते घर में बच्चा रही या बड़ा आदमी रही
2: सब कोई की सब सामने पहुंचाए
1: सब कोई असुविधा हुई तो ये सब चला देखे के और चचा बोलन एगो चीज की चला जाने के कितना कितना खेत में गंदा पानी के प्रयोग हो ओके बिला सा काली बाश हो तो यानी कि एगो प्रोजी कैसे जान ला सा साधारण रूप में बहुत है किसी जानला सा ओकर डोजाजा एनएमएल पॉलिट अब एक और चीज बात है हमने इन्हें चला डीएमएल 3ml 0.5ml डाले के पॉलिट चला एनएमएल पॉलिट डाले के तो चला ठीक से चला ना ओकर सही मात्रा में ओकर मेजर करे के नापे के तब चला प्रयोग करे के अब एगो खेत में गनला स्प्रेइंग करे के बाद ओकर में गनला 100 लीटर जाए पानी 100 लीटर जाए अब तू लेके तैयारी करवा 200 लीटर के तो नहीं अच्छा बात है ना तो 100 लीटर की कौन चीज का बता जाके फीस में स्प्रे कर तो ओवर स्प्रे हो जाए तो वो कारण चला काली भाषण करे कि थोड़ा चला जाने के कि एगो आज एगो 5 मिनट 5 मिनट काके के खेत में तो कितना पानी जाए तब हो के आधार पर तो हर एक बीघा बाया कितना बात है और आधार पर काकी लेके तो कितना पानी जाए तब ओकर तैयारी करवा अब एगो खेत में गला टमाटर बात है टमाटर छोटा पौधा बात है अब एगो जर अब खेत एक दो महीना के बाद टमाटर तो बढ़ गल अब बड़ा बा तो ओकर स्प्रेइंग पागे नहीं रही पानी के मांग जो रही पागे नहीं रही चला काली भोई करके चला जाने के कितना पानी के कितना पानी लगी ओकर अनुसार तोर तैयारी करके
2: तो कोनो डिफरेंस बातें जो क्रॉप्स बातें जो पेस्टिसाइड बियो पेस्टिसाइड न तो जो नेचुरल वंस की इस्तेमाल कर रहे थे कोनो डिफरेंस बातें
1: कौन सी पर आए
2: जो जो क्रॉप्स हम बोले थे जब ओकर में जो पेस्टिसाइड न तो बियो पेस्टिसाइड
1: तो पहला जैसे बोले जाता जब पेस्टिसाइड के जब जैसे हमने उदाहरण दे लीजा तो कौन पीलुआ बातें चला जाने के कौन बीमारी बातें चला जाने के तब सब चला चुने के ना लेकिन सब पेस्टिसाइड नहीं सक बस सब कहते सब्जी पर प्रयोग करे या पौधा पर प्रयोग करे एक आध गो पेस्टिसाइड नहीं प्रयोग ला कैसे एगो उदाहरण दे ला थोड़ा एगो फौजी बा केमिकल ओकर माची एक्टिव है थियोफैनेट मेथिल थियोफैनेट मेथिल बीमारी के खिलाफ प्रयोग होला और वो सिस्टेमिक है सिस्टेमिक यानी ऐसे जब स्प्रेइंग करबा तो जन पत्ता वगैरह बा पौधा बा ओकर में ढुक के अंदर प्रवेश करके ओकर में चलेला

0: त्याचे ना पोजू सिस्टेमिक राहिला जास्ती लेता लेवला जास्ती समय लेवला ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल जास्ती लंबा राहिला क्योंकि उ तर पौधा में प्रवेश कर दिले बा ना। अब एगो लीची लेब, एगो लीची जब सेमे कर ले हुआ प्लाटू वगैरह में तब जब ट्रांसप्लांटे करब मिनिमम 22 दिन में सकबा ओकर रिकॉल्ड कर दे। 30 दिन में चाहे ला रिकॉल्ड हो के नहीं तो ओकर बाद लीची के ओकर जन बिगड़े लगेला। तो चुफनात मिचिल के ओकर ओकर रेमानोस ओकर प्री हार्वेस्ट इंटरवल इतना लंबा है तो आज तो लीची में एगो समस्या आल गना 20 दिन के बाद अब जाके ओकर में डलब तो तोरा 25 दिन में रिकॉल्टी करे के बाद तो 20 दिन पर डलब 5 दिन डकल बा तो कैसे रिकॉल्टी करब ठीक ला। तो ये सब एगो लॉजिक भी चला हमने के सेवी करे के अतान ने करिया कि एगो इंस्टीट्यूशन तोरा बोली देखा हाई एगो प्रोड्यू सिस्टेमिक है वो खातिर रिकमेंड नहीं होता। आज हमने एगो प्रोड्यू एगो लेगिम पर नहीं रिकमेंड करता ऐसा तो हमने के तला कोई ना कोई ना एगो एगो गंभीर कारण चला रहे कि ना वो खातिर हमने को प्लेजियर मतलब प्लेजियर नहीं बोला आ चला हई डलिया हई डलिया ऐसे नहीं कहला सा ना। तो जानी ला जा आज ऐसा नहीं गो पेसिसिड के बोला जा डाले के ऐसा नहीं गो प्रोड्यू पर जन लाइफ साइकिल छोटा है तो प्रॉब्लम हुई। अब खाली हई नहीं बातें लीची के तू पकावेला नहीं ओके जैसे बोला रो प्रयोग होला खा ला कंचा सलाद के रूप में ऐसे ही अनेक प्रकार के ऐसा चीज बात कौजिमा कैसे सेलेरी बातें पेयसी बातें वो तो लाओ से तुर की डाला पकवान में तो जितना चीज रो खाए ला जा ओकर में चला हमने के ज़्यादा सावधान रह के
1: अच्छा
0: जन पकेला भी क्योंकि एक आध गो रिसर्च बतावेला आजकल कि ओकर लापो छिल्ला ओके धोइला लापो छिल्ला तब लेके पकेला तब भी 50% पेस्टिसाइड
1: रहेला। तो अभी आजकल हमने ढेर बायो प्रोडक्ट्स पर बतिया था जा तो कोनो इंसेंटिव बाटे सरकार दने से फागे दने से जमी जो खेतीहार हो जा न तो कोई भी जन खेती बाड़ी सब करे थे वन जा ये सब जो बायो प्रोडक्ट्स उस सबके फायदा उठाई अंजा।
0: हाँ फागे फागे लगे नहीं लेकिन एगो दूसर ऑर्गेनाइजेशन बाटे ओकर नाम स्मॉल फार्मर वेलफेयर फंड ओकर लगे एगो स्कीम बाटे ओकर नाम है बायो सब्सिडी बायो सब्सिडी सपोर्ट हाँ बायो बायो सब्सिडी सपोर्ट स्कीम नहीं बायो सब्सिडी प्रमोशन स्कीम माफ कीजिए और नाम ठीक से याद नहीं आता लेकिन बायो सब्सिडी पर एगो स्कीम बाटे जहाँ पर तू सकबा बायो पदार्थ जो बाटे बियो पोजी बियो बा ओकर खरीदारी करे और ओकर पर तोरा एगो सब्सिडी मिलेला। आगे जोन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहल तो ई स्कीम से लाभ उठाए खातिर तोरा चाह या एगो बायो फार्मर रह के या तो फिर इडोपोनिक रह के या तो फिर मोहिगाप के कोई सर्टिफिकेशन रह के हाई तीन गो चीज खाली क्राइटेरिया। लेकिन हमने देखा था जा कि कैसे सरकार जो ना हुआ था अभी जो बजट में बा थोड़ा बोला था सेफ फूड प्रोडक्शन तो यानी कि हमने के मन बा कि जो जो सब्जी आवा था मंडी में चला सेफ रह के तो एगो चीज कैसी सकेला हुई जो एगो तो सब बायो ही करे पोजी नेचुरल जैसे बोला सा नेचुरल फार्मिंग लेकिन एगो दूसर प्रकार से आज सकब जा केमिकल पे सिसाज के नए प्रयोग करे तो जैसे अच्छा रहत तो ओके ओकर ओकर पर ई अमल पर रखते हुए तो हाल ही में एगो एगो बैठक रहल जहाँ पर हम ही रही तो एगो प्रोपोजिशन कर जा कि जो है बायो सब्सिडी जो स्कीम बाते तो ओके थोड़ा खोल दे के उ खेती हर खातिन जो फागे लगे आके एगो ट्रेनिंग स्वीप कर लेबा यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स पर और ओकर सर्टिफिका बाते कहे कि ये सब खेती है जो ये ट्रेनिंग स्वीप कर देवा यू सब पेस्टिसाइड्स पर तो लोग अभी जस्ती अवेयर होता जैसे कॉन्शियस होता जैसे सेंसिटाइज होता कि पेस्टिसाइड के कैसे हानिकारक है कैसे चला प्रिकॉशन लेके वगैरह वगैरह तो ये लोग भी जेकर सर्टिफिका बाते तो आज ये खुल जाए तब हमने बताए हो गल बातें एक प्रोपोजिशन कर लें सर तो आज ये प्रोपोजिशन आज रिटेनियर होल स्मॉल फार्मर वेलफेयर फंड के बोर्ड से तो जितना हमने के खेती हर बार यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स के को स्वीप कर लेबा या फिर को स्वीप करी बाद में तो ई स्कीम सकी ओकर इस स्कीम द्वारा वो भी सकी लाभ उठाए और अनेक प्रकार के जो फौजी

0: बातें बियो या फिर जो लथा बातें ओकर में भी आए शिपसी जो के मिले
1: तो अभी हमने के कार्यक्रम के अंतलेख हमने पहुंच गए ले सर तब मोरिस में अभी जो पेसिसिट के जो स्टेटस बा वो कैसे बा और उस सकबा बोले कि कुनो तेस उस सब हुआ था कौन रिजल्ट मिला था
0: हाँ टेस्ट होला हमने ने करेला जा फागे ने करेला एगो एगो डिपार्टमेंट बाते कृषि मंत्रालय के नीचे ओकर नाम है पेस्टिसाइड रेगुलेटरी ऑथोरिटी Pesticide Regulatory Office. Ta ou Agricultural Services ke ni chegi de la Krishi Mantralay me. Ta ilok ke ofishe John Hawanda ou lok jalan cha kheti har lage ya fir mandi me ya fir supermarché me jahan par ye sabzi bechata wagaira phal bechata ya fir John airport te hota okar ou bhi échantillon le lanta ta ekar échantillon leke tab jala food tech lab jo Krishi Mantralay ke niche bhi hai ता फूड टेक लैब में जाके ये एनालिसिस हुआ ला ता हर महीना ये चलते जाला अब जैसे रिजल्ट के बोला तक गल साल के जो 2025 के रहा तो कर रिजल्ट पे बिली होलबा ता जो नाम के याद बा बोलाते हैं लगभग 5% जो रहल 5-6% रिजल्ट में लोकल बा कि जो लिमिट है रेजिड्यू के ओके डिपासे कर दे लेबा और लगभग 15% में लोकल बा कि जो पेस्टिसाइड के रेजिड्यू लोकल था वो पेस्टिसाइड रिकमेंडे ही नहीं रहा ता समस्या ता बातें ना ता लगभग ता लोकल था लगभग 20-21% जो बातें एक में ता प्रॉब्लम बातें ता एक पर काम होता खेती हर लोग के कॉन्टैक्ट के ला जा Pesticides Regulatory Office contacté que là, a mieux bien contacté que là, le que samcha là, qui John prayog kar le hua unhe chabate ta hamne ke baar baar kisan log ek chiz bola ta John pojwa prayog kar le uta market mein baate ta hayu ek problem baate market mein dheere san pojwa wo market mein sakela hoi me us sabzi par ko modi ne baate तो एक पर भी अमल करेंगे
1: तो चाहेला निमन से सोच समझ के अमल करेंगे जैसे बोला था वो हमने के कार्यक्रम अभी समाप्त हुआ था जाए से आगे कौन ची बोलब और एगो अंतिम प्रश्न तोहर से पूछब काहे कि तू एगो प्रोफेशनल हवा एक क्षेत्र में तो आगे सकेला 5-20 ले हमने के जो मोरिस बातें वो सकेला हो एगो पेस्टिसाइड फ्री कंट्री
0: जहाँ बोलोते रहेला जहाँ कैसे बोला था
1: well, there's a will, there's a way.
0: There's a will, there's a way. हाँ, आजे हमने के मन बा इमारत पर चले गए तो सकब जा। और एक यही दृष्टि में है दो को चीज़ होलबा है अभी बीजे में एक वो ता बीजे में देख बा एक वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है 25x35 ता वो फ्लैगशिप प्रोग्राम में देख बा एक वो विजन बाते कि जो 10 साल आवे ता अभी 2035 ले ता हमने के चाहेला ऐसा नहीं को कृषि अपनाए के जो फॉरेन एग्रीकल्चरल इनपुट के कम मात्रा या नए प्रयोग हुई तो जब बोला सा फॉरेन एग्रीकल्चरल इनपुट कम मात्रा या नए प्रयोग हुई तब उकुन चीज और कम पेशी भी बातें तो एक अर्थात ये भी बातें कि हाई 10 साल जो आवे था हमने के चला ऐसा ऐसा सिस्टम प्रोडक्शन अपनाए के जो जैसे रेजिलियंट होने से जो नेचुरल फार्मिंग की ओर जाता एग्रो इकोलॉजी और नेचुरल फार्मिंग की ओर जाता तो ये एक संकेत बातें और फिर जो फाइनेंस बिल जो प्रोपोजिशन हल पास ओके ट्रावेसी कराए के पॉलमो में तो ओकर में देखबा पहला हला मॉरिशस में एक अच्छा चीज बा फूड सिक्योरिटी पर एक डेफिनेशन अनले हो जा जोन में फागे ही होकर पर दस्ती रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला था काम करे के और जोन चीज इंटरेस्टिंग बात है वो फूड सिक्योरिटी में अब एक सब होकर में आलबा सेफ फूड यानी कि अब सरकार बोलता देखा फूड सिक्योरिटी खाली इन्हें है कि चला जा पोजिया करे ताकि मंडी में हमने के नागरिक लोग के सब्जी वगैरह मिली नहीं जोन सब्जी मिला था ओके चला सेफ भी रहेगी हमारे देखे में एगो बहुत बड़ा संकेत सरकार देवता कि आप चाला सेफ फूड पर भी अमल करेंगे और चाला इस दिशा में चलेंगे।
1: तो चलो बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान संजय शंभू जी, आप हवा सीनियर एक्सटेंशन ऑफिसर फागेदानी से। तो एगो शब्द है जहाँ पर ढेर चीज बोली जा जहाँ चाह बा हो जा पर रह बा, सेफ फूड फूड सिक्योरिटी जे निमन से रुपाई कर बा, निमन से जुन जुन चीज भोजवी इस्तेमाल करत हो वह बियो पेस्टिसिड हो पेस्टिसिड हो, तो स्वस्थ रही अपन देश के स्वस्थ हमने सब बना जा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आज

और कार्डिनल जॉन मोजियो संस्थान के साथ मिलकर बोबा सैमिक संगोष्ठी आयोजित कर रहा है। ये सिंपोशन गुलामी की याद और भावी पीढ़ियों पर इसके असर को समर्पित है। स्नातक, कानूनी विशेषज्ञ, धार्मिक प्रतिनिधि और सिविल सोसाइटी के सदस्य गुलाम बनाए गए लोगों और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए क्षतिपूर्ति और सम्मान के तरीकों पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं। मुआवजे पर बहसों से परे गुलामी के कुछ ऐसे दर्दनाक अवशेषों पर ध्यान दिया जा रहा है जो आज भी समाज में दिखाई देते हैं, खासकर कुछ शर्मनाक नामों या उपनामों के जरिए जो कभी मालिकों द्वारा अपने गुलामों पर थोपे गए थे और जिनका बोझ पीढ़ियों से कुछ लोग ढोते आ रहे हैं। महिला कैदखानों में सजा काट रहे महिलाओं को जीवन में दूसरा मौका देने के मकसद से एक प्रशिक्षण प्रोग्राम चलाया गया। 31 जुलाई से शुरू हुआ ये वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम MITD प्रिजन सर्विस और किनुए तेनामगर सरकारी संगठन की मिलीजुली पहल रही। इसके तहत लगभग 40 महिला कैदियों को हेयर ड्रेसिंग, सिलाई, पेस्ट मेकिंग और खेतीबाड़ी आदि क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। 8,000 यूनिट्स वाले सामाजिक आवास परियोजना में शामिल 35 स्थलों में से 14 का काम पूरा हो चुका है, जबकि 3 अन्य परियोजनाएं निर्धारित समय के अनुकूल चल रही हैं। हालांकि कुछ कारणों से लाभार्थियों को नए मकानों की चाबियां सौंपने में देरी हो रही है। भूमि और आवास मंत्री शकील मोहम्मद के अनुसार कॉन्ट्रैक्टरों की तरफ से कुछ खामियों, बिजली पानी के कनेक्शन में देरी और इन स्थलों पर तोड़फोड़ की घटनाओं जैसी समस्याओं के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया है कि समाधान के वास्ते काम किया जा रहा है। नए कॉन्ट्रैक्टरों को काम सौंपा गया है और संबद्ध स्थलों पर सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के कई अन्य साथी देशों से मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शुभ समाचार। जम्बो रोड शमैघोनी में 79 साल के 79 years old श्री आदि नारायण यूसरी जो गुरु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे

श्री प्रवीण यूसरे के मकान जम्बो रोड शमैकोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगो पर शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।

0: शबरी बाप्पा
1: भोया,
0: मंगल मूर्ति
1: भोया,
0: गणपति बाप्पा
1: भोया,
0: मंगल मूर्ति
1: भोया, गणपति बाप्पा भोया, अगले बरस तू जल्दीया, गणपति बाप्पा भोया, अगले बरस तू जल्दीया, गणपति बाप्पा भोया, अगले बरस तू जल्दीया, गणपति बाप्पा भोया, अगले बरस तू जल्दीया।
2: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
3: श्रावण मास के संदर्भ में आइए सुनिए ये विशेष कार्यक्रम।
4: हरि ओम तत्सत् लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं त्वं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचंद्राय नमः, श्रीरामदूताय नमः, श्रीगुरुचरणकमलिभ्यो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिनो याभ्यां वीणा न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तःस्थमीश्वरं भगवते श्री सांब सदा शिवाय नमः। ओम नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। हिंदू महासभा की ओर से आज मंडे 4 अगस्त को प्रसारित इस विशेष ज्ञान चक्र कार्यक्रम में मैं बाबा जी गिरीश शर्मा आप सभी श्रोताओं का सादर अभिवादन करता हूँ। आज श्रावण मास का प्रथम सोमवार है। भगवान शिव की आराधना के लिए यह अत्यंत पावन और मंगलमय दिन माना जाता है। श्रोताओं, गत सप्ताह हमने श्रावण मास की महिमा, उसके व्रत विधान तथा भगवान शिव की आराधना के महत्व पर चर्चा की थी। हमने यह भी बताया था कि जो भक्त संपूर्ण श्रावण मास का व्रत करने में समर्थ नहीं है, वह श्रद्धा और विश्वास के साथ केवल श्रावण सोमवार का व्रत भी कर सकते हैं। समय के साथ एक ऐसी धारणा प्रचलित हो गई कि मानो श्रावण मास में केवल सोमवार का ही व्रत करना चाहिए। वास्तव में ऐसा नहीं है। श्रावण मास केवल सोमवार के व्रत तक सीमित नहीं है, बल्कि इसी मास से 4 महीने तक चलने वाले पवित्र चतुर्मास का आरंभ होता है। यद्यपि गृहस्थ जीवन की व्यवस्थाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति पूरे चतुर्मास या पूरे श्रावण मास का व्रत नहीं कर पाता, तभी शास्त्रों ने उसकी सुविधा के लिए श्रावण के प्रत्येक सोमवार के व्रत का विशेष विधान बताया है। शिवपुराण में वर्णन है कि जो भक्ति श्रद्धा और के शुद्ध आचरण के साथ निष्काम भाव से श्रावण मास के सोमवारों का व्रत करता है, भगवान शिव उसकी उचित एवं धर्मसम्मत मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करते हैं। यही कारण कि श्रावण मास का व्रत जो है अत्यंत फलदायी माना जाता है। जो भक्त 16 सोमवार व्रत का संकल्प लेना चाहते हैं, उनके लिए भी श्रावण मास का प्रथम सोमवार व्रत आरंभ करने का सर्वोत्तम अवसर माना गया है। श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा बेलपत्र, गंगा जल, दूध, शुद्ध जल, अक्षत, चंदन, धतूरा, आंख के पुष्प तथा अन्य पूजन सामग्री से करने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को श्रद्धापूर्वक अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी महान पुण्य प्रदान करता है। पूजा का वास्तविक आधार बाहरी वैभव नहीं है, बल्कि निर्मल मन, निष्पक्ष श्रद्धा और सच्ची भक्ति है। आज के मानस विचार बालकांड दोहा संख्या 70 का एक चौपाई आपके सामने रख रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं, वरदायक प्रणतारति भंजन, कृपा सिंधु सेवक मनोरंजन, इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, लहिय न कोति जोग जप साधे। तुलसीदास जी कहते हैं, शिव जी वर देने वाले

0: वाले शरणागतों के दुख को नाश करने वाले कृपा के समुद्र सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना अत्यंत फलदायक है और ऐसे ही हम भगवान शिव की आराधना करें। चलिए आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम दें। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति, ओम श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु। साधुवाद, जय श्री हरि।
1: श्रावण मास के संदर्भ में अभी आप सुन रहे थे ये विशेष कार्यक्रम।

कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर। मानस मंथन प्रस्तुत कर रही है डॉक्टर वीनू अरुण।

रामायण सेंटर की ओर से प्रस्तुत मानस मंथन कार्यक्रम में मैं वीनू अरुण आप सबका सादर वंदन और अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, हम रामचरित मानस के बाल कांड के दोहा 257 यानी 257 दोहे के नीचे की चौपाइयों को आपकी सेवा में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रसंग आपको याद होगा कि श्री राम को गुरु विश्वामित्र ने धनुष उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश दिया और श्री राम गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए उस मंच की ओर बढ़ते हैं जहां धनुष रखा है। लेकिन श्री राम को धनुष की ओर जाते हुए देखकर सीता जी की माँ सुनैना अधीर हो उठी। बड़े बड़े पराक्रमी वीर सुडौल अंगों वाले राजा भी जब धनुष नहीं उठा पाए तो भला किशोरावस्था के ये कोमलांग श्री राम उस धनुष का स्पर्श भी कैसे कर पाएंगे। यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी और उनकी चिंता को उनकी सखी ये समझा कर दूर करती है कि संसार में अनेक ऐसे महान और कठिन कार्य हैं जो हैं तो बहुत कठिन लेकिन देखने में छोटे और दुर्बल जान पड़ने वाले लोग उसे बड़ी ही आसानी से संपन्न कर देते हैं। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, श्री राम देखने में छोटे हैं लेकिन उनकी करनी महान है। और सीता जी के भी मन को यही चिंता सता रही है, इसलिए वे सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करती हैं कि किसी तरह ये धनुष हल्का हो जाए और श्री राम उसे सरलता पूर्वक उठा लें। अब आइए हम आज की चौपाइयों में प्रवेश करें, यानी दोहा 257 के नीचे की चौपाइयों पर थोड़ा विचार विमर्श करें। तुलसीदास जी लिखते हैं, नीके निरखि नयन भरि शोभा पितुपन सुमिरि बहुरि मन छोभा अहह तात दारुणि हट ठानी समुझत नहीं कछु लाभ नहानी। सीता जी के मन की चिंता

व्यथा, उनकी व्यथा को बहुत सुंदर ढंग से तुलसीदास जी यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं। पहली बात तो जब सीता जी ने देखा कि श्री राम धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं, तो उनके मन में यही भावना पैदा हुई जो उनकी माँ के मन में थी कि कैसे उठा पाएंगे श्री राम, क्यों गुरु ने

राजा जनक भी कुछ नहीं कह रहे हैं, वे भी चुपचाप देख रहे हैं। क्या इन लोगों को विश्वास है कि राम उठा लेंगे धनुष? लेकिन सीता जी सचमुच आशंकित हैं, क्योंकि उनके जीवन का प्रश्न है। इस धनुष के उठाने पर और प्रत्यंचा चढ़ाने पर ही सीता जी के जीवन का पूरा दारोमदार है, उनका भविष्य उसी पे टिका है, उनके पूरे जीवन का निर्णय उसी पर आधारित है। इसलिए उनके मन में दुश्चिंता का होना, भय का होना, तरह तरह के नकारात्मक विचारों का होना अत्यंत स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले वे देवी देवताओं की वंदना करती हैं। हम जब भी कष्ट में पड़ते हैं तो हमें पहले कभी हमने भगवान को याद किया हो या नहीं किया हो, लेकिन जब हमारे ऊपर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आती है या हमारा कोई बहुत बड़ा काम रुका होता है तो हम बड़े सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, उनके चरणों में अपना माथा टेकते हैं और उनसे यही अनुरोध करते हैं कि हमारी जो भी मुसीबत है वो टल जाए। और यही सीता जी भी कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवान शिव और पार्वती जी की वंदना की, गणेश जी की वंदना की, और तुलसीदास जी कहते हैं कि सभी देवताओं की उन्होंने वंदना की। सबसे यही प्रार्थना की कि जो मेरे मन की चिंता है उसे दूर कर दो, किसी तरह इस धनुष को आप हल्का कर दीजिए, धनुष का भारीपन आप कम कर दीजिए। और अब राम जी को देखकर सीता जी की आंखों में आंसू भर गए हैं, उनका शरीर रोमांचित हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अगले पल क्या होने वाला है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि नीके निरख नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिरी बहुरी मन छोभा, आह तात दारुणी हटठानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो उठा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हट ठान लिया है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सीता जी क्या करती हैं, एक बार तो श्री राम जी को देखती हैं और मन ही मन यही कामना करती हैं कि बस इन्हीं से मेरा विवाह हो, क्योंकि श्री राम की शोभा अतुलनीय है। और सीता जी एक बार उनका दर्शन पुष्प वाटिका में कर चुकी हैं, तभी से उन्होंने अपने हृदय मंदिर में श्री राम को प्रतिष्ठित कर रखा है। और आज भी उन्हें देखकर वही भाव उनके मन में आ रहा है कि किसी तरह से श्री राम ये धनुष उठा लें। इसीलिए वे धनुष से भी एक तरह से प्रार्थना करती हैं कि तुम हल्के हो जाओ, तुम्हारा ये भारीपन कम हो जाए, ताकि श्री राम उसे आसानी से उठा सकें। लेकिन जब एक ओर श्री राम की शोभा है, अवर्णनीय शोभा, अतुलित शोभा, जिसे देख करके एक ही इच्छा सीता जी के मन में हो रही है कि बस मेरा विवाह इनसे हो जाए, लेकिन दूसरी ओर तुरंत उनके मन में ये भी विचार आ रहा है कि पिताजी ने बड़ा कठिन प्रण कर रखा है, क्या यह प्रण पूरा हो पाएगा? क्यों पिताजी ने इतना कठिन प्रण रखा? क्यों उन्हें नहीं पता चला कि ये शिव जी का धनुष असामान्य धनुष है, अलौकिक धनुष है, इसे कोई भी नहीं उठा सकता, फिर भी पिताजी ने इतना कठिन प्रण रख लिया, और अब यदि कोई इसे नहीं उठा पाया तो मेरा विवाह नहीं होगा, और अब बचा ही कौन है? श्री राम। और मैं तो यही चाहती थी, जब एक एक राजा आते थे तो सीता जी मन ही मन यही प्रार्थना करती थी कि इनमें से कोई भी राजा इस धनुष का स्पर्श भी ना कर पाए, ताकि श्री राम आए और वे उनकी मनोकामना पूरी कर सकें। इसलिए वे अपने मन ही मन कह रही हैं कि पिताजी ने बड़ा कठिन हट ठान लिया है, लगता है लाभ हानि का कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं, अब से भी वे अपना प्रण तोड़ सकते हैं, लेकिन वे तो मानो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, उनके मन में क्या भाव है, मैं कैसे बताऊं, क्या होगा मेरे जीवन का। तो इस तरह के विचारों से
सीता जी का मन आक्रांत हो रहा है, हृदय द्रवित हो रहा है, उन्हें समझ में नहीं

रहा है कि उनके जीवन का क्या निश्चित होने वाला है। सचिव सभय सिख दे न कोई, बुद्ध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुलि सहुचा ही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। सीता जी के मन में जो विचार मंथन चल रहा है उसका तुलसीदास जी बहुत ही सजीव वर्णन कर रहे हैं। क्या चल रहा है सीता जी के मन में कि मंत्री डर रहे हैं इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल किशोर श्याम सुंदर श्री राम। क्या मतलब मंत्री डर रहे हैं? यानी सीता जी के मन में ये विचार आ रहा है कि मेरे पिता जनक तो अपने प्रण पर अडिग हैं, उन्हें कोई समझाने वाला क्यों नहीं है? क्यों नहीं कोई उन्हें बताता कि सारे राजा पराजित हो चुके हैं, सारे राजा असफल हो चुके हैं और अब आप केवल इन श्री राम के ऊपर अपने प्रण के पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं? जब इतने बड़े बड़े राजा नहीं उठा पाए तो ये किशोर अवस्था का बालक कैसे उठा पाएगा? तो सीता जी को लगता है क्या कोई भी मेरा हित चाहने वाला नहीं है, कोई भी शुभचिंतक नहीं है? मंत्री क्यों होते हैं? मंत्री इसीलिए होते हैं कि राजा को उचित और अनुचित का परामर्श दें। लेकिन लगता है कि मंत्री डर रहे हैं इसलिए राजा से अपने मन की बात नहीं कह पा रहे हैं। मंत्रियों को अवश्य लग रहा होगा कि राजा जनक की प्रतिज्ञा पूरी होने वाली नहीं है, उन्हें समझाना चाहिए, लेकिन हो सकता है राजा के भय के कारण मंत्री अपने मन की बात उनसे कह ना पा रहे हों। फिर दूसरी बात वे कहती हैं कि पंडितों की सभा में ये बड़ा अनुचित हो रहा है। चलो ठीक है, मंत्री तो डर रहे हैं, वो अपने मन की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एक से एक विद्वान उपस्थित हैं, बड़े बड़े पंडित यानी बड़े बड़े ज्ञानी, ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान सब एकत्रित हैं। वे भी सब मौन हैं, वे भी चुप हैं। उन्हें ये नहीं लग रहा है कि ये बड़ा अनुचित कार्य हो रहा है? उन्हें तो जाके राजा को समझाना चाहिए, क्योंकि जो ज्ञानी है, जो विद्वान है, जो ऋषि मुनि है, उन्हें तो राजा से कोई भय नहीं है, वे तो अपने मन की बात जाके कह सकते हैं। लेकिन सब चुप बैठे हैं, सब मानो सीता जी को लगता है सब तमाशा देख रहे हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि राजा का प्रण पूरा होने वाला नहीं है इसलिए राजा को जाकर समझाया जाए, राजा को कहा जाए कि श्री राम को जो गुरु ने कहा है धनुष उठाने को वो पूरा होने वाला नहीं है इसलिए उनको लौटा दो। तो तरह तरह के विचार सीता जी के मन में उठ रहे हैं। फिर वे सोचती हैं कह धनु कुलि सहुचाही कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। क्यों ये भाव आ रहे हैं सीता जी के मन में? तो इस चौपाई में तुलसीदास जी उसे स्पष्ट कर रहे हैं कि सीता जी सोच रही हैं कहाँ वज्र से भी बढ़कर कठोर ये धनुष, यानी एक और ये धनुष है जो इतना कठोर है, वज्र यानी एक तरह से पत्थर पर्वत से भी ज़्यादा कठोर यह धनुष, क्या कोई पर्वत को उठा सकता है? नहीं, उसी प्रकार इस धनुष को कौन उठा सकता है, इतना कठोर है ये धनुष। और दूसरी ओर ये कोमल किशोर श्री राम, कितना बड़ा विरोधाभास है, एक ओर कोमल शरीर वाले श्री राम और दूसरी ओर वज्र से भी अधिक कठोर भारी ये धनुष। विधि के ही भांति धरौं उर धीरा, सिरस सुमन कन बेधिय हीरा, सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। सीता जी कहती हैं कि हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीर धरूं, सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जाता है? सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। सीता जी के मन में जो विचार उमड़ रहे हैं, जो भाव आ रहे हैं,

उनका बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। सीता जी के मन में ये आ रहा है कि क्या शिरीष के फूल के केसर से हीरे को छेदा जा सकता है। शिरीष का फूल बहुत ही मुलायम होता है, बहुत ही हल्का होता है, रेशमी जैसे रेशम है उतना मुलायम ये शिरीष का फूल होता है, और इसमें सामान्य फूलों की तरह मोटी पंखुड़ियां नहीं होती, बल्कि इसका सौंदर्य इसके असंख्य महीन रेशों में होता है। उसमें छोटे छोटे रेशे होते हैं और वो इतने मुलायम होते हैं कि मान लो उन्हें छुओ तो वो उड़ जाएं। फूल को छूने पर ऐसा लगता है जैसे रेशम या रुई का कोई छोटा सा फाहा हो, हल्की सी हवा चलने से भी ये शिरीष का फूल डोलने लगता है। इसलिए भारतीय काव्य परंपरा में जब किसी चीज़ की तुलना सुकुमारिता से करनी हो यानी कोमलता से करनी हो तो कवि लोग शिरीष के फूल का उदाहरण देते हैं। संस्कृत के और हिंदी के अनेक कवियों और विशेष रूप से कालिदास ने शिरीष पुष्प का प्रयोग कोमलता लावण्य और सुकुमार अंगों के उपमान के रूप में किया है। इसलिए तुलसीदास जी ने श्री राम के अंगों की तुलना शिरीष के पुष्प से की है। और यहाँ केवल फूल नहीं बल्कि जो शिरीष का महीन केसर है उसकी ओर सीता जी का संकेत है कि उन केमल कोमल रेशों से क्या हीरे को छेदा जा सकता है, नहीं ये असंभव बात है। तो जैसे शिरीष का फूल बहुत कोमल होता है उससे हीरे जैसे, हीरा आप जानते हैं पत्थर की तरह होता है, पत्थर को छेदने के लिए आपको कोई मजबूत इंस्ट्रूमेंट चाहिए और आप चले हैं शिरीष के फूल से उसे बेंधने उसे तोड़ने, तो ये तो असंभव है। तो क्या मतलब है इसका कि राम जी का जो शरीर है वो शिरीष के पुष्प के समान कोमल है और ये धनुष ये है हीरे के समान। तो जैसे हीरे को शिरीष के पुष्प से बेंधा नहीं जा सकता उसी प्रकार इस भारी भरकम और कठिन धनुष को भला श्री राम कैसे उठा पाएंगे। यहां तुलसीदास जी ने श्री राम की वास्तविक शक्ति का नहीं बल्कि सीता जी की दृष्टि से उत्पन्न मानवीय चिंता का चित्रण किया है। सीता जी उस समय श्री राम के सर्वशक्तिमान ईश्वर का जो रूप है उसे नहीं देख रही हैं बल्कि अपने प्रिय अति सुकुमार राजकुमार के रूप में देख रही हैं। इसीलिए ये जो उपमा तुलसीदास जी ने दी है ये बहुत ही मार्मिक बन गई है। तो सीता जी को यही लगता है कि ये असंभव कार्य राम जी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि राम जी बहुत ही कोमल हैं और धनुष बहुत ही भारी है। फिर कह रही हैं कि सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है, यानी मानो सबकी बुद्धि खत्म हो गई है, किसी की बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसीलिए सब चुपचाप बैठे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई विरोध नहीं कर रहा है विश्वामित्र जी का, और सब चुपचाप मानो तमाशा देख रहे हैं, सबकी बुद्धि पर मानो पत्थर पड़ गया हो, ऐसा सीता जी को लगता है। इसलिए अब वे प्रार्थना कर रही हैं शिव जी के धनुष से, कह रही हैं हे शिव जी के धनुष, अब मेरा एकमात्र आश्रय आप ही हो, मुझे केवल आपका सहारा है, बाकी और किसको कहूँ, पिता चुप हैं, गुरु विश्वामित्र ने आज्ञा दे दी है, सभी विद्वान ऋषि मुनि मंत्री सब चुपचाप बैठे हुए हैं, मैं किसको पुकारूं, किससे अपनी प्रार्थना करूं, अपने हृदय की भावनाओं को किसके सामने अभिव्यक्त करूं। इसलिए हे धनुष केवल अब तो आप ही मेरे सहारे हैं, मैं आप ही से प्रार्थना कर रही हूँ। क्या प्रार्थना कर रही हैं सीता जी? कि निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरु रघुपति ही निहारी, अति परिताप

सी मन माही लव निमेश जुग सय सम जाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेश का एक लव भी 100 युगों के समान बीत रहा है। बहुत ही सुंदर चौपाइयां हैं, आइए जरा इस पर विचार करें। सीता जी धनुष से प्रार्थना कर रही हैं क्योंकि अब उनको लगता है मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, अब धनुष को उठाना है, तो मैं धनुष से ही प्रार्थना करूं। तो क्या कहती हैं कि तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ, यानी तुम हल्के हो जाओ, राम जी तो भारी नहीं हो सकते, इसलिए तुम रघुनाथ जी जैसे हो जाओ, यानी तुम इतने हल्के हो जाओ कि राम जी तुम्हें उठा लें। सीता जी यहाँ निर्जीव शिव धनुष से प्रार्थना कर रही हैं, ये समझ के मानो धनुष कोई मानव हो, कोई इंसान हो, जैसे इंसान से प्रार्थना की जाती है। और काव्य में यानी जब कोई कविता करता है तो बहुत बार जो जड़ पदार्थ हैं उनका भी मानवीकरण कर दिया जाता है, यानी उन्हें मनुष्य के रूप में चित्रित किया जाता है। तो यहाँ धनुष को मानो मनुष्य के रूप में चित्रित करते हुए सीता जी उससे प्रार्थना कर रही हैं कि तुम हल्के हो जाओ। वे कहती हैं कि हे शिव धनुष, तुम तो जड़ हो, भारी हो, कठोर हो, यदि तुम्हारे भीतर सचमुच कोई चेतना है तो श्री रघुनाथ जी के सुकुमार और मनोहर शरीर को देखकर अपनी कठोरता छोड़ दो, अपना भारीपन छोड़ दो, अपनी जड़ता और भार यहाँ जो लोग उपस्थित हैं उनके ऊपर डाल दो और स्वयं हल्के हो जाओ, ताकि मेरे प्रिय श्री राम तुम्हें आसानी से उठा सकें, उन्हें कोई कष्ट ना हो। यहाँ तुलसीदास जी की काव्य प्रतिभा सचमुच अत्यंत सराहनीय है। उन्होंने कहा निज जड़ता, तो निज जड़ता का अर्थ केवल निर्जीव होना नहीं है, यहाँ जड़ता में भारीपन, कठोरता और अचलता तीनों का भाव समाहित है। सीता जी चाहती हैं कि जो ये धनुष है जो इतना भारी है वो अपनी प्रकृति को छोड़ दे, अपने स्वभाव को छोड़ दे। और दूसरी बात, रघुपति ही निहारी, वो रघुपति को कह रही हैं कि एक बार तुम रघुपति को देखो, हे धनुष तुम देखो राम जी को, और जैसे राम जी एकदम हल्के फुल्के हैं, कोमल हैं, उसी तरह तुम कोमल हो जाओ। सीता जी को विश्वास है कि श्री राम के दिव्य सौम्य और सुकुमार रूप का दर्शन करके कठोर से कठोर वस्तु का भी हृदय पिघल जाता है, इसलिए वे धनुष से कहती हैं कि तुम भी उनके सौंदर्य और कोमलता को देखकर हल्के हो जाओ। प्रेम में प्रकृति और जड़ पदार्थ भी संवेदनशील हो उठते हैं, ऐसे अनेक उदाहरण साहित्य में भरे पड़े हैं जहां प्रकृति को भी संवेदनशील होते हुए दिखाया है। अपने नायक या नायिका के सुख में प्रकृति सुखी होती है, उसके दुख में प्रकृति आंसू बहाती है। तो इस छोटे से वाक्य में सीता जी का प्रेम, उनकी चिंता, उनकी करुणा और श्री राम के प्रति उनका अनुराग एक साथ प्रकट होता है। और श्रोताओं, आज इसी चौपाई के साथ मैं कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहती हूँ। अभी इसमें एक चौपाई और शेष रह गई है, उसे अगले कार्यक्रम में प्रस्तुत करेंगे। आइए एक भजन सुने और उसी के साथ कार्यक्रम को संपन्न करें। धन्यवाद, नमस्कार।

0: टाइम चेक दिन के 11 बजे हैं। देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है अदिति। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, श्रोताओं को भी नमस्कार। सेल्विन नायडू को शागोसियन लोगों के इतिहास पर आधारित अपनी डॉक्यूमेंट्री लोडिसे द पीपल को पूरा करने में 3 साल लगे, जहां एक तरफ इसकी कहानी शागोस द्वीप समूह सेशल्स और मॉरिशस में पाई गई, वहीं दूसरी तरफ इसके लिए कानूनी लड़ाई इन सीमाओं से बहुत दूर लड़ी गई। इसलिए निर्माता को उन वकीलों को ढूंढना पड़ा जो अमेरिका, ब्रिटेन और अलग अलग देशों के थे, जिन्होंने शागोस वासियों के मुद्दे का समर्थन किया था। इसके लिए उन्हें लंदन, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की यात्रा करनी पड़ी, क्योंकि उनके बयानों को फिल्म में कैद करने का यही एकमात्र तरीका था। इस हफ्ते से ये डॉक्यूमेंट्री बड़े पर्दे पर प्रस्तुत की जा रही है। मंगलवार को मालिना श्रीनिवास अपने कुत्ते के साथ राष्ट्रीय सभा के बाहर पेंशन सुधार और फाइनेंस बिल के विरोध में एक टेंट लगाकर धरने पर बैठी थी। कल दोपहर उसे सार्वजनिक रास्ते पर बाधा पैदा करने के आरोप पर पुलिस ने हिरासत में लिया और वैन में बिठाकर उसे ले जाया गया। हालांकि उसे कुछ ही समय बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस के अनुसार युवती का टेंट कानून मापदंडों के अनुरूप नहीं था। पुलिस अफसरों ने उसे आवश्यक कार्यवाही के लिए स्टेशन चलने को कहा, लेकिन हालांकि जब उसने सहयोग करने से इनकार किया तो उन्हें उसे पुलिस की गाड़ी में बिठाना पड़ा। पुलिस के अनुसार उन्होंने इसके लिए बिना किसी हिंसा के कम से कम और उचित बल का प्रयोग किया। सरकारी गठबंधन में शामिल हजिस्तान से कौलतेना चीफ ने पुलिस के इस हस्तक्षेप पर असहमति जताते हुए इसे शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति का उल्लंघन कहा। तमिल समुदाय में आदि का पावन महीना श्रद्धा, परंपरा और सुख समृद्धि की कामनाओं का प्रतीक माना जाता है। आज इसके 18वें दिन को आदि पेरू को मनाया जा रहा है। वैवाहिक महिलाएं नदी के तट पर एकत्र होकर विशेष पूजा विधियों में भाग लेती हैं और आज के दिन वे अपने विवाह के प्रतीक यानी अपनी ताली का धागा बदलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने के फैसले को रद्द करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज से ईरान के साथ शांति वार्ता फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्हें ईरान और अमेरिका के अन्य साथी देशों की मांगें मिली हैं, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में ईरान ने कोई बयान जारी नहीं किया है। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। जम्बो रोड शमैगोनी में 79 साल के 79 ईयर्स ओल्ड श्री आदिनारायण युसरी, जो गुरु नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, इनकी मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के तीन बजे इनके बेटे श्री प्रवीण युसरी के मकान जम्बो रोड शमैगोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कोंगोपाल शामुनी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोक में डूबे इस परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।
3: शम्मे फरोज़ा।

आऊज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाही व बरकातुहू। ऐ ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद तलब करो, बेशक

अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। मौज़े सामेईन, उम्मीद है आप बफ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम्मे फरोज़ा रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू नशरियात में आप समात फरमाएंगे तिलावत कुरान पाक हम बयान नातो सलाम। ताखिर ना करते हुए आइए आगाज़ करते हैं कलामे इलाही से। आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम।

शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तौसीम मीम, ये किताब रोशन की आयतें हैं। ए पैगंबर, शायद तुम इस रंज से कि ये लोग ईमान नहीं लाते अपने आप को हलाकत में डाल दोगे। अगर हम चाहें तो इन पर आसमान से कोई निशानी उतार दें, फिर इनकी गर्दनें उसके आगे झुक जाएं। और इनके पास रहमान की तरफ से कोई नई नसीहत नहीं आती मगर ये उससे मुंह फेर लेते हैं। सो ये तो झुटला चुके, अब इनको उस चीज की हकीकत मालूम हो जाएगी जिसकी हंसी उड़ाते थे।

क्या इन्होंने जमीन की तरफ नहीं देखा कि हमने उसमें हर किस्म की कितनी नफीस चीजें उगाई हैं? कुछ शक नहीं कि इसमें निशानी है, मगर ये अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। और तुम्हारा परवरदिगार गालिब है, मेहरबान है।

और जब तुम्हारे परवरदिगार ने मूसा को पुकारा कि जालिम लोगों के पास जाओ यानी कौम फिरौन के पास, क्या वो डरते नहीं? उन्होंने कहा कि मेरे परवरदिगार, मैं डरता हूं कि वो मुझे झूठा समझें और मेरा दिल तंग होता है और मेरी जबान रुकती है। तो हारून को हुक्म भेज कि मेरे साथ चलें, और उन लोगों का मुझ पर एक गुनाह यानी फिरौनी के खून का दावा भी है, सो मुझे यह भी डर है कि मुझको मार ही डालें। फरमाया, हरगिज नहीं, बस तुम दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ, हम तुम्हारे साथ सुनने वाले हैं। सो दोनों फिरौन के पास जाओ और कहो कि हम तमाम जहानों के मालिक के भेजे हुए हैं और इसलिए आए हैं कि आप बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दें।

फिरौन ने मूसा से कहा, क्या हमने तुमको जबकि तुम बच्चे थे परवरिश नहीं किया था, और तुमने बरसों हमारे यहां उम्र बसर नहीं की, और तुमने एक और काम किया था जो किया तुम नाशुक्रे मालूम होते हो।

0: मूसा ने कहा कि हां वो हरकत मुझसे नागहां सरजद हुई थी और मैं खताकारों में था। फिर जब मुझे तुमसे डर लगा तो मैं तुम्हारे पास से फिरार हो गया। फिर मेरे रब ने मुझको नबूवत और इल्म बख्शा और मुझे पैगंबरों में से किया। और क्या यही एहसान है जो आप मुझ पर रखते हैं कि आपने बनी इसराइल को गुलाम बना रखा है।
1: قال فرعون وما

0: फिरौन ने कहा, और रब्बुल आलमीन क्या होता है? फरमाया, आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब का मालिक, बशर्ते कि तुम लोगों को यकीन हो। फिरौन ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा कि क्या तुम सुनते नहीं? मूसा ने कहा कि तुम्हारा और तुम्हारे अगले बाप दादों का भी मालिक। फिरौन ने कहा कि ये पैगंबर जो तुम्हारी तरफ भेजा गया है बावला है। मूसा ने कहा कि मशरिक और मगरिब और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है सबका मालिक, बशर्ते कि तुमको समझ हो। फिरौन ने कहा कि अगर तुमने मेरे सिवा किसी और को माबूद बनाया तो मैं तुम्हें कैद कर दूंगा। मूसा ने कहा, खा मैं आपके पास रोशन चीज लाऊं यानी मोजेजा? फिरौन ने कहा, अगर सच्चे हो तो उसे लाओ दिखाओ।
1: فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ
0: پس انہوں نے اپنی لاٹھی ڈال دی تو وہ اسی وقت صاف اژدہا بن گئی، اور اپنا ہاتھ جو نکالا تو اسی دم دیکھنے والوں کے لیے سفید براق نظر آنے لگا۔

फिरौन ने अपने गिर्द के सरदारों से कहा कि ये तो एक माहिर जादूगर है, चाहता है कि तुमको अपने जादू के जोर से तुम्हारे मुल्क से निकाल दे, तो तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने कहा कि इसको और इसके भाई को कुछ मोहलत दीजिए और शहरों में नकीब भेज दीजिए कि सब माहिर जादूगरों को जमा करके आपके पास ले आएं। आखिर जादूगर एक मुकर्ररा दिन की मियाद पर जमा हो गए और लोगों से कह दिया गया कि तुम सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए ताकि अगर जादूगर गालिब रहें तो हम उनके पैरों हो जाएं।

फिर जब जादूगर आ गए तो फिरौन से कहने लगे कि अगर हम गालिब रहे तो हमें सिला भी अता होगा। फिरौन ने कहा हां, और तब तुम मुकर्रबों में भी दाखिल कर लिए जाओगे।

मूसा ने उनसे कहा कि जो चीज डालनी चाहते हो डालो, तो उन्होंने अपनी रस्सियां और लाठियां डाली और कहने लगे कि फिरौन के इकबाल की कसम हम ही जरूर गालिब रहेंगे। फिर मूसा ने अपनी लाठी डाली तो वो उन चीजों को जो जादूगरों ने बनाई थीं निगलने लगी। तब जादूगर सजदे में गिर पड़े और कहने लगे कि हम तमाम जहानों के मालिक पर ईमान लाए जो मूसा और हारून का रब है,

फिरौन ने कहा, क्या इससे पहले कि मैं तुमको इजाजत दूं तुम उस पर ईमान ले आए? बेशक ये तुम्हारा बड़ा है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो अनकरीब तुम इसका अंजाम मालूम कर लोगे कि मैं तुम्हारे हाथ और मुखालिफ समत के पांव काट दूंगा और तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि कुछ नुकसान की बात नहीं, हम अपने परवरदिगार की तरफ लौट जाने वाले हैं, हमें उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमारे गुनाह बख्श देगा, इसलिए कि हम अव्वल ईमान लाने वालों में हो गए।

0: मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात ले निकलो, अलबत्ता फिरौनियों की तरफ से तुम्हारा ताकुब किया जाएगा। तो फिरौन ने शहरों में नकीब रवाना किए और कहा कि ये थोड़े से लोगों की जमात है और ये हमसे गुस्सा खा रहे हैं और हम सब इनसे खतरा रखते हैं। आखिर हमने उनको बागों और चश्मों से निकाल दिया और खजानों और नफीस मकानात से उनके साथ हमने इसी तरह किया और इन चीजों का वारिस बनी इसराइल को बना दिया।
1: सदकल्लाहुल अजीम। ए पाक परवरदिगार, हमें कुरान शरीफ समझकर पढ़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमा, आमीन। मौजूद सामीन, समंदर सबके लिए एक जैसा ही होता है, लेकिन कुछ लोग उसमें से मोती तलाश कर लेते हैं, कुछ मछलियां पकड़ लेते हैं और कुछ को समंदर से खारे पानी के सिवा कुछ भी नहीं मिलता। बादल से बरसने वाला पानी एक जैसा ही होता है, जरखेज़ ज़मीन उसी पानी से सब्ज़ा उगा लेती है, सहरा की रेत उस पानी से अपनी प्यास बुझाती है और वही पानी चिकने पत्थरों को महज छू कर गुजर जाता है। अल्लाह ताला की रहमत हर दिल के लिए एक जैसी है, वो हमें 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है, बेशक सिर्फ और सिर्फ

0: आप जहां से भी हमारा साथ दे रहे हैं, हम आप सबका आज की इस मजलिस में दिली खैर मकदम करते हैं। मौजूद सामीन, अब आप समात फरमाएंगे मुबल्लिगे दावत इस्लामी कारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। मौजू है, अर्श का साया किसको मिलेगा। आइए समात फरमाएं।
1: अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलात वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलात वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलात वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। काबे के बदरु दुजा, तैबा के शमसु दुहा, दाफ़े जुमला बला, शाफ़े रोज़े जज़ा। सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम का फ़रमाने आली शान है, क़यामत के रोज़ अल्लाह करीम के अर्श के सिवा कोई साया नहीं होगा। तीन शख्स अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे, जो क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए में होंगे। इन खुश नसीबों के बारे में कई अहादीस मुबारका अलग अलग अंदाज में बयान हुई हैं। सख्त गर्मी और तपती धूप में बग़ैर साए के खड़े हों तो शायद 5 मिनट के बाद हम पसीने से भीग

जाएं और खड़ा ना रहा जाए। मगर क़ियामत के दिन तो ज़मीन तांबे की होगी, सूरज सवा मील पर होगा। ये समझने की कोशिश करें कि इन दिन गर्मी कितनी होगी। जो उस दिन गर्मी होगी उस वक्त लोग प्यास के मारे अल अतश अल आतश, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी। पसीना इतना निकलेगा कि कुछ लोग तो अपने पसीने में ही डुबकियां खा रहे होंगे। नफसी नफसी का आलम होगा, अल्लाह पाक के अर्श के सिवा कोई साया ना होगा। और रब का के अर्श का साया ना मिला तो हमारा क्या बनेगा। तो हमें इन हदीस से ये सीखना है कि वो कौन खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह पाक क़यामत के दिन अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। जो हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, इस हदीस में तीन किस्म के लोगों का तज़किरा है जिन्हें अल्लाह पाक के अर्श का साया मिलेगा। और आप ये चेक कर लें कि मेरा शुमार इन लोगों में है, क्या मैं ऐसे काम कर रहा हूँ कि मेरा नाम इन लोगों में आ जाए। आइए सुनते हैं पहला शख्स कौन है कि जिसे अल्लाह तबारक व ताला के अर्श का साया नसीब होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन फर्रजा अन मकरूबी उम्मती, जो शख्स मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर दे, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की परेशानी, अपने किसी मुसलमान भाई की परेशानी दूर करना, ये अल्लाह पाक को इतना पसंद है कि अल्लाह पाक क़ियामत के दिन अपने अर्श का साया उसको नसीब करेगा। अब मैं और आप गौर करें कि क्या हमारी ज़िंदगी, क्या हमारा तर्ज अमल, क्या हमारा अंदाज़ या हमारी ज़िंदगी जीने का जो स्टाइल है, तरीका है, कि हम लोगों की परेशानियां दूर करते हैं। माशाल्लाह, कुछ खुशनसीब होते हैं कि जो दिन रात लोगों की परेशानियां दूर करने में लगे रहते हैं, वो लोगों की राहत का सामान करते हैं, वो हौसला देते हैं। याद रखिए, हर परेशानी पैसों से दूर नहीं होती, बाज़ औक़ात कुछ मीठे बोल, कुछ मीठी प्यारी प्यारी बातें ही परेशानी दूर कर देती हैं। मुस्कुराकर मिलना ही अगले की परेशानी दूर कर देता है। थोड़ा पीठ थपक कर हौसला देकर वो गिरा हुआ, हिम्मत हारा हुआ, टूटा हुआ इंसान फिर से खड़ा हो जाता है। शायर कहते हैं, शरबत ना दें ना दें, करें बात लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शक्कर की है। सुभान अल्लाह, यानी अगर आप शरबत नहीं दे सकते, पैसे से मदद नहीं कर सकते, मगर अच्छी बात तो कर सकते हैं। परेशानी दूर करने वाले वो खुश नसीब हैं जिन्हें अल्लाह पाक के अर्श साया नसीब होगा। और इसके बरअक्स सोचिए, ऑपोजिट, कि वो कितने बदनसीब लोग हैं जो लोगों के लिए परेशानी पैदा करते हैं। कुछ लोग वो हैं जो परेशानी दूर करते हैं, और कुछ वो बदनसीब हैं जो मुसलमानों को परेशान करते हैं, रोब दिखाकर, घूर कर, झड़क कर, जलील कर कर, जुल्म कर कर, परेशान कर कर, तकलीफ़ें देकर। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनसे उनके वाज़ें खुश नहीं हैं, वो उनको तकलीफ़ें पहुंचाते हैं, उनको तंग करते हैं। सोचिए और दिल से सोचिए, आज तो परेशान कर लेंगे, आज तो लोगों को तकलीफ़ में मुब्तला कर लेंगे, मगर क़ियामत के दिन जब तपती धूप में खड़ा कर दिया जाएगा तो अल्लाह पाक को क्या जवाब देंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे। अल्लाह करे मेरी और आपकी ज़िंदगी लोगों की खैर ख्वाही में गुज़रती रहे। अल्लाह के बंदों के लिए हम आसानियां पैदा करने वाले बन जाएं, इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हमारे लिए आसानियां पैदा फरमाएगा। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के अर्श का साया क़यामत के दिन हमें नसीब होगा। दूसरा शख्स कौन है जिसको अर्श का साया मिलेगा? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन व मन अहया सुन्नती, मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। अल्हम्दुलिल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी वालों को मुबारक हो।
अल्लाह पाक अमीर अहले सुन्नत को सलामत रखे कि हमें ऐसे शानदार तहरीक दी, ऐसा प्यारा दीनी माहौल दिया जहाँ दिन

हजरात सुन्नतों पर अमल करवाने का ज़हन दिया जाता है। अमीर अहले सुन्नत के बारे में सोचें कि कितनी ऐसी सुन्नतें थीं जो हमने पहले सुनी भी नहीं थी। प्यारे अमीर अहले सुन्नत ने ख़ुद अमल किया, हमें बताया और आज लाखों इन सुन्नतों पर अमल करने वाले नज़र आते हैं। ए अमामा पहनने वालों, ए दाढ़ी एक मुट्ठी रखने वालों, ए नबी पाक के तरीके के मुताबिक उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने वालों, आपको मुबारक हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने वाला इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल क़यामत के दिन अल्लाह पाक के अर्श के साए में होगा। अल्लाह पाक हमें भी इस अर्श का साया नसीब फरमाए। ऐसे लोगों को सोचना चाहिए जो सुन्नतों से दूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में सुन्नतों से दूर दूर का ताल्लुक भी नहीं है। ना चलना सुन्नत के मुताबिक, ना खाना सुन्नत के मुताबिक, ना चेहरा सुन्नत के मुताबिक, ना लिबास सुन्नत के मुताबिक, ज़िंदगी में सुन्नतों से दूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह करीम के अर्श के साए से महरूमी हो जाए। हम सबको चाहिए हम अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को अदा करें। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बेशुमार ऐसे वाक़यात मिलते हैं, लोगों ने देखा सहाबा ने ऐसा किया, पूछा क्यों किया हज़रत, या ख़ुद जवाब दिया तुम लोगों को पता है, आपको पता है मैंने ऐसा क्यों किया। लोग जवाब में पूछते हैं, जवाब अर्ज़ करते हैं, नहीं हमें नहीं पता, हम नहीं जानते। सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने जवाब दिए। कई ऐसे वाक़यात हैं, कई ऐसी रिवायतें कि एक मरतबा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया, बस उसी सुन्नत को आज अदा कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसा जज्बा सुन्नतों पर अमल करने का, और आज हमारे अंदर वो जज्बा नज़र नहीं आता। काश काश मेरे आने वाली नस्लें तेरे इश्क ही में मचलें, उन्हें नेक तुम बनाना मदनी मदीने वाले बनू सुन्नतों का पैकर। काश हम सुन्नतों के पैकर बन जाएं, काश हम सुन्नतों पर अमल करने वाले बन जाएं। इस्लामी भाई इस्लामी बहनें, इंशाअल्लाह हमने सुना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, वमन अहया सुन्नती, जो मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला होगा क़यामत के दिन उसे अल्लाह पाक के अर्श का साया नसीब होगा। अल्लाह पाक हम सबको इस अर्श का साया नसीब फरमाए। तीसरा शख्स कौन? मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वमन अक्सर सलात अलैया, जो मुझ पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा अल्लाह पाक के अर्श का साया उसे भी नसीब होगा। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, चलते फिरते उठते बैठते जितना हो सके दुरूद पाक अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लीजिए। आपकी ज़बान दुरूद पाक से तर रहनी चाहिए। आप दुरूद पाक पढ़ना शुरू तो कीजिए, ये तो क़यामत के दिन अल्लाह करीम के अर्श का साया मिलेगा। मगर दुरूद पाक तो एक ऐसा वजीफ़ा है, दुनिया में पढ़ते रहो तो दुनिया में भी रहमतों का साया मिल जाता है, दुनिया में भी बरकतें साथ हो जाती हैं, जैसा कि अल्लाह पाक के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मुझ पर दुरूद भेजता है तो जब तक वो दुरूद पढ़ता रहता है फरिश्ते उसके लिए दुआए मगफिरत करते रहते हैं। अगर हर वक्त रहमतों की बरसात में रहना है तो दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। आइए मैं भी नियत करता हूँ आप भी नियत करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल रोज़ाना कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ेंगे। अब एक सवाल ये पैदा होता है, कसरत किसे कहते हैं? तो बाज़ उलमाए कराम ने फरमाया कि कसरत का मतलब है ज़्यादा पढ़ना, यानी इतनी क्वांटिटी पढ़ ली जाए कि जिसे कहा जाए कि इसने बहुत पढ़ा। कसरत माने ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पढ़ा। तो बहुत ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ना या कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, एक लिमिट बताई गई। उलमाए कराम फरमाते हैं कि कोई भी वजीफ़ा अमल अगर 313 मरतबा किया जाए, 313 मरतबा कोई अमल वजीफ़ा किया जाए तो वो कसरत में शुमार होता है। तो अगर हम नियत करने आज सब इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें के रोज़ाना कम अज़ कम 313 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे,

0: तो इंशा अल्लाह अज़ व जल्ला ये कसरत से दुरूद पाक पढ़ना कहलाया जाएगा, और अल्लाह ने चाहा तो इसकी बरकत से अल्लाह पाक के अर्श का साया रोज़ क़यामत नसीब होगा। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आप कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ना चाहें पढ़ें, आप छोटा दुरूद पाक सेलेक्ट कर लें या दुरूद इब्राहिम पढ़ना चाहें तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी दुरूद पाक है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह दुरूद पाक है, सल्लल्लाहु अला नबी उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दुरूद पाक है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम दुरूद पाक है। जो आपको आसानी है यूँ समझ लें कि आप इसको पढ़ना चाहते हैं आप वो पढ़ें, लेकिन कसरत से पढ़ें, इंशाअल्लाह इसकी बरकतें नसीब होंगी। तो हमने आज के बयान में सुना कि अर्श का साया जो इस हदीस में है, जो हदीस हमने सुनी उनमें तीन लोगों के बारे में बताया गया। पहला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरे किसी उम्मती की परेशानी दूर करे। नंबर दो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरी सुन्नत को ज़िंदा करने वाला। और नंबर तीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुझ पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ने वाला। अल्लाह पाक हमें इन तीनों बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इसकी बरकतें नसीब फरमाए। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम।
1: मौजूद सामीन, अभी आप समाअत फरमा रहे थे मुबल्लिगे दावत इस्लामी क़ारी अब्दुल माजिद अत्तारी साहब की ज़ुबानी एक बयान। उम्मीद करते हैं कि इस बयान से आपकी दीनी मालूमात में ज़रूर इजाफा हुआ होगा। आइए एक हदीस समात फरमाइए। हज़रत जाबिर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक कान कटे हुए मरे हुए बकरी के बच्चे पर गुज़र हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में कौन पसंद करता है कि मुर्दा बच्चा उसको एक दरहम के बदले मिल जाए। लोगों ने अर्ज़ किया दरहम तो बड़ी चीज़ है, हम तो इसको पसंद नहीं करते कि वो हमको किसी अदना सी चीज़ के बदले में भी मिले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसम है अल्लाह की दुनिया अल्लाह ताला के नज़दीक इससे भी ज़्यादा जलील है जिस कदर ये तुम्हारे नज़दीक। बहवाला मुस्लिम शरीफ।

आइए एक और हदीस समात फरमाइए। हज़रत इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चटाई पर सोए, फिर उठे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदने मुबारक पर चटाई का निशान पड़ गया था। इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला अन ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमको इजाज़त दीजिए कि हम आपके लिए बिस्तर बिछा दें और बिस्तर बना दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको दुनिया से क्या वास्ता, मेरी और दुनिया की तो ऐसी मिसाल है जैसे कोई सवार चलते चलते किसी दरख्त के नीचे साया लेने को ठहर जाए, फिर उसको छोड़कर आगे चल दे। बहवाला इब्ने माजा शरीफ।

इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत मोमिन का तोहफ़ा है। ऐ पाक परवरदिगार, हमें मरते दम कलमा तैयबा नसीब हो, हमारी मौत हालत ईमान में हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: दिन के 12 बज रही है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से सुनिए दो विज्ञप्तियां। मरम्मत कार्यों की वजह से सीबी अपने सभी ग्राहकों, खास तौर से जो लोग बेलव्यू शुमैग्रेनिये और मोसलमा दनपत शुमैग्रेनिये और आसपास के इलाकों में रहते हैं, उनको सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी, जबकि गुरुवार 6 अगस्त को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक गोजबेल, खासतौर से गोजबेल स्टेडियम, ट्रैफिक सेंटर गोजबेल, गोजबेल कोऑपरेटिव और आसपास के इलाकों में रहने वालों को

0: कि मरम्मत कार्यों की वजह से ही बिजली की आपूर्ति में कटौती लाई जाएगी। जो ही मरम्मत कार्य पूरे होंगे, बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सामान्य पर ला दी जाएगी। इस असुविधा के लिए सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है।
1: स्वर तरंग
2: स्वर तरंग

इस समय स्टूडियो की घड़ी में बिल्कुल 2:30 बज चुके हैं। ये रेडियो मॉरिशस का प्रसारण है। मीडियम एवार्ड 19 किलो हर्ट्ज पर से हमारा आज का ये प्रसारण जारी हो रहा है। सोमवार का दिन है, अगस्त महीना, 3 तारीख 2026 का साल, और अभी से लेकर 4 बजे तक आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम लेकर आ पहुंची है रत्ना। हमारा सप्रेम नमस्कार स्वीकार करें। बस आप जहां से भी जुड़े हैं, आप स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, और बेशक सोमवार का दिन जो पहला दिन होता है सप्ताह का, और बिल्कुल आज के इस कार्यक्रम को लाजवाब बनाने के लिए आपके पसंदीदा गीतों को ज़रूर आप इस कार्यक्रम में शामिल कर सकते हैं। 402-8085 नंबर है रेडियो मॉरिशस का। जी हाँ, 402-8085। और अगर मैसेज भेजना चाहते हैं तो 5251-7005 नंबर है रेडियो मॉरिशस के व्हाट्सएप का। तो चलिए आज के इस लाजवाब कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही हसीन गाने के साथ, और ये गाना जो है भूपेंद्र सिंह और सुरेश वाडकर की आवाज़ में रखा हुआ गीत है, फिल्म मासूम से लिया हुआ। और शायद आपको याद होगा नसीर साहब इस फिल्म में नजर आए थे, नसीरुद्दीन शाह, और साथ नजर आए थे सैयद जाफरी, शबाना आज़मी। तो चलिए इसी फिल्म के गीत के साथ आज के इस कार्यक्रम की हसीन शुरुआत करते हैं।

0: की पसंद।
1: चलिए जिसका होता है आपको बेसब्री से इंतजार अल्लाह जवाब कार्यक्रम भी। जी हाँ, आपकी पसंद कार्यक्रम में आज हमारे साथ यहाँ पर बेशक बहुत सारे श्रोता जुड़ना शुरू हो चुके हैं, बस थोड़ा सा संयम रखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपके फ़ोन कॉल्स, आपके मैसेजेस को हम ज़रूर शामिल करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं, जी जान से लग गए हैं। और चलिए यहाँ पर पतंग फिल्म से लिया हुआ आज का ये पहला गीत जाता है उदय जी की ओर से, जो इस वक्त गिवेजू पुस्त से हमारा साथ दे रहे हैं, और उनकी सभी फैमिली के नाम हम यही गीत करना चाहेंगे। तो बिल्कुल आप हमारा साथ दीजिएगा। वैसे आपको याद दिला दे 5251705 पर केवल आप अपने मैसेजेस भेजें, ना कि कॉल करें। और कॉल करना है तो 4028085 पर अपने फोन कॉल्स

0: l'époque qui passonne.
1: चलिए दो बजकर 40 मिनट हो चुके हैं और कार्यक्रम को बिल्कुल जारी रखते हैं। लाजवाब गीतों का ये सिलेक्शन आपकी ओर से आ रहा है। जब आप कहते हैं कि सिलेक्शन तो बहुत बढ़िया है भाई, ये सिलेक्शन आपके गाने हैं और हम तो केवल यहाँ से चला रहे हैं, हमारी कोशिश यूं ही जारी है। और चलिए यहाँ पर मोहम्मद रफ़ी और शारदा की आवाज़ में रखा हुआ ये अगला गीत सीमा फिल्म से लिया हुआ और ये गाना जाता है सुनीता जी की पसंद पर। महबूब से वे साथ दे रही हैं और उनकी प्यारी बहन विमला जो कोंगुमा से साथ जुड़ी हुई हैं, और गुडलैंड से है वीना जी और अमृता जी बिल्कुल उनके पास घोंगुब से ही हमारा साथ दे रही हैं। तो आइए सुनते हैं ये गाना, फिल्म है सीमा, आवाजें मोहम्मद रफ़ी और शारदा।

0: आपकी पसंद।
1: जो कोई आपके दिल को उदास करे उनसे दूर हो जाइए।
2: नहीं मजाक कर रहे हैं, ऐसे दूर थोड़ी हुआ जाता है। पर चलिए, जब भी दिल उदास हो जाए तो रेडियो ऑन कीजिए, गाने सुनिए, और लाजवाब गाने अगर मन में गूंज रहे हैं तो 4028085 पर आप अपने पसंदीदा गीत की फरमाइश कर सकते हैं आपकी पसंद कार्यक्रम में। तो चलिए, अगला जो गाना है फिल्म सरगम से लिया हुआ, और ये गाना जाएगा रफीक दौलत जी के लिए, जो प्लान माइयों से हमारे साथ हमेशा जुड़े रहते हैं बेगम नूरजहां के साथ। और मोहम्मद रफी साहब की आवाज में रखा हुआ ये गाना हम करेंगे खास उनके लिए।

रिश्ते नाते यूं ही चले जाते हैं, जिंदगी खत्म रिश्ता खत्म, पर कहते हैं ना दिल में वो बातें वो जज्बात कभी ख़त्म नहीं होते। चलिए इसी के साथ इस जज्बात को जारी रखते हैं और यहाँ पर रिहाना जी हमारे साथ नॉर्थ-ए-दाम से जुड़ चुकी हैं उनकी प्यारी सखियों के साथ, माला फावदा और सुरेखा जी। और मुकेश साहब की आवाज़ में रखा हुआ ये गाना उन्होंने पसंद किया है, पुराना गीत है पर बहुत ही लाजवाब शब्दों से सजाया हुआ ये गाना, फिल्म है बेदर्द ज़माना।

0: की पसंद।
1: कहीं नैन है जादू भरे तो कहीं नैन बस यूं ही लड़ जाई है। और ये गाना जाएगा नंदलाल नाना जी, जो वाकवा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिल्म गंगा जमुना का ये गीत उन्होंने मांगा है। और ये हालांकि ये गाना मांगा गया है शनाया और रियांश की ओर से उनके प्यारे नाना जी के लिए। ओए होए नाना जी, चलिए आपके लिए ये बढ़िया सा गाना हम चलाने जा रहे हैं। फिल्म है गंगा जमुना, मोहम्मद रफ़ी साहब की प्यारी सी मदहोश सी मस्ती भरी आवाज़ में।
2: लागा गोरी गुजरिया से नेहा हमार, होई गवा सारा चौपट मोरा रोजगार।

0: झाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धाक दिनक दिन ताक तिनक तिन धा
1: आंख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

0: भैया मन में कसक है बे करी
1: ओ नैना जब करी है तो भैया मन में कसक है बे करी
0: कई कई दिन बिठा।
2: दिलीप कुमार साहब इस फिल्म में क्या अलहड़पन से नजर आए हैं। और चलिए इसी के साथ हम बढ़ रहे हैं अभी एक ही मिनट में 3 बजे की ओर। 3 बजे के सपहर के समाचारों के बाद एक बार फिर इस सफर को जारी रखेंगे।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, समय सुपहर के ठीक 3 बजे हैं। आइए जुड़ते हैं 3 बजे के समाचारों के साथ।

0: सुनते हैं देश विदेश की खबरें सुमैरा अकबर अली से। आपको नमस्कार और आदाब।
1: नमस्कार आदाब। सांसद वेरोनिक लेगोविन का पति गुलशन लेगोविन आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए हैं और उन पर 2 अस्थायी इल्जाम दर्ज हैं, गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए। पुलिस ने उनकी रिहाई पर एतराज जताया और अब वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती क्लिनिक में की गई। आदसू और रिनन टापू के ऑंसी स्टुपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। ये शक है कि दोनों रिनन टापू और मोर्शस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। आज स्टेट हाउस रेजवी में 3 जूनियर मंत्रालयों के लिए शपथ ग्रहण समारोह लगाया जाएगा। आपको बता दें कि इनमें पर्यावरण मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय आदि शामिल हैं। जल की समस्या के चलते उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वे एक मुश्किल घड़ी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल वे स्थिति का संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दामों में खासतौर पर सब्जियों के खेतीहरों ने ऐसा बताया। इसके अलावा गन्ने के खेतीहरों ने कहा कि

0: कम पानी की वजह से उनके उत्पादन पर असर पड़ा है, क्योंकि पिछले नवंबर महीने से जल आपूर्ति कम है, इसलिए वे लंबी अवधि के लिए एक सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। विदेश में पाकिस्तान की स्वातवादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ। 14 लोग मारे गए हैं जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे। उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, शोक समाचार सुनिए। डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रिजिल में 77 साल की 77 years old श्रीमती धमवंती राम किलावन, श्रीमती धमवंती राम किलावन पैदाइशी नाम उमिया जो सरोज के नाम से ज्यादा जानी जाती थीं, की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी कल साढ़े दस बजे इनके घर डॉक्टर लॉरेंस स्ट्रीट रिजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कॉलिव्यू की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमारो एट 10 AM। शोक में डूबे इस परिवार से हमें हमदर्दी है।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
2: रेडियो मॉरिशस। चलिए इस वक्त 3:03 हो चुके हैं। रेडियो मॉरिशस की लहरों पर आप जुड़े हुए हैं। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा जारी की गई एक विज्ञप्ति पर नजर डालते चलें। ये विज्ञप्ति है बेव्यू श्रमैक ग्रेनिये के आसपास के इलाके, साथ ही साथ मोसरमों दनपत और श्रमैक ग्रेनिये के निवासियों को सूचित किया जाता है कि कल मंगलवार 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 4 बजे के बीच मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्य पूरा होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली सप्लाई को जारी कर दिया जाएगा। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं और ये विज्ञप्ति जारी की गई थी सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा। आइए एक बार फिर जुड़ते हैं आज के इस कार्यक्रम में।
3: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
4: आपकी पसंद।
2: आपकी पसंद कार्यक्रम सुनने वाले हमारे समस्त श्रोताओं का हम एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करते हैं रेडियो मॉरिशस की लहरों पर। आपकी पसंद कार्यक्रम में मैं हूं रत्ना, आप पहुंची हूं आज के इस कार्यक्रम को जारी रखने के लिए। और बिल्कुल हमारा कार्यक्रम 4 बजे तक जारी रहेगा। जहां कहीं से भी जुड़े हैं दिल से साथ दीजिएगा। और इसी के साथ चलिए आज के सफर को जारी रखा जा रहा है लाजवाब गीतों के इस सफर में। हमारा जो अगला पसंदीदा गीत है ये है फिल्म नया दौर से लिया हुआ गाना, और ये गाना है गायत्री जी की पसंद पर जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पिची वेजे सैपिये से। और ये गाना उनकी प्यारी बहन अमृता के लिए, जिनकी 3 प्यारी बेटियां नेहा क्षिति दिव्या, बेटे हैं सुधीर और कमलेश, बहू है सुधा, साथ है गायत्री जी आपकी प्यारी भाभी मीरा और उनकी 2 प्यारी बेटियां गिरिशा और मेधा। और बिल्कुल आपने हमारा भी नाम लिया जोड़ने के लिए और बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। तो चलिए इसी के साथ फिल्म नया दौर का ये गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में।

0: आपकी पसंद।
1: आपकी पसंद कार्यक्रम दो बीघा जमीन का ये अगला गाना लता जी की प्यारी सी आवाज में और साथ दिया है मन्ना डे साहब ने। ये गाना श्यामा जी की पसंद पर हम चलाने जा रहे हैं उनके सभी रघुनंदन परिवार के लिए। भाई है जयप्रकाश, भाभी है नम्रता, केशव युधीश और उनकी प्यारी सखियां विश्वानी और वीना रामफल।

0: अगला गीत ये है फिल्म आया सावन झूम के, और इस फिल्म से लिया हुआ ये गाना है, और ये गीत जाएगा सुरागिनी जी के लिए जिस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और ये गाना उनके बेटे गजन आशील, बहू है अर्चना नीतुषा, बेटी है निष्ठा, दामाद है विनय, नाती है वैष्णव, साथ है रुशाली, अनाया शनाया अमाया, साथ है आरव
1: है,
0: और इनके पति है चंद्रदेव, और सभी रघु परिवार, बनवा परिवार, आदीन परिवार जो पुआशेरी से जुड़े हुए हैं।
1: मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो बुरा

0: बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो बिल्कुल
1: मत देखो,
0: खुद के अंदर की बुराई को भी तो खत्म करना होगा। और चलिए इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अगला गाना एक बहुत ही लाजवाब सा गीत है, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में रखा हुआ। ये गाना जाएगा मानती जी के लिए, और आज वे अपनी भाभी राधिका को बहुत मिस कर रही है। आज उनकी पुण्यतिथि है, आज ही के दिन वे दुनिया को छोड़ चली थी और वे गज़ल को सुनना बेहद पसंद करती थी। तो चलिए हमारी ओर से ये गज़ल आपके नाम। आशा करते हैं कि ये गाना आपको पसंद आएगा। आपकी प्यारी बहनें हैं मानती जी, अनंती जी और आरती जी भी साथ जुड़ी हुई हैं। साथ है गिरीशा, मितिशा, हितांशु, भव्य और पुष्कल, हमेशा की तरह साथ देते हुए।

0: की पसंद।
1: 3:33 हो चुके हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। विश्वानी दुमन इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं वाकवा से, उनकी प्यारी बहन इंदिरा और शारदा, साथ हैं नीला और प्रतिभा, और शोभा जी और गीता के जादर साथ जुड़ी हुई हैं। और फिल्म अनाड़ी का ये अगला गीत हम लाए हैं उनके लिए किशोर कुमार साहब की आवाज़ में।

गीतों को यूं ही गुनगुनाते हुए हम भी आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर ज्योति जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं यूनियन पार्क से, और प्रीति, मयूर, आदर्श, वेदना, विमला, विवेक और अविष्ठा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मौ डाल ब्या से अनीता जी, बहू बेटी फिल्म का ये गीत आपने पसंद किया है, करुणा, अमृता और विनीता के नाम। और साथ ही साथ सुदेवी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वाकवा से, और उनकी प्यारी बहन ललिता कुशल जो त्रियोले से जुड़ी हुई हैं, और उनकी खास दोस्त जिनका जन्मदिन 2 अगस्त को था। फिलहाल आपने अपनी सखी का नाम तो डाला नहीं, बस उनके बेटी, दामाद, नाती और नातिन की ओर से उनको ढेर सारी बधाइयाँ। साथ ही साथ राम रतन, राम गुलाम, कुवारू और रघुबार परिवार हमेशा की तरह साथ देता हूँ।

0: आपकी पसंद।
1: भाई फिलहाल तो आपकी पसंद कार्यक्रम आपको अपनी ओर खींच रहा है और चलिए 4 बजे तक जारी है ये कार्यक्रम। इस वक्त 3:35 हमारी कोशिश तो यही है कि हम सभी के गानों को चलाए, पर क्या करें, कई बार गानों की जो लिस्ट है वो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है, पर चलिए कोशिश करेंगे। और यहाँ माया जी हमारे साथ है मोताई ब्लॉश से, सत्यम शिवम सुंदरम का ये गाना उन्होंने मांगा है अपने सभी परिवार के लिए, क्योंकि कहती हैं श्रावण मास चल रहा है तो प्लीज़ आप ये गाना ज़रूर चलाइएगा। लता जी की प्यारी सी आवाज़।

पसंद कार्यक्रम का ये जो अगला गीत है लेते हैं, ये जाएगा कमला जी की पसंद पर। कमला जी जो इस वक्त मोहताबा से साथ जुड़ी हुई हैं, सीता बोई गोब उनकी जो फ्रेंड है, और साथ ही साथ रियांश और आरोही दीनू परिवार आमदनी परिवार के नाम करते हैं ये अगला गीत। मन्ना डे साहब की आवाज़ में रखा हुआ उजाला फिल्म से लिया गया।

श्रावण का पावन मास और आज है सोमवार का दिन, बहुत ही खास दिन और सभी शिव भक्तों के लिए। अगला गीत है अनीता जी जो फ्री कॉम्फ्लेक्स साथ दे रही हैं। शिव सागर मंदिर के सभी सदस्यों के लिए उन्होंने गीत की फरमाइश की है। कुमारा बाप फिल्म से लिया हुआ ये गाना जिस फिल्म में नजर आए थे महमूद साहब। किशोर कुमार साहब की आवाज में रखा हुआ ये गीत लता जी ने दिया है साथ।

भोलेनाथ हैं इसीलिए तो बिल्कुल दिल से जो भी आप मांगते हैं हृदय की हर कामना पूरी होती है। चलिए इसी के साथ एक लाजवाब गीत और ये जो गाना है दिल है कि मानता नहीं फिल्म से लिया हुआ गाना है और ये गाना जाएगा लीलो जी की पसंद पर जो खौबुआ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बेटी है आरती, बेटा है सुबिराज, नाती है आविश और साथ है अंशनी। अनुराधा पौडवाल और बाबला मेहता की आवाज़ इस फिल्म में नजर आए थे आमिर खान और पूजा भट्ट।

0: तो दोस्तों, इसी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम का समाप्त करने का समय हो गया है। वैसे हम आप सभी के नामों को जोड़ते हैं। यहाँ पर चांदनी जी हमारे साथ है, चांदनी पुरुषोत्तम ब्रिटानिया से, रेहाना हमारे साथ हैं फिनिक्स से, वाकवा से शहनाज भी जुड़ चुकी हैं, और प्रीति रंजीत आप हमारे साथ हैं, साथ दे रहे हैं गीता दीवान, रागिनी सुखदेव, रेशमा गुलजौ, और साथ है अमृति, राम सहाय, वृंदा मोहंगो हमारे साथ है, बिल्कुल जुड़ चुके हैं
1: आपकी पसंद।
0: विद्या जी आप भी हमारा साथ दे रही हैं यूनियन पार्क से, साथ है आपकी प्यारी बहनें सती, सुरेखा, अमृता, बबीता, सुनीता, बहुत बहुत प्यारा आप सभी को। साधना जी यहाँ पर रिवेदिक खयोल से जुड़ चुकी हैं, आपके पति देवानंद, बेटा है नीतीश, कुशल, करण, बेटी है अनुषा, मनशा, दामाद है सतीश, बहू कविना और संहिता, नाती और नातिन है जिया, तेजल, गौरव, क्रियान, और सबसे छोटा लड्डू गोपाल थश्वी, साथ है जीवन परिवार के वैदिक खयोल से, और साथ दे रहे हैं मोडालबे, यूनियन पार्क, लाहौजा और दुबई से सभी जीवन परिवार, और यहाँ पर नलिनी जोखन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं वाकवा से, आपकी प्यारी मामी अंजनी और मामू विष्णु सभी परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, बंधु परिवार भी साथ दे रहा है इस वक्त त्रियोले से। और ये आखिरी गाना जो है फिल्म मेरे सनम से लिया हुआ, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में नलिनी जी की पसंद पर ये आखिरी गाना हम चलाने जा रहे हैं। चलिए, दिल से आप हमारी प्रॉब्लम्स को भी समझिएगा, बस कोशिश हमारी जारी रहती है, और कहते हैं ना कि भाई एक दो घंटे का सफर बहुत कम लगता है, कोशिश हमारी जारी रहती है कि हम सभी की फरमाइशों को पूरा करें, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी गाना मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में, ये गाना बिल्कुल हमें जोड़ेगा हमारी अगली कड़ी के साथ, यानी 4 बजे के अगले कार्यक्रम के साथ, जहां पर चलेगा कार्यक्रम प्रकाश, और ये कार्यक्रम की प्रस्तुतिकरण की जाएगी श्रीमती अंजू गर्वरन द्वारा। तो प्यार से आप उनका साथ दीजिए, हमें दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे शाम के 5:30 बजे बचपन ऐसा कार्यक्रम में। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ संध्या।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: हिंदी माथे की बिंदी, विश्व भाषा बनी हमारी हिंदी। सुनिए पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश, प्रस्तुति श्रीमती अंजू गर्बरन की।
3: सभी श्रोताओं का हृदय की गहराई से स्वागत करते हैं पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश में। श्रोताओं, हम हिंदी साहित्य को सोच भी नहीं सकते अगर प्रेमचंद को ना पढ़ा हो, और प्रेमचंद जयंती हमने मनाई 31 जुलाई को। पर प्रकाश कार्यक्रम में इसकी चर्चा लाजमी है, क्योंकि ऐसे साहित्यकार की चर्चा सदैव होती रहनी चाहिए। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद की कहानियाँ, कथाएँ और उपन्यास सम्राट की जयंती, जो मैंने पहले बताया 31 जुलाई को थी, उनका जन्म जो था 1880 में हुआ था। और आपका पूरा नाम, मूल नाम अगर कहें तो धनपत राय श्रीवास्तव था, पर दुनिया और साहित्य प्रेमी उन्हें मुंशी प्रेमचंद से जानते हैं। हम और आप भी खूब साहित्य पढ़ते हैं, और साहित्य में रुचि रखने वालों के लिए प्रेमचंद का क्या महत्व है, प्रेमचंद को पढ़ना कितना अच्छा लगता है, कितने वे हमारे हृदय के करीब हैं। और ख़ास करके जब हम मॉरिशस के परिवेश को देखते हैं तो प्रेमचंद की कहानियाँ हमारे साथ कैसे जुड़ती हैं, ये आप सब जानते हैं। श्रोताओं, तो आज कुछ कहानियों की चर्चा हो जाए इस कार्यक्रम में। उनकी बहुत सारी कहानियाँ हैं, जैसे कि पूस की रात, कफन, ईदगाह, नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा, पंच परमेश्वर और अन्य कहानियाँ हैं, जो कि 300 कहानियों का संकलन, जो संग्रह उनका था वह मानसरोवर नामक संग्रह से जाना जाता है। और उनकी लेखनी समाज के यथार्थ, किसानों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित पाते हैं। श्रोताओं, मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी कफन गरीबी, मानवीय संवेदनहीनता और सामाजिक असमानताओं का मार्मिक चित्रण करती है। कहानी के मुख्य पात्र गीसू और माधव बाप बेटा हैं, बेहद कामचोर और गरीब हैं। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही होती है, लेकिन वे दोनों परवाह किए बिना खेत से चुराए हुए आलू भूनकर खाते रहते हैं। रात में बुधिया की मौत हो जाती है। अंतिम संस्कार के लिए कफन खरीदने हेतु वे गांव के लोगों से पैसे मांगते हैं और 5 रुपये जुटा लेते हैं। वे बाजार जाते हैं, लेकिन कफन खरीदने के बजाय उन पैसों से भर पेट खाना खाते हैं, शराब पीते हैं, मस्त हो जाते हैं। अंत में भूख और नशे के आगे इंसानियत हार जाती है और वे कफन नहीं खरीदते हैं। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने ये संदेश दिया, अत्यधिक गरीबी और अभाव मनुष्य से उसकी संवेदना और नैतिकता छीन लेते हैं। श्रोताओं, जब हम बात करते हैं ऐसी, तो हम ऐसी ही एक और कहानी है जो संवेदनाओं से भरी हुई है। बहुत सारी कहानियां हैं, पर चर्चा कुछ विशेष की हो रही है। ईदगाह मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित हिंदी साहित्य की सबसे प्रसिद्ध और मर्मस्पर्शी कहानियों में से एक है। यह बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक अमर रचना कह सकते हैं। कहानी में एक 4-5 साल का अनाथ बच्चा हामिद और उसकी बूढ़ी दादी अमीना के बीच के प्रेम और त्याग को दर्शाया गया है। हामिद अपनी दादी के साथ रहता है और उसके पास मेले में खर्च करने के लिए केवल 3 पैसे हैं। अन्य बच्चे मेले में खरीदने के लिए खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं, लेकिन हामिद अपनी हर इच्छा को दबाकर दादी के हाथों को जलने से बचाने के लिए 3 पैसे का एक लोहे का चिमटा खरीद लाता है। दादी पहले

ना समझ बच्चे की इस हरकत पर नाराज होती है, लेकिन जब हामिद कारण बताता है कि जब आप रोटी पकाती हैं तो आपके हाथ जलते हैं और चूल्हे के साथ हाथ जलाने को देखकर ही उन्होंने, हामिद ने ये चिमटा खरीदा था, उसका दादी का क्रोध तुरंत स्नेह और आंसुओं में बदल जाता है। तो श्रोताओं, कितना संवेदनशील है कि एक बच्चा अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदता है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में आती है और इसकी चर्चा ना करें तो ठीक ना होगा। एक गरीब किसान है, और जब हम बात करते हैं प्रेमचंद की किसान की, खेतों की, तो वो मॉरिशियस के परिवेश से भी जुड़ती कहानियां पाते हैं हम। तो श्रोताओं, एक गरीब किसान हल्कू की मार्मिक कहानी है, जो कड़ाके की ठंड में अपने खेत की रखवाली करता है। पैसे ना होने के कारण वह ठंड में सोता है, जिससे उसकी फसल नष्ट हो जाती है। इसके बावजूद उसे रात को खेत में ना सोना पड़े, इसकी राहत महसूस होती है। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की ऐसी कहानी है जिसमें पारिवारिक स्थिति और कर्ज जो होता है, हल्कू को अत्यंत गरीब किसान है और उसका जो कर्ज है वो उसके सर पर चोड़कर बोलता है। उसके पास एक छोटा सा खेत है, लेकिन वह कर्ज के जाल में फंसा रहता है। जाड़े, जब पूस की बात कर रहे हैं तो वो सर्दियों के दिन होते हैं, खेतों में रखवाली करने के लिए मजदूरी करके 3 रुपए बचाए थे ताकि वह एक नया कंबल खरीद सके। एक दिन महाजन हल्कू के घर कर्ज के पैसे वसूलने आ धमकता है। हल्कू की पत्नी मुन्नी पहले तो पैसे देने से मना करती है, लेकिन हल्कू बेबस होकर वह 3 रुपए महाजन को दे देता है। खेत में कड़ाके की ठंड जो होती है और बिना कंबल के हल्कू अपने वफादार कुत्ते जबरा को लेकर पूस की रात की कड़ाके की ठंड को सहता है, पर खेत की रखवाली करता है। और नील गायों का हमला हो जाता है उसके खेत पर। जबरा भौंकता हुआ खेत की ओर दौड़ता है, लेकिन हल्कू ठंड और आलस के कारण अलाव के पास से उठने का साहस नहीं कर पाता है। हल्कू गर्म राख के पास चादर ओढ़कर सो जाता है। सुबह जब उसकी पत्नी मुन्नी खेत पर आती है तो देखती है कि सारी फसल नष्ट हो चुकी है। वह दुखी होती है, लेकिन हल्कू इस बात से खुश होता है कि अब अगली सर्द रात उसे खेत में सोना नहीं पड़ेगा। तो सारांश जब बात करते हैं, जो उद्देश्य है कहानी का, वे है कि किसान कितनी कड़ी मेहनत करता है, फिर भी वह अभाव और कर्ज से मुक्त नहीं हो पाता है। अंत में निरंतर शोषण और गरीबी से तंग आकर किसान की खेती से भी आस्था मगाने लगती है। तो ऐसी ऐसी कहानियां हम प्रेमचंद की पाते हैं, जहां हमने पूस की रात की तो बात की, 2 बैलों की कथा, जो जानवरों और इंसानों के बीच के गहरे प्रेम और स्वतंत्रता के संघर्ष की प्रसिद्ध कहानी है। नमक का दरोगा कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की जीत पर आधारित कहानी पाते हैं। पंच परमेश्वर न्याय, निष्पक्षता और मित्रता के आदर्श को स्थापित करने वाली कहानी पाते हैं। संयुक्त परिवार के महत्व और आपसी प्रेम को दर्शाने वाली कहानी है बड़े घर की बेटी। बुजुर्गों की अपेक्षा और उनके प्रति परिवार की संवेदनहीनता का चित्रण करने के लिए कहानी जब पढ़ते हैं, वे है बूढ़ी काकी। और छुआछूत और दलितों के शोषण की समस्या को उजागर करने वाली कहानी है ठाकुर का कुआं। सवा शेर गेहूं, धर्म के नाम पर शोषण और कर्ज के जाल में फंसे किसान की पीड़ा को दर्शाती है। तो ऐसी ऐसी मार्मिक कहानियां हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखी गई हैं। अब हम आते हैं, उपन्यासकार हैं वे, बड़े ही सही मुद्दों को लेकर उनकी लेखन बहुत ही सटीक रही, यथार्थवादी रही, जो मध्यम वर्गीय समाज को दिखाने की प्रवृत्ति, आभूषणों के प्रति लगाव और नैतिक पतन का मार्मिक चित्रण

0: करती है वे कहानी है गबन। जालपा जो है वो नायिका है। बचपन में ही गहनों का उसको बहुत ही शौक होता है। उसकी शादी रामनाथ रमा से होती है जो एक साधारण क्लर्क है। जालपा को लगता है कि उसका पति बहुत अमीर है। अपनी झूठी शान को दिखाने और पत्नी को खुश करने के लिए रामनाथ अपनी क्षमता से अधिक महंगे गहने बनवा लेता है जिसके कारण वह भारी कर्ज में डूब जाता है। कर्ज चुकाने के दबाव में आकर रामनाथ अपनी नौकरी के सरकारी पैसों का गबन या घोटाला कहें कर लेता है। पर इसी स्थिति में जब ये बात खुलने का समय आता है तो पकड़े जाने के डर से वह अपनी इज्जत बचाने के लिए घर बार छोड़कर कलकत्ता भाग जाता है। कलकत्ता में रामनाथ को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। वहाँ वह वैशालय में रहने वाली एक महिला जोहरा के संपर्क में आता है। अपराध बोध में डूबा रामनाथ अपनी पहचान छिपा कर रहने लगता है और बाद में पुलिस का मुखबरी बन जाता है। मुखबरी कहें तो जासूस बन जाता है। इस दौरान वह स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ झूठे गवाह और साक्ष्य तैयार करता है जिससे उसका नैतिक पतन और बढ़ जाता है। पति के अचानक गायब हो जाने के बाद जालपा को अपनी गलती का एहसास होता है। वह गहनों के प्रति अपना मोह त्याग देती है। वह रामनाथ की तलाश में कलकत्ता पहुंचती है जहां वह एक मजबूत और आत्मनिर्भर नारी के रूप में उभरती है। वहीं उससे अपने पति की करतूतों की बात पता चलती है। पति के अचानक गायब हो जाने के बाद जालपा अपनी गलती का एहसास तो करती है, वह गहनों के प्रति अपना मोह भी त्याग देती है। अंत में रामनाथ को अपनी गलतियों का गहरा पछतावा होता है और वह सच्चाई स्वीकार कर लेता है। जालपा उसे माफ़ कर देती है। उपन्यास का अंत गांधीवादी विचारों से प्रभावित होता है जहाँ सभी पात्र अपनी गलतियों से सीख कर एक सादा नैतिक और अहिंसक जीवन बिताने का संकल्प लेते हैं और गंगा के किनारे एक छोटे से समुदाय में बस जाते हैं। सोचिए प्रेमचंद की कहानियों में गांधी का प्रभाव और किसानों का प्रभाव कितना पाया जाता है कि वे कहीं भी होते हैं उनमें ये मार्मिक दृश्य पाया जाता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं, ऐसे बहुत से साक्ष्य हम पाते हैं जहां प्रेमचंद के को अपने करीब पाते हैं हम, जब वे हमारे हम उनका लेखन पढ़ते हैं, उनकी कहानियां पढ़कर हम बड़े हुए हैं। श्रोताओं, आप भी इन कहानियों से क्या सीख पाते हैं? क्योंकि हमारा जो परिवेश है, कृषि प्रधान देश में रहते हैं, खेतिहर कितना काम करते हैं, कितना संताप सहते हैं, और हमारे पूर्वज जो इस देश में आए थे वे भी तो कितना दुख सहकर खेतों में काम कर कर आगे बढ़ पाए। आज हम बहुत अच्छा जीवन बिता पा रहे हैं, ये उनकी करनी है कि आज हम ऐसा सुखमय जीवन बिता रहे हैं। पर साहित्य में प्रेमचंद को पढ़कर जो आनंद मिलता है उसका आनंद आप भी उठाएं। प्रकाश कार्यक्रम में हम प्रेमचंद जयंती को की बात कर रहे हैं, 31 जुलाई को हमने मनाई। लगातार जो हम श्रद्धा सुमन उनको अर्पित कर सकते हैं वे उनकी कहानियों को पढ़कर समझकर आगे बढ़ते रहने का ही एक संदेश देता है। श्रोताओं, प्रकाश कार्यक्रम में आज इतना ही। डोमिनिक ने हमारा साथ दिया आप तक ये कार्यक्रम पहुंचाने के लिए, उनको भी आभार प्रकट करते हैं। एक अन्य कार्यक्रम में और चर्चा लेकर आएंगे हिंदी साहित्य के बारे में, हिंदी जगत के बारे में। कुछ भी ऐसा हो घटित तो आप भी इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। आप भी हमारे साथ कुछ अच्छा कुछ अधिक बांट सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। शुभ संध्या।
1: अभी आप सुन रहे थे पाक्षिक कार्यक्रम प्रकाश श्रीमती अंजू गर्वरन की प्रस्तुति में।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग हमेशा रहेगी।
1: बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा, बचपन ऐसा मीठा मीठा प्यारा प्यारा। एमबीसी रेडियो आपके साथ।
2: हेलो दोस्तों, रेडियो मॉरिशस की लहरों पर बचपन ऐसा कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी प्यारे प्यारे श्रोताओं का हम दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्ना, आप पहुंची हूँ बचपन ऐसा कार्यक्रम में। बिल्कुल बचपन ऐसा ये जो कार्यक्रम है, हम बचपन की यादों को ताज़ा भी करते हैं और आज की हमारी जो यंग जनरेशन है, बिल्कुल हम उनकी बातों को भी समझकर लिंक करते हैं, ब्रिज करते हैं इस जनरेशन गैप को। हम हमेशा कहते हैं कि भाई जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है या फिर फॉर एग्जांपल आपके जो माता पिता है उनके ज़माने में जो बातें हुआ करती थी या दादी नानी के ज़माने में जो बातें हुआ करती थी वो आज के ज़माने में लागू नहीं पड़ती है ना। बिल्कुल आप ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन देखा जाए तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो लिंक ज़रूर करती हैं। अब जैसे हमारे ज़माने में, यानी हम पहले के ज़माने की बात करते हैं, हो सकता है कि आपके मम्मी पापा के एज की बात करें, तो उस ज़माने में हम प्रश्न नहीं पूछा करते थे। हमारे माता पिता जो हमें कहते थे हम उसकी आज्ञा का पालन करते थे। पर आज की आपकी जो नई ये जनरेशन है, या हम कह सकते हैं जो जेंजीज है, बिल्कुल आज यूं ही बातों को सुनकर स्वीकार नहीं करते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि पहले के ज़माने में जो हमें कहा जाता था हम उतना प्रश्न नहीं पूछते थे। पर आज की जो पीढ़ी है वो हमें सवाल पूछती है कि अगर ये नहीं करना है तो हमें क्यों नहीं करना है, और अगर करेंगे तो क्या होगा। बिल्कुल ये एक क्यूरियोसिटी लेवल वाला क्वेश्चन है और इसका उत्तर हमें जानना उतना ही आवश्यक है जितना हमारे जेंजीज जानना चाहते हैं। सही कहा या नहीं? तो चलिए आज के इस सफर में कुछ ऐसी ही बातों के साथ लाजवाब प्रोग्राम को नए पुराने दोनों प्रकार के गाने आपके लिए हम सजाएंगे बचपन ऐसा कार्यक्रम में।

हमारे प्यारे दोस्तों, आप हमारा साथ दे रहे हैं, बस यही आशा रखते हैं। अभी तो वेकेशन चल रहा है और वेकेशन में बहुत सारे ऐसे हैं जो ट्यूशन वगैरह, साथ ही साथ एग्ज़ाम्स की तैयारियां, यानी जो थर्ड टर्म है उसकी तैयारियां, जो आपका आखिरी सेमेस्टर है उसकी तैयारियां, एग्ज़ाम्स की तैयारियां, तो बेशक एग्ज़ाम्स की तैयारियां भी जारी रहें और इस आधे घंटे सफ़र में, आधे घंटे के सफ़र में एक छोटा सा ब्रेक भी आप ले सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे गीतों के साथ। दोस्तों, हम कहते हैं ना, सीखते तो सभी हैं, पर सुनकर सीखना, सीख कर उसे समझना और समझ कर उसे जीवन में उतारना ही सबसे फायदेमंद कहलाता है। पर कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में सुनी हुई कुछ ऐसी बातें हैं जो हम बिना वजह

उन बातों को आधा सुनते हैं और फिर बहस में उलझ जाते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है कि आप मोबाइल में बिजी थे और मम्मी ने आपको कोई काम दिया और आपने शायद आधी ही बात सुनी हो या फिर सुनी ही ना हो और हो जाती है बहुत बड़ी लड़ाई। पर सच में देखा गया है कि आधी बात सुनना भी तो डेंजरस होता है। अगर आपकी मम्मी ने आपको कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला काम दिया है और अगर आपने उसे सुना नहीं और कुछ व्यर्थ काम में आप अपने आप को समय गंवा रहे थे, तो ये भी एक डिस्प्यूट का कारण बन सकता है, प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। सो मेक श्योर कि आपकी मम्मी या आपके बड़े जो है घर में अगर कुछ कहते हैं तो थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा समय निकाल कर सुन लीजिए कि वो क्या कह रहे हैं।

दोस्तों, आज की जो जनरेशन है ना, वो बहुत ही लाजवाब जनरेशन है, क्योंकि झुकने का नाम नहीं, रुकने का नाम नहीं, पर फिर भी कई बार प्रॉब्लम्स वाली सिचुएशन में कई बार सॉरी भी नहीं बोलती या फिर अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी नहीं करती। तो ये भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को बढ़ाने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो सॉरी बोलना सीखना ये बहुत ही आवश्यक है। सॉरी बोलना या फिर अगर किसी से गलती हुई हो उन्हें माफ़ करना, ये भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर मम्मी पापा से कोई गलती हो जाती है, जैसे आपसे अगर गलती हो जाए तो मम्मी पापा आपको माफ़ कर देते हैं, उसी प्रकार से भाई हमसे अगर कोई गलती हो जाए

साथ ही साथ माफ़ी मांगने की भी हिम्मत हमें रखनी चाहिए। ये भी एक तरह से आपके और आपके पेरेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे बहुत स्वीटनेस के साथ जोड़े रखता है। सो ऑलवेज अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स और हमेशा एक दूसरे का साथ निभाते हुए बचपन ऐसा कार्यक्रम है। बहुत ही मज़ेदार गीतों का ये सफ़र आपके लिए हम लेकर आते हैं।

So, दोस्तों बचपन ऐसा कार्यक्रम में आज हमने की कुछ ऐसी जेंजीज वाली बातें जो आए दिन हर घर में प्रॉब्लम्स के साथ आती तो हैं पर इसका सलूशन हम ढूंढ नहीं पाते। वैसे देखा जाए तो हर प्रॉब्लम अपने सलूशन के साथ ही आता है। बिल्कुल, फिजिक्स और केमिस्ट्री का लॉ आपने तो देखा ही होगा, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। और कहते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल रिएक्शन। सो इसी तरह से अगर हम झगड़ा करेंगे तो प्रॉब्लम्स बढ़ेगी, पर अगर हम माफ करेंगे, एक दूसरे का प्यार से साथ निभाएंगे, एक दूसरे को समझेंगे, तो प्रॉब्लम्स बढ़ने के बजाय प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी। मानते हैं ना इस बात को? सो होप कि आज का ये सफर आपको पसंद आया होगा और अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इस छोटी सी दुनिया में, इस छोटे से सफर में जिसका नाम है बचपन ऐसा कार्यक्रम रत्ना के साथ। तो इसी के साथ टाइम टू से गुड बाय। आशा करते हैं कि आज की ये शाम बहुत ही प्यारी सी बीतेगी आपकी, और इसी के साथ फिर मिलेंगे चलते चलते। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना पूरा ख्याल रखिए। Goodbye and have a beautiful evening ahead.

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: नमस्कार, आदाब, शाम के 6 बजे है। पेश हैं समाचार बुलेटिन। सबसे पहले आज की बड़ी खबरें। वेरोनिक लुगोविन जूनियर कला एवं संस्कृति मंत्री की हैसियत से स्टेप डाउन कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने उनसे उनके पति गुलशन गोविन की गिरफ्तारी के चलते ये फैसला लेने की मांग की। अनाबेल सावाबादी, टोनी अपोलों और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बन गए हैं। आज स्टेट हाउस रिजवी में अनाबेल सावाबादी और टोनी अपोलों ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मॉरीशस अधिक आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। उत्तरी क्षेत्र के खेतीहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। और विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच जंग बंदी की संभावना उभर रही है, लेकिन ईरान अमेरिका से बात करने से इनकार कर रहा है। नमस्कार और आदाब। प्रधानमंत्री ने कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वेरोनिक लुगोविन से अपने पद से स्टेप डाउन करने की मांग की। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन वेरोनिक लुगोविन के पति की गिरफ्तारी के कारण राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं, इसलिए ये फैसला लिया गया है। अनाबेल सावाबादी, टोनी अपोलों और कारेन फुक्यून नए जूनियर मंत्री बने हैं। आज स्टेट हाउस रेजवी में टोनी अपोलों और अनाबेल सावाबादी ने राष्ट्रपति धर्मवीर गोकुल के सामने शपथ ली। चुनाव क्षेत्र नंबर 1 ग्रैंड रिवर नॉर्थ वेस्ट और पोर्टवी वेस्ट अनाबेल सावाबादी नई जूनियर मंत्री बन गई हैं। मेबर्ग और प्लेन मानियों के सांसद टोनी अपोलों को खेल मंत्रालय का सह संचालन करने की जिम्मेदारी मिली है, जबकि चुनाव क्षेत्र नंबर 20 बुबासें पिची त्रिविया की सांसद कारेन फुकुन स्पोर्ट्स मंत्रालय की जूनियर मिनिस्टर से जूनियर पर्यावरण मंत्री बनी हैं।
2: आई जिल्बेर टोनी अपोलों डू स्वेयर दैट आई विल बी फेथफुल एंड बेयर ट्रू एलिजेंस टू मॉरीशस अकॉर्डिंग टू लॉ।
3: Marie Annabelle Andelana Savabadi, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Mauritius according to law. So help me God.

0: इस समारोह के बाद प्रधानमंत्री ने प्रेस के सवालों का जवाब दिया। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने, हम आपको बता रहे थे कि कला एवं संस्कृति मंत्रालय की जूनियर मंत्री वेरोनिक लेगोविन से अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने पुष्टि की कि अगरचे उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन उनके पति गुलशन गोविंद की गिरफ्तारी के कारण ये फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री को सुनते हैं।
1: Mais seulement perception du monde, pourquoi tu as l'air de. À cause ça, je me causais. Mais bon, je me suis causé, ils ont dit une step down.
2: Une fille step down?
1: Oui, une fille step down.
3: Le passé, c'est par contre pour Véronique Legovin ou pour m'aider quelqu'un à la base?
1: Non, parce qu'il lit, toujours, il n'a pas besoin de violence, il n'a aucun prêt contre lui. Mais le fait qu'il y ait l'enquête, il y a une sentie qui est meilleure step down. Aussi, mon dieu.
0: गुलशन गोविंद आज ब्लैक रिवर की अदालत में पेश हुए। उन पर दो अस्थाई इल्ज़ाम दर्ज हैं, एक गांजे के आयात की साजिश के लिए और गांजा उगाने के लिए। पुलिस ने उनकी रिहाई पर आपत्ति जताई है और अब वे आते 10 तारीख तक पुलिस हिरासत में ही रहेंगे। इस मामले के दूसरे संदिग्ध की भर्ती क्लिनिक में की गई। आजू और रेन्यून टापू के औंसी स्टुपेफियों दफ्तर इस मामले में सहयोग दे रहे हैं। गए शुक्रवार को उन्हें गिरफ्तार किया गया। ये शक है कि वे रिंजन टापू और मोरशस के बीच 100 किलो गांजे की तस्करी के जुर्म से जुड़े होंगे। काविन तापे 100 करुणा लालू।
4: दोपहर को गुलशन गोविंद को आजसू के वेस्टर्न डिवीजन के अधिकारियों की सुरक्षा में रिवियनवा अदालत में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट प्रशांत बिसुन के समक्ष मामले के जाँच अधिकारी ने तथ्यों को पेश किया। आरोपी के खिलाफ 2 अस्थायी आरोप दर्ज किए गए हैं, कैनाबिस आयात करने का षड्यंत्र और कैनाबिस की रोपाई। गुलशन गोविंद पर रीनियन में 156 किलो कैनाबिस मॉरिशस लाने की साजिश रचने का आरोप है, जिसकी लागत का अनुमान 234 मिलियन रुपए का है। मॉरिशस के लिए निर्धारित ये खेप 26 जुलाई को भापानो रीनियन में जब्त की गई थी। दूसरे आरोप के तहत शामागल स्थित उनके घर की छत की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर 7 से 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले 4 कैनाबिस के पौधे बरामद किए गए, जिनकी लागत 20,300 रुपये की होगी। गुलशन गोविंद ने पुलिस को बताया कि ये केवल उनके व्यक्तिगत उपयोग के लिए थे। घर से बरामद मेटाडोन की एक शीशी के संबंध में उन्होंने पुलिस को बताया कि उन्होंने नशे की लत से बाहर निकलने के प्रयास में ये दवा प्राप्त की थी। जांच के लिए उनके वाहन को भी सुरक्षित रखा गया है। पुलिस फिलहाल सेफ सिटी कैमरों की फुटेज की जांच कर रही है, ताकि उनकी गतिविधियों और आवाजाही का पता लगाया जा सके। पुलिस ने दोनों मामलों में गुलशन गोविंद की जमानत का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि उनके फरार होने या गवाहों को प्रभावित करने की आशंका है। उनको पुनः मुका डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
0: अन्य खबरों में, खाद्य क्षेत्र के लिए हर साल 60 बिलियन रुपए से ज्यादा पैसे लगते हैं। मुर्शस अधेका आत्मनिर्भरता के सिलसिले में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ रहा है। बजट 2026-2027 में ऐलान 25x35 परियोजना का मकसद सन 2035 तक देश की खाद्य जरूरतों का कम से कम 25% उत्पादन स्थानीय स्तर पर ही करना है। कृषि जमीनों को ढूंढना, रणनीतिक रिजर्व्स की मजबूती और इलाकाई सहयोग लाकर अधिकारी मुर्शस में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए नए तरीके अपना रहे हैं। अब्देल बुलाकी की रिपोर्ट पर गीता सुनारन का विवरण।
5: मॉरिशस के खाद्य आयात पर होने वाला खर्च लगातार बढ़ रहा है। साल 2024 में ये 57 बिलियन रुपए था, जो 2025 में बढ़कर 61 बिलियन रुपए हो गया। देश से बड़ी मात्रा में पैसा बाहर जाने से रोकने और देश की खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए बजट 2026-2027 में 25x35 परियोजना की घोषणा की गई। इसका लक्ष्य है 2035 तक देश की खाद्य आवश्यकताओं का कम से कम 25% स्थानीय स्तर पर उत्पादन किया जाए। शुक्रवार को इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेजर्स बिल पारित होने के बाद इस राष्ट्रीय योजना की जिम्मेदारी फागई को सौंपी जाएगी। सरकार ने 2035 तक खाद्य उत्पादन के लिए इस्तेमाल होने वाली कृषि भूमि को बढ़ा

0: कर 25,000 बीघा करने का लक्ष्य रखा है। इस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए भूमि उपलब्ध है। अल्टियो प्रॉपर्टी के सीईओ डेविड मशाल कहते हैं,
1: il faut essayer de voir comment est-ce qu'on peut tirer la meilleure utilisation des terres à Maurice entre bien sûr les principales cultures comme la canne à sucre, l'utilisation des terres marginales qui sont unused, il y a quand même beaucoup de terres qui ne sont pas utilisées aujourd'hui à Maurice, et tous les enjeux de la diversification agricole pour que ce soit sustainable à Maurice.
0: ये योजना अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों को भी ध्यान में रखती है, विशेष रूप से मध्य पूर्व और यूक्रेन में जारी संघर्ष मॉरिशस की खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। इसी कारण कुछ विशेषज्ञ कृषि के लिए मार्शल प्लान लागू करने और क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने का पक्ष ले रहे हैं। अपेक के अध्यक्ष सत्यदेव तेंगाव कहते हैं,
2: aujourd'hui secteur privé, gouvernement, petite et moyenne entreprise, coopérative, si joignent tous ensemble pour un Marshall Plan, un plan d'avenir pour nous capables d'épanouir nous-mêmes pour nos alimentations. Mais ce qui vise, c'est l'imagination, l'innovation et suffisamment de finances pour capable coordonner tout ce travail-là. Alors Maurice, avec son bon voisin, surtout Madagascar, qui est un grenier de sa région-là, nous capables de travailler ensemble et nous avons un produit capable de très meilleur marché, nous pouvons un système compétitif.
3: Quand on parle d'insécurité alimentaire, c'est qu'on parle également du capital humain. Donc derrière tout ça, il faut également travailler sur le capital humain pour que plus on est soudé, plus on peut se battre, plus nous pourrons gagner ensemble.
0: इलाके के खाद्य सुरक्षा के संभावित केंद्र के रूप में उभरने के बीच विदेश मंत्रालय में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पूर्व निदेशक डॉक्टर सुनील बुधू ने मॉरिशस में एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग क्षेत्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। वे बताते हैं,
4: pense pour la création d'un agricultural processing zone. C'est un nouveau concept et qu'étant donné que nous avons un accord commercial au niveau de l'Afrique avec plusieurs pays et l'Afrique où on a une abondance de produits agricoles et que mon pensée nous capable faire une chaîne de valeur entre Maurice avec un pays dans la région. Nous amène ce produit là, nous transforme ça. Quand nous capable faire ça, vraiment nous capable faire Maurice vin une destination de processing.
0: बजट के पारित होने से कृषि क्षेत्र में विदेशी श्रमिकों की तेज भर्ती का रास्ता भी खुल गया है। साथ ही देश की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एसटीसी द्वारा एक नेशनल फूड रिजर्व स्थापित किया जाएगा।
5: उत्तरी क्षेत्र के खेतिहरों का कहना है कि वो एक मुश्किल हालत का सामना कर रहे हैं, फिर भी अभी के लिए वो संचालन कर पा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त दाम लग रहे हैं। गन्ने के किसानों के मुताबिक पिछले नवंबर महीने से कम जल आपूर्ति के चलते उत्पादन पर असर पड़ा है, इसीलिए वो लंबी अवधि के लिए सिंचाई योजना की मांग कर रहे हैं। कुणाल डोजी ने उनसे मुलाकात की, विवरण करुणा लालू का है।
6: उत्तरी प्रांत के खेतों में अब सप्ताह में केवल 2 दिन ही पानी की आपूर्ति की जा रही है, यानी कुल मिलाकर 10 घंटे से भी कम। ये CWA द्वारा लागू कदम है। यहाँ त्रियोली में किसान वैकल्पिक उपायों का सहारा ले रहे हैं। प्लास्टिक के बड़े ड्रम पानी के भंडारण के लिए एक व्यवहारिक समाधान है, रामदेव झिंगुरी ने कहा।
7: Arroser, nous peut mettre médecine. Une fois additionnel seulement, qui peut faire? Si vous ne pouvez pas mener, pas vous arroser, pas vous gagner.
6: यहाँ लगभग 100 मीटर दूर सहाय चंद्रलाल आशावादी नजर आते हैं। सीमित जलापूर्ति के बावजूद उन्होंने अपने खेत का सफलतापूर्वक प्रबंधन किया। टमाटर की फसल इस वर्ष अच्छी रही है। इस सफलता का एक प्रमुख कारण ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, जो पानी की कमी के बीच सिंचाई का एक प्रभावी तरीका साबित हुई है।
7: À partir d'aujourd'hui, une gagne renseignement qui pour gagner 3 jours de l'eau par semaine, 3 heures temps. Mais enfin, il pas suffit, mais toujours nous pour faire plantation à vivre.
6: वहीं महेंद्रनाथ सिबालत ने भी बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेती में बदलाव कर एकल फसल की जगह अंतर फसली खेती अपनाई।
8: Supposé ministre de pas gagner droit m'arroser. Parce que j'ai dit les fous, bon. Nous plantons que nous pouvons faire. Parce que nous plantons des églises carreaux. Mais des églises carreaux, on peut dire, on a si beaucoup de distance, mais la prochaine fois, planter là qui pouvons faire. Combien de jours ils parlent comme ça? que tout ça déroule.

0: Puis tombé là, tout ça de la perte de la mer. Et ce qui est fait, provision pour ramasser de l'eau.
1: Northern Plain Irrigation Project की शुरुआत वर्ष 1979 में हुई थी। लगातार जल की कमी के चलते किसान अब इस परियोजना का वैज्ञानिक आधार पर पुनर्मूल्यांकन चाहते हैं, खासकर भूजल संसाधनों पर शोध और उनके बेहतर उपयोग के लिए नए निवेश के साथ।
2: आज तमिल समुदाय में आदि मासम की एक विशेष तिथि है। सभी तमिल दंपति आदि पेरिनतम पेरुकुवीजा मना रहे हैं। ये पर्व विवाहित जीवन के वचनों और संकल्पों को दोहराने का मौका होता है। इस अवसर पर पति अपनी पत्नी के गले की ताली बदलता है और मौके पर विशेष प्रार्थनाएं भी की जाती हैं। कोयल सितल की रिपोर्ट पर ये विवरण।
3: 34 साल पहले इंदिरेन और नालिनी कोपेन ने शादी के बंधन में बंधकर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन दिया था। इस सोमवार को उसी भावना और सादगी के साथ उन्होंने अपने वैवाहिक वचनों को फिर से दोहराया। वही हाल ही में विवाह करने वाले पुवानी और त्रिशैन आमांजुलू ने ये पवित्र रस्म पहली बार निभाई।
4: Tout bas nouveau et nouvelle mariée qui a ma parachati de nous aide beaucoup bénédiction. Comme nous premier Adi, le Kundu, c'est nous maman qui offert nous le premier cadeau.
5: Maman souhaitait que tout le temps reste bien ensemble, tout le temps, et tout passe bien entre nous.
3: Sri Govindarajan Payanyan dit kehte hain.
6: Cette cérémonie, il y a trois phases. Nous rendons hommage à la déesse. Le Gange, ça veut dire Ganga. Et deuxièmement, c'est aussi pour l'agriculture. Un agriculteur commence à planter. Et troisièmement, c'est la famille maintenant. La famille que ben, je ne coupe, je te sens, je te la côte que je fais dans ce mariage.
3: Mauritius Tamil Union qui adhèrent, Rajesh Raman, kehte hain.
7: Des années en années, nous faisons la cérémonie. Et nous prions aussi pour tout ben couple qui reste en harmonie dans cette ménage. En même temps, c'est comme bénédiction de parents.
3: Et Ben Sahid, desh ke kai ilakon mein dampatiyon ne is pavitra bandhan ka navinikaran kiya. Ye ek aisa dharmik anushthan hai jiska uddeshya pati patni ke rishte ko aur mazboot banana tatha unke vaivahik jeevan mein nayi urja aur nayi shuruaat ka sanchar karna hai.
2: आज अगर सर अब्दुल रजाक मोहम्मद होते तो 120 साल के होते। गणराज्य के पुराने उपराष्ट्रपति रऊफ बंधन की पहल पर मुस्लिम यूथ फेडरेशन के सहयोग से पोटलवी में मॉरिशस की आज़ादी के बानी को खराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गवाहियों किताब और उनकी नस्ल की हाजिरी में सर अब्दुल रजाक मोहम्मद की छोरी विरासत पर रोशनी डाली गई, जिनकी आज भी उनकी तीन नस्लें पैरवी कर रही हैं। कॉमनवेल्थ खेलों का अगला संस्करण भारत में लगाया जाएगा। इस साल हमारे एथलीटों ने मॉरिशस के लिए 4 मेडल्स जीते हैं। ग्लासगो में हमारे देश के लिए नया इतिहास रच दिया गया। रेमी फेये को जूडो में गोल्ड मेडल और पैरा एथलेटिज्म में नोएमी अल्फोंस को 2 चांदी पदक और बॉक्सिंग विधा में मैवी निकलिया को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ये अगली रिपोर्ट सुनिए।
8: Please observe the lowering of the Commonwealth sports flag.
1: 10 खेल विधाओं में 11 दिनों तक चली रोमांचक प्रतिस्पर्धाओं के बाद रविवार शाम 23वें राष्ट्रमंडल खेलों का भव्य समापन हुआ। इस अवसर पर खेलों से जुड़े सभी प्रतिभागी, अधिकारी और स्वयंसेवक अंतिम बार एक मंच पर एकत्र हुए।
9: I proclaim Glasgow 2026 closed.
1: खेलों के समापन की आधिकारिक घोषणा प्रिंस एडवर्ड ड्यूक ऑफ एडिनबरो ने की। समापन समारोह रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजा रहा

0: प्रसिद्ध बैंड सिंपल माइंड्स के साथ साथ कई अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। समारोह का सबसे भावुक और महत्वपूर्ण क्षण राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज भारत के अहमदाबाद शहर को सौंपना रहा, जो 2030 में होने वाले 24वें कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी करेगा।
1: इंडिया वेलकम्स द वर्ल्ड टू कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद 2030।
0: समारोह के दौरान बॉलीवुड के प्रसिद्ध कलाकार शंकर महादेवन और रश्मिका मंदाना सहित कई भारतीय कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और दुनिया भर से आने वाले राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों एवं दर्शकों को 2030 के खेलों की एक झलक दिखाई।

विदेश में पाकिस्तान की स्वात वादी के उत्तर पश्चिम के कबल शहर में एक आत्मघाती बम हमला हुआ। 14 लोग मारे गए हैं, जिनमें 5 पुलिस अफसर शामिल थे। उस जगह सैन्य हिंसा के खिलाफ एक प्रदर्शन चल रहा था। इजिप्ट में 5 अंकों की तीव्रता वाला जलजला पेश आया। सुबह 3 बजे के करीब ये भूकंप सुएज बंदरगाही शहर से 36 किलोमीटर की दूरी पर उत्पन्न हुआ। इजिप्शियन रेड क्रेसेंट ने कहा कि उसने आपात रेस्पॉन्स योजना सक्रिय कर दी है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सेओल में निहायत शदीद गर्मी महसूस की जा रही है। कई शहरों में तापमान बहुत उच्च दर्ज हुआ। जापान में भी 44 डिग्री सेल्सियस का तापमान है और इसराइल में भी तेज गर्मी से आम जिंदगी प्रभावित है। उधर अमेरिका और ईरान के बीच जंग बंदी की नई संभावना उभर रही है। ईरान ओमान से बात कर रहा है, लेकिन अमेरिकी पक्ष से फिलहाल बातचीत करने से इनकार कर रहा है।

और अब करते हैं मौसम की बात। पूर्व से आ रहे कुछ बादल स्थानीय मौसम पर असर कर रहे हैं और मस्करिंस के दक्षिण में एक जोरदार एंटी साइक्लोन विकसित हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे इलाके में काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। अगले 24 घंटों के लिए मौसम की पेशगोई, आज रात बादल घिराएंगे और सेंट्रल प्लाटू तथा पूर्व में रह रहकर बारिश होगी और बाद में मौसम अच्छा होगा। कल बारिश होती रहेगी, खासतौर पर पूर्व के एक हिस्से पर और सेंट्रल प्लाटू में। हवा 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूर्व की तरफ से चलेगी, जिसके तेज झोंके चंद इलाकों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। लगूनों के उस पार समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण में 3 मीटर वाली ऊंची लहरें उठेंगी, इसी वजह से दक्षिणी लगूनों में न जाने की दरखास्त है। तापमान सेंट्रल प्लाटू में न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 22 से 24, साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह 6:38 पर सूरज उगेगा और शाम को 5:53 पर सूरज ढल जाएगा।

0: तो अभी के लिए बस इतना ही। आप तक ये बुलेटिन पहुंचाने में हमें फ्रेंच और समाचार विभाग और हमारे तकनीकी साथी फैजान नूरदाली की मदद मिली है। आपके ध्यान के लिए बहुत शुक्रिया। एमबीसी के साथ जुड़े रहिए, थोड़ी देर में आप शोक समाचार सुन पाएंगे। नमस्कार और आदाब।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: अवेन्यू कैस्केट पल्मा कैथोबोन में 60 साल के 60 ईयर्स ओल्ड श्री रविकांत अजूदा जो फुंडन के नाम से ज्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल ढाई बजे इनके घर अवेन्यू कैस्केट पल्मा कैथोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पल्मा की शमशान भूमि ले जाई जाएगी।

0: MBC Radio 24 hours a day.
1: सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। बुधवार 5 अगस्त 2024 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 4 बजे तक फ्लैट सनासी और आसपास के इलाकों में अफसायद हुसैन पायुत फेनिक्स और आसपास के इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और कल मंगलवार 4 अगस्त सुबह 9 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक रॉयल रोड पीतो और आसपास के इलाकों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना दिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी और सीबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: कांइचे गंगेश्वरनाथ शिवालय सभा द्वारा 1 अगस्त से 9 अगस्त तक अग्नि पूरण कथा का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम 6 बजे से पूजा, कीर्तन, भजन और 7:30 बजे से कथा, प्रवचन एवं आरती का कार्यक्रम होगा।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो।
1: बजले प्रभु का नाम, रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।

सप्रेम वंदन श्रोताओं, एमबीसी रेडियो मॉरिशस के सभी श्रद्धालु श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं। मैं हूं देविना, आप सुन रहे हैं आध्यात्मिक कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। जहां भगवान का नाम गूंजता है, वहां आशा, शांति तथा आनंद स्वयं आ जाते हैं। श्रोताओं, जीवन की सबसे बड़ी शक्ति धन या बल नहीं, बल्कि ईश्वर पर अटूट विश्वास है। जब प्रभु साथ हो तो कठिन से कठिन राह भी सरल हो जाती है। चलते हैं पहले भजन की ओर।

भक्तों, कहते हैं कि सच्ची भक्ति वही है जो बिना किसी स्वार्थ के प्रभु को समर्पित हो। जब मन निष्ठपथ होकर भगवान का स्मरण करता है, तब भीतर का अंधकार दूर होने लगता है। वैसे कहते हैं जीवन में सुख तथा दुख दोनों आते हैं। सुख हमें विनम्र बनना सिखाता है और दुख हमें प्रभु के और निकट दे जाता है। इसलिए हर परिस्थिति में ईश्वर का धन्यवाद करें, विश्वास रखें कि जो भी होता है वह हमारी भलाई के लिए ही होता है।

आप सुन रहे हैं भजते प्रभु का नाम कार्यक्रम रेडियो मॉरिशस पर। जहां श्रोताओं, सोमवार भगवान शिव का पावन दिन माना जाता है। भोलेनाथ अपने भक्तों की सरल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। सच्चे मन से लिया गया ओम नमः शिवाय का जाप मन को शांति, साहस तथा सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आइए मन ही मन 5 बार बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।

चलिए एक छोटी प्रेरक कथा की ओर। एक संत से किसी ने पूछा, भगवान कहाँ मिलते हैं बाबा? बाबा मुस्कुराए और बोले, जहाँ अहंकार समाप्त होता है तथा प्रेम शुरू होता है, वही भगवान का निवास होता है। इसलिए अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा तथा क्षमा को अपनाइए, यही सच्ची पूजा है।

प्रिय श्रोताओं, आज का यह आध्यात्मिक सफर यही तक। प्रभु करे कि आपके जीवन में सुख शांति, उत्तम स्वास्थ्य तथा समृद्धि बनी रहे। भगवान शिव तथा समस्त देवताओं की कृपा आप तथा आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। अंत में हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, हमें ऐसा मन दीजिए जो सदा सत्य के मार्ग पर चले, ऐसा हृदय दीजिए जो प्रेम तथा करुणा से भरा रहे, और ऐसी बुद्धि दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका स्मरण करती रहे। इसी मंगल कामना के साथ हम लेते हैं अनुमति। शुभ रात्रि, सादर प्रणाम, हर हर महादेव।

मोहतशम सामईन, इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जज्बा है जो दुनिया की हर लज्जत से बेनियाज कर देता है। ये नूर सदियों जमानों को रोशन करता है। ये इश्क कौमों की तकदीर बदल देता है। जो दिल इश्क मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भर जाए वो कभी गुमराह नहीं हो सकता। ये इश्क इबादत को कुर्बे इलाही तक पहुंचा देता है। सामईन, सच तो ये है कि जिस दिल में ये मोहब्बत ना हो वो दिल दिल नहीं होता। इसीलिए शहजादाए आला हजरत मौलाना हामिद रजा खां रहमतुल्लाह अली अपनी एक नात में कहते हैं कि हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े ज़िंदगी पाया नहीं करते जो याद मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
2: भोजपुरी तड़का।
3: नमस्ते, हमनी के सब श्रोता लोग के भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर स्वागत करत हैं। जा आज लेंदी के रात है, आज लेंदी के दिन तोहर बहुत अच्छा से गुजरल हो, यही उम्मीद करत हैं। और इस सप्ताह के आज के हमने के भोजपुरी तड़का के शुरुआत करी जा, और ऐसे में हमने उम्मीद करते हैं जा कि तोहर सेहत अच्छा रही, तोहर दिल बहुत खुश खुश रही, और उम्मीद तोहर मन में हमेशा हमेशा रही। उम्मीद जीवन में हासिल रही त जीवन के एगो अलग सन पहचान रहे, राय खातिर अपन उम्मीद कबो नहीं छोड़िया, उम्मीद के जिंदा रखिए हमेशा, और ये आगे बढ़ते रहिए आगे बढ़ते रहिए। हमने रात्रि में शाम में तोहर खातिर बहुत बहुत उम्मीद लेके आ रही जा कि तोह लोग आराम करत हुई बजा, दिल तोहर बहुत आराम से आज के रात्रि बितावत हुई, और ये उम्मीद करत है जा कि हमने के कार्यक्रम में भी भाग ले बजा, हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का, और भोजपुरी तड़का में अजय कोनो गाना सुने खोज बजा तो बेशक हमने के मैसेज सक बजा भेजे सैंक दे सैंक 7005 पर, यानी कि 5251700005 पर, और जो टेलीफोनी करके हमने से फरमाइश करे खोजवा जा तो बेशक करिए जा 7005 पर 4028085 पर। तो चला संगे संगे ही कार्यक्रम प्रस्तुत करी जा, और पहला गाना तो लोग के आदेश ठाकुर प्रसाद जी के सुनवाओ जा सजनिया।

चला वरिकुत हम इतनी नमस्ते सलाम बोंजू सब बोली जाते हर के गाना उनसे मंगले अवन विष्णु हरि जी के गावल विष्णु हरि जी के गावल ये गाना हमने बजावत है जा छोटी जी की पसंद पर पुलाव जैसे छोटी जी गाना मंगले अवन ललिता जी खातिर प्रभावती जी हरीश जी और आत्माराम जी खातिर

दादा की कहानी, दादी की कहानी, गाजन सिंगारों जी के गावल, ये गाना हमने बजाया था जन वेलफॉन्स के गायत्री जी के पसंद पर, उनकर बेटा अजय खातिर, मायबू के मामी कल्याणी मोहन खातिर, मोताइलों के भाभी शकुंतला खातिर और इन वेलफॉन्स के सखी गीता बाई खातिर।

गासन सिंगारों के गावली गाना हमने पीतों के अमृता जी खातिर भी बजावत है जा परी और सोनिया खातिर उनकर बेटा विशान और पत्तो मीनाक्षी खातिर और बेटी पूनम खातिर

दादा दादी की कहानी तो सुन ली जा, पर एक और जमाना की कहानी सुनब जा, जहाँ पर लाफों ते न लगे कितना कोई मिला तलन जा, प्रेम बाँटा तलन जा, दोस्ती बनाओ तलन जा। यह राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना और ये गाना हमने बजाओ थे जा रवि जी के पसंद पर। लाफलोगा से रवि जी गाना मंगलवान अपन बहन सुनीता के नाम।

और अब चला लक्ष्मी ठाकुर प्रसाद जी के गावाले को गाना, चला सुनी जा। और ये गाना हमने बजाओ थे जा मनीलाल जी के पसीन पर, पिछड़ाफा के मनीलाल जी अपन पत्नी माया के नाम कर ले वानी गाना।

कोरोना महामारी के बारे में तो हमने कबो भुला ही नहीं सका। जाज इतना दुख दर्द सहलक हमने के पूरा संसार एक भुला ही नहीं सकब जा। चलो अभी हमने सुनब जा वीरज सिरदर जी के गावल एगो गाना, और ये वो गीत है जिन मंगले हवन ललिता जी, ललिता जी गाना थियोले से मंगले हवन अपन बहिन लोग खातिर, सुदेवी देवीना ज्ञानी खातिर, छोटी जी प्रभावती जी, आत्माराम जी और हरि जी खातिर, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना और माला राम जवन खातिर।

और अभी चला सुनी जा हमनी लीलो माथुर जी के गावली गीत लीलो माथुर सुकंज गैले हवन बेदर्दी बालमा। और ई गाना हमने से मंगले हवन सुभाष जी और सिनाल से ई गाना मंगले हवन अपन पूरा परिवार खातिर, अपन माता जी रेणुका खातिर और पिताजी विजय खातिर और अपन दादी माँ खातिर।

आतिश भगीरथी जी के गावल गाना सुनत है जा और ई गाना हम दी बजवावत है जा अब्बू जी के पसीन पर अब्बू जी गाना मंगलावन बाकवा से आफेज असलम आयाज जाहिरा रईस काला छोटी खातिर उनका दोस्त अपी खातिर और उनकर पत्नी खातिर और रकीबा खातिर रकीबा जी के सेहत अच्छा हो ई उम्मीद में हो अन्ना अब्बू।

और अब हमने के भोजपुरी तड़का में सुनी जा पूर्णिमा फकीरा जी के गावल दगाबाज बलमा। ये गाना फकीरा परिवार खातिर कल्या चेती परिवार दीपी दयाल परिवार और दसोई परिवार खातिर मंगल हवन पूर्णिमा जी। अपन बेटा प्रवेश और पत्तो कुष्मा खातिर मंगल हवन इंग्लैंड में हवन जा और SSON हॉस्पिटल के उनकर पूरा टीम खातिर।

लीलो माथुर सुकंज के गावली गाना और ई गाना हमनी के माता पिता के नाम बड़ा बुजुर्ग लोग के नाम ई गाना विद्यानंद जी मंगले हवन सब बुजुर्ग लोग के नाम और अपन माता जी के नाम विद्यानंद जी रहलन तेरूज ई गाना हमनी के सब बड़ा जना लोग के नाम करत हवन लीलो माथुर सुकंज के

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का, तड़का।
2: भोजपुरी तड़का में तोहर स्वागत करत हैं। जाओ और भोजपुरी तड़का में अभी कुतन चटनियाँ खाई ला जा, तन चटनियाँ के स्वाद ले ला जा। हमने कि भोजपुरी के स्वाद लेते हैं जा, संगे संगे चटनियाँ के भी स्वाद दे ला जा। मीरा मोहन जी के आवाज़ के गाना है और ये गाना हमने घोघप के सुनीता जी के तरफ से बजावत हैं जा, कुंगुमा के उनकर बहन विमाला जी के नाम।

और अभी कुछ हमनी माँ पर आधारित गाना सुनत है जा गाना सुनीता जी मंगल भवन पर माता जी खातिर सुनीता जी वाकवा ऐसे गाना मंगल भवन पर माता जी खातिर और उनकर माता जी खातिर यानी कि सुनीता जी के नानी जी खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का,
2: भोजपुरी में, भोजपुरी तड़का में तोरा भोजपुरी के सवदवा मिलते हुए औरी इजन खुशबू बा भोजपुरी के संगीत के ओ भी तो हर तक पहुँचते हुए जहाँ हो बा जहाँ हमने के भोजपुरी तड़का में भाग लेवे के हिचकिचाइए जाना ही चाहे मैसेज भेजबा चाहे टेलीफोने करबा तो लोग अपन मर्जी से अपन पसंद के गाना के फरमाइश कर 5251700005 हमने के नंबर हमें साथ भेजे के और हमने के टेलीफोने करे के 4028085 देखना कैसे कंफ्यूज हो जाता है 4028085 हमने के नंबर घर पर टेलीफोने करिया जा और मजे से अपन पसंद के गाना मंगिया जा तो हरे पसंद के गाना हमने चलाओ अब जा अभी गीत गवाही वाला गाना सुनब जा और गीत गवाही वाला गाना गैले हवन बिजमावती संपत जी एकरा सुने खो जाता वन मौदाल बैसे मीरा बाई दरमिया जी गाना मंगले हवन अपन बेटी और अपन दामाद खातिर अपन पति जी खातिर फिर पाद्या परिवार खातिर दमिया परिवार खातिर उनकर गुतनी के 60 बरिस होता उनकर जन्मदिन बा तो गुतनी जी के नाम करत हवन ई गाना सुनीता दरमिया जी के जन्मदिन पर हमने के पूरा टीम तोहरा सुनीता जी बहुत बहुत मुबारकबाद देवता जन्मदिन अभिनंदन

चले माँ बाप की मोल सुनी जा। हमने गीता गजाधर जी की आवाज में गाना हमें से अनीता जिफरी कॉम्फ्लाक से मंगले हवन अपन संगत यालो खातिर इंदिरा श्यामा मीरा सिनांद कविराज साधना मालिनी और कविता खातिर।

वासुदेवा मोहन जी के गावरी गीत, हमने के दादा की कहानी, हमने के दादी की कहानी, यानी कि हमने के पूर्वज लोग की कहानी चला सुनी जाई कहानी हम जी संध्या जी के फरमाइश पर। संध्या जी गाना मंगले हवन पिछित्रिवे ऐसे और ये गाना अपन दादा दादी के नाम करत हवन।

मुकेश जी की गावल, मुकेश चंडी जी की गावल गाना, ये खाले खाले कसम कसम खा के मतलब जो न गलत व्यवहार बा उला निकाली के कसम खाई के बोलत हवन, और ये बात बहुत सही बोलत हवन। ये गाना हमने मुकेश जी खातिर बजावत है जा मुकेश जी रहे लन पिछे गफे, और ये गाना मंगले हवन पर पूरा परिवार खातिर।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का। चलो तड़का लगाएला जा हम नीनी दीनू मीराज के गावल गाना संगी। मीरा दीनू जी गैले हन काहे दिलवा लगाई ले। चला सुनी जा उनकर सिकवा उनकर शिकायत। और ये सिकवा शिकायत हमने सुना था जा कल्याणी जी के पसीन पर। माई बू से कल्याणी जी मंगले हवनी गाना सब सुने होला लो खातिर।

और चलो आगे बढ़ी जगदीश रूपचंद जी के गावली गाना, बड़ी खुशी रह लेन शांति जी गाना सुने के। त्याहूर से शांति जी गाना मंगले हवन दागुचे के अपन पूरा मराठी परिवार खातिर, अप्पा दागुचे के अपन भगीना ओम खातिर, और हमी के सब सुने वाला खातिर।

गावे कितना सुदेश बोईजू जी भी गावत हन, संगे संगे हमनी भी गावब जा मुर्गा मुर्गी के ई प्रेम कहानी ई गाना सुने खोजत हन पालमा से महेन भाई जी। महेन जी गाना दीदी मान खातिर बजवावत हवन और उम्मीद करत हवन कि दीदी मान के पसंद पड़ी सुदेश बोईजू जी के गावल ई गीत।

बहल गौरी जी के गावाली गाना मामा और पापा और अगवा के लेके मापू के उत्तरा देवी के नाम करत है जाई गाना। उत्तरा देवी जी गाना पन बेटा आनंद और आतिश के नाम करत हवन और ये गाना पीतों से अमृता जी मंगले हवन उत्तरा देवी जी खातिर।

10:43 होल बाउरी हमनी के कार्यक्रम 11 बजे लेक चली 11 बजे में अब भी 17 मिनट बाकी बा तो चला तो हर पसीन के गाना हमने चले थे जब 17 मिनट में ख़त्म हुई कार्यक्रम और अभी जन गाना सुने थे जा कल्याणी जी मायबू से मंगले हवानी गाना सब सुने हो लालो खातिर और अपन भगिनी गायत्री जी खातिर नोवेल फ्रांस की गायत्री जी और उनका बेटा अजय खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: नदिया बहल जाला, हमने के जिन इतिहास बा ओकर नदी बहल जाला, नबीन रोशनी जी गैले हवानी गाना, और ये गाना विवेक जी भी सुने खोजत हवन। विवेक जी शुमे घरिये सी गाना सुने खोजत हवन और सुनवाई खोजत हवन अपन पत्नी राधिका के।

परसुआ के पैसुआ के बारे में बात करी जा, परसुआ में पैसा बाकी नहीं बा। चला सुनी जा हमी नंदन सलतू जी से, और नंदन सलतू जी के इगावल गाना उषा जी का थोबोन से मंगल हवन, विना दिया संगीता और मीना के नाम।

आज के भोजपुरी तड़का में हमी के साथ दे लेकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। हमी की कार्यक्रम के खूब शानदार बनैला तुम ही एकर खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। एकर समय पूरा हुआ था, भोजपुरी तड़का के समय पूरा हुआ था, भी 10:55 होल बा 11 लेकर हमी के कार्यक्रम चली और ये अंतिम गाना तो लगे नंदकेश्वर शंकर जी की आवाज़ में सुनवावत हैं। जा ये कार्यक्रम 11 समाप्त हो जाए तो हर रात्रि बहुत शांति से गुजरे यही उम्मीद करते हैं। हम सूर्य खतर से आज्ञा चाहते हैं रात्रि के 11 सुनिए जा गिनीशा की प्रस्तुति में आज के हमने के कार्यक्रम में सुनहरे पल पुराना पुराना गीत के कार्यक्रम आवतला फिर मिलब जा। शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ
3: फिर से एक बार अग्निशा आ गई है आप लोगों का साथ देने के लिए सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार और हमारा प्यार भरा प्रणाम आप स्वीकार कर लीजिए। वैसे देखा जाए तो वक्त बदलता है, लोग बदलते हैं, लेकिन कुछ गीत कभी नहीं बदलते। उनकी जो मिठास है ना, आज भी उतनी ही गहरी है। तो आइए उन अमर गीतों का लुफ्त उठाते हैं सुनहरे पल में रेडियो मॉरिशस पर।

हर गीत के पीछे छुपी होती है किसी ना किसी की मुस्कान, किसी की मोहब्बत और किसी की कहानी। और आज उन सब कहानियों को फिर से जीते हैं पुराने बॉलीवुड गीतों के साथ। पुराने गीत बिल्कुल सिर्फ सुने नहीं जाते हैं, उन्हें महसूस किए जाते हैं। हर सुर दिल को छू जाता है और हर लफ्ज एक नई याद दे जाता है। स्वागत तो हमने आप सभी लोगों का कर लिया और बस उम्मीद करते हैं कि हर एक गीत को आप दिल से महसूस करेंगे आज।

सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

आज की रात होगी यादों के नाम, उन गीतों के नाम जो हर जेनरेशन को एक साथ जोड़ के रख देते हैं। तो चाय की एक प्याली ले लीजिए और शुरू कीजिए यादों का सफर सुनहरे पल के साथ, रेडियो मॉरीशस पर गिनिशा के साथ।

और मुकेश दा का दर्द सब कुछ मिलेगा आज सुनहरे पल में। बिल्कुल जी, यादों के इस पितारे को खोलने का वक्त आ गया है। हर गाना आपको ले जाएगा बचपन, जवानी और जिंदगी की हसीन लम्हों तक। तो बस यूं ही हमारा साथ देते रहिए ऑन रेडियो मॉरिशस इन योर सुनहरे पल।

पुरानी फिल्में, पुराने गीत और वो सुकून जो आज भी दिल को छू लेता है, इसी खूबसूरत सफर में हम सफर बनिए सुनहरे पल के साथ। वैसे कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते हैं, वो हमारी जिंदगी का साउंडट्रैक बन जाते हैं, और आज उन्हीं यादों को फिर से जिंदा करेंगे इन खूबसूरत गीतों के साथ।

हर सुर में है मोहब्बत, हर लफ्ज में है जज्बात, और हर गीत में है सुनहरी कहानी। बस इसीलिए तो है सुनहरे पल। रोज रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग आपका साथ देने आ जाते हैं ऑन रेडियो मॉरिशस, ताकि आपकी यादों का खजाना फिर से हम खोल दे और आपके होंठों पर मुस्कुराहट ले आए। तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर हमारी तरफ से आपके नाम।

टाइम इतने जल्दी जल्दी बीत जाता है कि हमें अंदाजा भी नहीं हुआ कि फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनिशा टू से गुड बाय टू यू। बिल्कुल जी, जाने का वक्त जो हो गया है, तो बस अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और हमें इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस
0: रेडियो मॉरिशस।

0: You're listening RM Free Radio. Radio.
1: ਤੇਰਾ ਬਿਨਾ ਰੇ।

0: all year round, every season. That's right.
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

रस के